प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर
1: सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे याचना। नमस्कार।
2: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा रही। 23 ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं, यानी 29% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के चलते 1 सितंबर को राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है। 3 सितंबर को लॉन्च किया गया बर्मस्टैट्स बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। ये नया टूल औपचारिक आंकड़ों को आसानी से खोजने, देखने और उनका उपयोग करने की सुविधा देता है, लेकिन तकनीकी पहलू से आगे बढ़कर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़ों को विषय या समयावधि के आधार पर देखा जा सकता है और उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत के अनुसार उन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता है। नेशनल क्राइम एजेंसी को एक कानूनी ढांचा प्रदान करने की दिशा में 9 विधेयकों का प्रावधान है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर गौर किया गया। इन विधेयकों में संविधान में एक सुधार, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और साथ में वित्तीय अपराधों, संपत्तियों की प्राप्ति और जांचकर्ताओं की मदद करने वालों से संबंधित नियम भी शामिल किए गए हैं। अगला चरण है राष्ट्रसभा में इन विधेयकों को पेश किए जाने से पहले कैबिनेट के स्तर पर इनका गहन अध्ययन करना। विदेश की खबरों में मायामी के हवाई अड्डे पर एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारियों के मुताबिक अमेज़ॉन एयर कार्गो विमान हवाई अड्डे पर उतर के सही समय पर नहीं रुक पाया और रनवे को पार कर गया। प्लेन की कई गाड़ियों से भी टकरा गया और कई घंटों तक वहां सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दोपहर बाद पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। ऊंचाइयों पर और कुछ अन्य जगहों पर कोहरा छाया रहेगा, जिस वजह से विजिबिलिटी कम रहेगी। रात को भी पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाहरेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19, साहिली इलाकों पर 21 से 23, जबकि अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 20 से 22, साहिली इलाकों पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है, मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे करीब आ रहा है, जिस वजह से मंगलवार 8 सितंबर से देश भर में तेज हवाएं बहेंगी और बारिश भी हो सकती हैं। कहीं कहीं पर हवा के झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। इन ठंडी हवाओं के कारण दिन के दौरान 3 डिग्री सेल्सियस

तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से तेज हवाएं बहेंगी और ऊंची लहरें भी उठेंगी। मंगलवार सुबह से दूर समंदर और साथ में पश्चिमी और दक्षिणी तटों के पास न जाने की सलाह दी जा रही है। आज सुबह सूर्योदय 6:13 पर, शाम को सूर्यास्त 6:02 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
1: वेद के सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। मैं आचार्य मोहन आर्य श्रुतबंधु आज आप सभी के मध्य वेद का एक प्रसिद्ध और बड़ा सुंदर मंत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र है। ओम वायुर्नीलममृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर। बंधुओं, इस वेद मंत्र की व्याख्या की ओर हम बढ़े। ऋषिवर देवदयानंद यजुर्वेद का भाष्य करते समय लिखते हैं, अतः देहांत समय किम कार्यमित्याह, अर्थात जब मनुष्य का अंत समय चल रहा हो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। यह बात बड़ी विचारणीय है। वेद मंत्र कह रहा है, हम कर्मशील मनुष्य हैं, जिस प्रकार बताया गया वायुर्नीलम अमृतेदम अस्मांतम शरीरम कि ये जो शरीर है ये धनंजय आदि युक्त कारण रूप कार्य को करने वाला है। साथ ही साथ मनुष्य का जब अंत समय आए तो ऋषिवर देवदयानंद ने बड़ा अच्छा शब्द प्रस्तुत करते हुए कहा, ओम क्रतो स्मर। ये वेद का वाक्य है। ऋषिवर देवदयानंद भाष्य करते हुए लिखते हैं कि कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम ईश्वर के मुख्य निज नाम का उच्चारण कर। बंधुओं, जिस चर्चा पर मैं आप सभी को ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंत समय में हम ईश्वर का ध्यान कैसे करें, इस ओम का उच्चारण कैसे करें। मनुष्य पूरे जीवन भर दूसरे कार्यों को करने में जब लगा रहेगा, मेरा परिवार, मेरा धन ऐश्वर्य, मेरी कामनाएं, और यदि वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उस ईश्वर के नाम का गुणगान नहीं करेगा तो वह व्यक्ति अंत समय में भी ईश्वर का गुणगान नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें आवश्यक है कि हमें पूरे जीवन भर उस परमधाम ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर के नाम का गुणगान करना होगा, अन्यथा मनुष्य दूसरी चीज़ों में भटकता चला जाता है। जहाँ महर्षि व्यास जी ने वो शब्द लिखते हुए कहा, प्राप्तम प्रापणीयम, कि मुझे जो प्राप्त करने योग्य चीज़ें थी वह प्राप्त मैं कर चुका हूँ, लेकिन इस वाक्य को वही व्यक्ति सिद्ध कर पाएगा जो अंत समय में भी ओम क्रतो स्मर ओम का स्मरण कर सकेगा। अन्यथा व्यक्ति प्राप्तम प्रापणीयम इस वाक्य को कभी सिद्ध नहीं कर सकता, अपनी अंतर आत्मा से इस बात को नहीं निकाल सकता। यहाँ ऋषिवर जो प्राप्तम प्रापणीयम की बात करते हैं वह कोई धन को प्राप्त करने की बात नहीं है, या गाड़ी, जमीन, घर, दौलत, बच्चे, परिवार, इनको प्राप्त करने की चीज़ें नहीं है। प्राप्तम प्रापणीयम एक वह चीज़ है जो व्यक्ति उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लेता, अर्थात अपने पूरे जीवन में उस ईश्वर के स्मरण से अपना प्रवृत्ति इतना उत्तम बनाता कि अंत समय में भी वो ओम का स्मरण कर सके। आज हम सब लोग ऐसे भटके हुए हैं कि हमें उस ईश्वर के ज्ञान, उस ईश्वर के आनंद का अनुभव नहीं हो पा रहा है। बंधुओं, इस बात को हमें समझना होगा कि इस दुनिया में हम अपने घर को छोड़ करके आए हुए हैं, हम

सभी आत्माओं का घर, वो परम धाम है। तद धाम परम पदम, ईश्वर का वो परम धाम मोक्ष है और हम सबको जाना वही है, लेकिन वही आत्मा अपने परम धाम को वापसी लौट सकेगी जो अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करेगी, या क्रतु करने योग्य कर्मों को करते हुए उस ईश्वर के नाम का स्मरण कर सकेगी। बंधुओं, एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक साधु के पास पहुंचा और साधु को वो व्यक्ति कहता है, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। साधु एक चटाई पर बैठा हुआ था, आसन पर बैठा हुआ था, उस व्यक्ति को अपने पास बिठाता है, आओ बैठो। वह व्यक्ति पूछता है साधु से, महाराज आपका सोफा सेट कहाँ है, आपका फर्नीचर कहाँ है, आपकी कुर्सियाँ आदि कहाँ हैं, मैं कहाँ बैठूँ। साधु उससे प्रतिप्रश्न करते हुए कहता है कि मेरा सोफा सेट तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा सोफा सेट, तुम्हारी कुर्सियाँ, तुम्हारा फर्नीचर कहाँ है। कहता है, महाराज मैं तो एक यात्री हूँ, मेरी ये सब सुख सुविधाएँ मेरे घर पर हैं। बस साधु भी यही बात कहता है, मैं भी एक साधु हूँ, मैं भी एक यात्री हूँ और मैं यहाँ पर यात्रा करने के लिए विचर रहा हूँ। बंधुओं, इस बात को हमें समझना होगा, हम सब यात्री हैं, हम उस परम धाम से हटते हुए एक यात्री के रूप में केवल इस संसार में विचर रहे हैं और हमारी सब सुख सुविधाएं उस परम धाम में ही विचरण कर रही है। तो यदि हम वो सुख सुविधाएं, वो आनंद चाहते हैं तो हमें उस परम धाम पर वापस लौटना होगा, अन्यथा पूरे जीवन भर हम पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, परिवार ये सब करते रहेंगे तो वो आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता। आज विचार करना, इस दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति के पास पहुंचना और उससे ये प्रश्न करना कि क्या आप अपने हृदय पर अपनी अंतर आत्मा से प्राप्तम प्रापणीयम शब्द, प्रभु जो कुछ मुझे प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया, क्या इस बात को वह व्यक्ति बोल सकेगा। इस दुनिया के सबसे बलवान व्यक्ति के पास पहुंचना, क्या वह व्यक्ति बोल सकता है कि जो मुझे प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया। आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति के पास पहुंचना, वह भी इस बात को नहीं बोल सकता। दुनिया के कोई बड़े नेता या कोई बड़े व्यक्ति के पास पहुंचना, कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से ये बात सिद्ध नहीं कर सकता कि प्रभु जो कुछ मुझे प्राप्त करना था वह मैंने प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ सीधा स्पष्ट होता है कि ये चीज़ें वो प्राप्त करने की हमारे लिए नहीं है। हाँ, एक साधन हो सकते हैं, परंतु यदि हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करने का विशेष महत्व है तो वो परम धाम है, वो ईश्वर का आनंद है। तो हमें इस वेद मंत्र की जो पंक्ति है, ओम कृतो स्मर कृतम स्मर क्लिबे स्मर, हम ओम का स्मरण करें, उस पर स्मरण करें, उसको अपने अंदर अंतर आत्मा में जानने का प्रयास करें, क्योंकि वही आनंद संसार का सबसे श्रेष्ठ आनंद है। बंधुओं, आपको अचरज होगा कि उस ईश्वर के आनंद, जो परम धाम का आनंद है, उसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे उपनिषद लिखते हैं, तैत्तरीय उपनिषद में एक पंक्ति आती है, शैषानंद श्रीमीमांसा भवति, कि वह आनंद इतना परम आनंद है कि उसकी यदि चिंतन भी किया जाए तो बड़ा अतुलनीय चिंतन होगा। और छोटा सा चिंतन करते हुए कहते हैं कि उस ईश्वर के आनंद की महत्ता कितनी बड़ी होगी। तो वो पंक्ति लिखते हैं कि एक आनंद, अर्थात एक मनुष्य का आनंद लिया जाए, और मनुष्य का आनंद कितना होता है, तो वो लिखते हैं युवा सात साधु सात युवाध्याकः, अर्थात एक व्यक्ति युवा है, अच्छे स्वभाव वाला है, उसका शरीर बहुत सुंदर है, उसके पास में बहुत अच्छी बुद्धि है, आशिष्टो अदृष्टो बलिष्ठः, वो व्यक्ति आशावान है, आशावादी है, उसके पास में बहुत अच्छा बल है और इतना सुंदर शरीर है, इतना बलिष्ठ शरीर है कि वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पचा सकता है। आगे लिखते हैं, तस येयम पृथ्वी सर्ववित्तस्य पूर्णा स्यात्, कि वो पूरे संसार का, पूरी पृथ्वी का राजा है। अर्थात देखिए, एक व्यक्ति का आनंद इतना उत्तम आनंद है कि एक व्यक्ति युवा है, वो अच्छे स्वभाव वाला है, बुद्धिमान है, उसका शरीर स्वस्थ है और साथ ही साथ बलिष्ठ होने के साथ ही साथ वो पूरे संसार का राजा है।

0: ये केवल एक व्यक्ति का आनंद है। अब वो आगे लिखते हैं, ते ये शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा, कि उस एक मनुष्य के आनंद के 100 भाग करना, अर्थात ऐसे सैकड़ों मनुष्यों का एक आनंद होगा गंधर्व आनंद। और बंधुओं उसी में वो आगे लिखते हैं कि ऐसे ही 100 गंधर्व आनंद को एकत्रित करना और उसका 100 गुना बनाना, वो होगा एक देव गंधर्व आनंद। फिर ऐसे ही देव गंधर्व आनंद का 100 गुना पितृ आनंद, अंजन आनंद, फिर उसका 100 गुना कर्मदेव आनंद, फिर अन्य देवता आनंद, फिर उसका 100 गुना इंद्र आनंद, उसका 100 गुना बृहस्पति आनंद, उसका 100 गुना प्रजापति आनंद। अब आप विचार करो, अंत में वो लिखते हैं, ते ये शतम प्रजापतिरानंदः स एको ब्रह्म आनंदः। उस ब्रह्म आनंद की तुलना भी हम नहीं कर सकते। यदि मैं इस पर थोड़ा सा विचार करूं, तो कितना बड़ा आनंद वो होगा, वो ब्रह्म आनंद जिस परम धाम की प्राप्ति के लिए हम सब लोग अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहे हैं, वो आनंद कितना बड़ा होगा। वो लिखते हैं, यतो वाचो निर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि मन से उसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। परमात्मा का वह आनंद अवर्णनीय है, शब्द कम पड़ जाते हैं उस आनंद को बताने के लिए। तो उस आनंद को यदि हमें प्राप्त करना है, तो हमें पूरे जीवन भर उसके लिए अपने कर्मों को करना होगा। अन्यथा वह वेद मंत्र यह स्पष्ट कर रहा है कि अंत समय में हम उस ओम का स्मरण नहीं कर सकेंगे। तो हमें अपने पूरे जीवन में उस आनंद की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के आनंद के लिए, अच्छे कर्मों को करते हुए उस वेद मंत्र को अपने अंदर धारण करना होगा कि ओम कृतो स्मरः क्लिबे स्मरः कृतम स्मरः, प्रभु मैं आपका स्मरण करते हुए कर्मशील मनुष्य होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूं। आप सभी ने श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:30 बजे हैं। सभी को नमस्कार। सुबह के इस बुलेटिन में सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा। 23 ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं, यानी 29% की वृद्धि। 3 सितंबर को लॉन्च किया गया बॉम स्टार्स बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। ये नया टूल औपचारिक आंकड़ों को आसानी से खोजने, देखने और उपयोग करने की सुविधा देता है। क्या एतिहाद एयरवेज जल्द ही मॉरिशस में अपने विमान का संचालन शुरू कर सकती हैं? फिलहाल कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं है, लेकिन अब इस संभावना पर विचार किया जा रहा है। विदेश में मायामी के हवाई अड्डे पर एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 5 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश समाचार अब विस्तार से। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा रही। 23 से ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं, यानी 29% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनाल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के चलते 1 सितंबर को राज्यसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है। लवीना सूफी की रिपोर्ट है, विवरण अभियोदय का।
2: जनवरी से अब तक 101 जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं में 104 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 78 जानलेवा सड़क का दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी, जिनमें 83 लोगों की जान चली गई थी। दर्ज की गई लगभग 100 मौतों में से 42 मौतों के साथ मोटरसाइकिल चालक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद 32 मौतों के साथ पैदल यात्री आते हैं, जो पिछले साल की तुलना में 39 की वृद्धि दर्ज की गई। इस साल 14 चालकों, 12 यात्रियों और एक साइकिल चालक का, 2 पीछे बैठे यात्रियों और एक बस कंडक्टर ने अपनी जान गंवाई। पुलिस आंकड़ों के अनुसार दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे के बीच सड़क का सबसे अधिक घातक साबित हुई है, जिनमें 32 दुर्घटनाएं हुई, जो पिछले साल की तुलना में दुगनी है। वही शाम के 6 बजे से आधे रात के बीच इस साल 30 जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 26 से 50 वर्ष के बीच है। इसके अलावा इस वर्ष घायल हुए 38 लोगों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है।
1: 3 सितंबर को लॉन्च किया गया बॉम स्टार्स बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। ये नया टूल औपचारिक आंकड़ों को आसानी से खोजने, देखने और उपयोग करने की सुविधा देता है, लेकिन तकनीकी पहलू से आगे बढ़कर सवाल ये है कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था का विश्लेषण करने वालों के लिए वास्तव में इससे क्या बदलाव आएगा? आशीबाचु अभ्युदय।
1: बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और वित्तीय डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्र करता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस और उपयोग किया जा सके। आंकड़ों को विषय या समयावधि के आधार पर देखा जा सकता है और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार डाउनलोड किया जा सकता है। अर्थशास्त्री डॉक्टर भविष्य जगन्नाथ के अनुसार ये सरल पहुंच मॉरिशस में आर्थिक जानकारी के उपयोग के तरीके को बदल सकती है। वे बताते हैं,
2: Là où Bumstat peut véritablement transformer l'analyse économique à Maurice, c'est dans trois
1: domaines. सच्चे अर्थ में आर्थिक विश्लेषण कर सकेगा, खासकर तीन पहलुओं को ध्यान में रखकर। पहला है पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है बेहतर रिएक्टिविटी, जबकि तीसरा आंकड़ों के उभरते विकास। इन सभी आंकड़ों को स्टैटिस्टिक्स के छात्रों, यूनिवर्सिटियों, पत्रकारों, ठेकेदारों आदि को दिया जा सकता है। इसके अलावा बूमस्टैट्स शोध और इनोवेशन को बढ़ावा भी दे सकेगा। भविष्य जगन्नाथ इसे एक ऐसे उपकरण के रूप में भी देखते हैं जो पारदर्शिता को मजबूत कर सकेगा और आर्थिक विश्लेषण को अधिक रेस्पॉन्सिव बना सकता है। लेकिन वे ये भी याद दिलाते हैं कि आंकड़ों को समझा जाना चाहिए और उन्हें सही संदर्भ में रखकर देखा जाना चाहिए। एक नागरिक इन्फ्लेशन की स्थिति की जांच कर पाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बेहतर स्थिति, बैंकिंग क्रेडिट आदि। परंतु ये भी जानना जरूरी है कि कौन से उभरते इंडिकेटर्स हैं, आर्थिक स्थिति से जुड़े कौन से कारक हैं, इस तरह से इसका पूरा विश्लेषण किया जा सकेगा। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से परे स्टैटिस्टिक्स जानकारी की पूरी गुणवत्ता में सुधार होना तय है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की विश्वसनीयता को मजबूत करने की महत्वाकांक्षा के साथ स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़ों के स्तर को भी ऊपर उठाने का इरादा रखती है।
0: नेशनल क्राइम एजेंसी को एक कानूनी ढांचा प्रदान करने की दिशा में 9 विधेयकों का प्रावधान है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर गौर किया गया। इन विधेयकों में संविधान में एक सुधार, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और साथ में वित्तीय अपराधों, संपत्तियों की प्राप्ति और जांचकर्ताओं की मदद करने वालों से संबंधित नियम भी शामिल हैं। अगला चरण है राष्ट्रसभा में इन विधेयकों को पेश किए जाने से पहले कैबिनेट के स्तर पर इनका गहन अध्ययन। शैली नीबंग की रिपोर्ट और विवरण अभी उदय का।
1: वास्तव में टाइम टेबल यानी कि समय सारणी स्पष्ट होती जा रही है, परंतु सुधार अभी संसदीय स्तर पर नहीं पहुंचा है। इस योजना की स्थापना के लिए बजट 2026-2027 में 200 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया था। 29 अगस्त को वाकुआ में पुलिस की 360 नई भर्तियों की पासिंग आउट परेड के दौरान डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भावी एजेंसी को संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई के मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जल्द ही राष्ट्रीय सभा में नेशनल क्राइम एजेंसी बिल पेश किया जाएगा। ये परियोजना मुख्य रूप से ब्रिटिश अनुभव और मॉडल पर आधारित है। अटॉर्नी जनरल का कार्यालय या ब्रिटिश विशेषज्ञों की सहायता से पिछले कई महीनों से इसके कानूनी ढांचे पर काम कर रहा है और इस मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग भी उठने लगी है। पूर्व अटॉर्नी जनरल गामा वालाइदन ने शुक्रवार को गाविन ग्लोवर को पत्र लिखकर मांग की है कि नेशनल क्राइम एजेंसी बिल को राष्ट्रीय सभा में पेश किए जाने से काफी पहले सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए ताकि जनता इसका अध्ययन कर सके और अपने सुझाव दे सके। फिलहाल इसे राष्ट्रीय सभा में पेश करने की किसी औपचारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
0: क्या एतिहाद एयरवेज जल्द ही मॉरिशस में अपने विमानों का संचालन शुरू कर सकती हैं? फिलहाल कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन अब इन संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अबू धाबी की सरकार पिछले कुछ समय से इस बात में रुचि दिखा रही है कि ये एयरलाइंस मॉरिशस के लिए

0: अपनी सेवाएं शुरू करें। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: फिलहाल ये केवल एक परियोजना है, परंतु अबूधाबी सरकार की एतिहाद एयरवेज द्वारा मॉरिशस के लिए उड़ानें शुरू करने में रुचि पूरी तरह से वास्तविक है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात की पुष्टि की। ये संभावना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने की दिशा में अपनी हवाई पहुंच नीति यानी एयर एक्सेस पॉलिसी की समीक्षा करने की मॉरिशस की इच्छा का हिस्सा है। एतिहाद संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन है और वर्तमान में अपने अबूधाबी हब के माध्यम से दुनिया भर के 120 से अधिक गंतव्यों के लिए सेवा प्रदान करती है। ये इमिराती एयरलाइन यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और नए पर्यटन बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करेगी। इस एयरलाइन के आने से एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसे पहले से स्थापित विमानन वाहकों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी बढ़ेगी, जिससे यात्रियों को अधिक प्रतिस्पर्धा किराए और बेहतर सेवा का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर इस ढील से कुछ प्रमुख मार्गों पर बाजार हिस्सेदारी छीनने का कारण एयर मॉरिशस के कमजोर होने का जोखिम भी है। अधिकारियों के सामने विशेष रूप से भावी राष्ट्रीय विमानन परिषद के माध्यम से मुख्य चुनौती राष्ट्रीय एयरलाइन से समझौता किए बिना विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। यद्यपि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, तथापि ये योजना मॉरिशस को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्रवाहों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
0: विदेश की खबरों में, मायामी के हवाई अड्डे पर एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 5 लोगों की मौत हुई है और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारियों के मुताबिक अमेज़न एयर कार्गो विमान हवाई अड्डे पर उतरते वक्त सही समय पर नहीं रुक पाया और रनवे को पार कर गया। प्लेन कई गाड़ियों से भी टकराया। कई घंटों तक वहाँ सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। और इंडोनेशिया में अनाक खतताओ ज्वालामुखी के राख के कारण जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद किया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिस वजह से करीब 170,000 यात्री वहीं फंसे रह गए हैं। इनमें हजारों विदेशी शामिल हैं जो वहां पर्यटन के लिए गए हुए थे। शुक्रवार देर रात को ये ज्वालामुखी लावा उगलने लगी और आसपास के इलाकों में जल्द ही राख का बादल छा गया। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह और दोपहर बाद ऊंचाइयों पर और पूर्वी इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है और कई जगहों पर कोहरा छाया रहेगा, जिस वजह से विजिबिलिटी भी कम रहेगी। रात को भी पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे और कोहरा छाया रहेगा, रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19, अधिकतम 20 से 22 और तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है। मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन करीब आ रहा है, जिस वजह से मंगलवार 8 सितंबर को यानी कल से हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं बहेंगी और मौसम भी बरसाती रहेगा। हवा के झोंके कहीं कहीं पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती हैं और इस वजह से दिन के दौरान 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ में कुछ अन्य जानकारी इस प्रकार है। मस्करीन के दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठ रही हैं, जो धीरे धीरे स्थानीय मौसम में स्थानीय स्तर पर समंदर को प्रभावित करने लगेगा। मंगलवार को ऊंची लहरें उठेंगी, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों और तटों के पास तथा दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है मंगलवार सुबह से।

0: देश विदेश की नई खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और टेक्निकी पर फैजल का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Shok Samachar Sunye. Quand le juge Forestside me, quand le juge Forestside me, 72 saal ke, 72 years old ke, Janab Abdul Rashad Bakohali, Janab Abdul Rashad Bakohali, जो रेशाद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और UBS के पूर्व शेफ जगत थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके मकान कॉन्लुजूज फॉरेस्ट साइड से निकाल कर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कॉन्लुजूज फॉरेस्ट साइड की अलीबेत मस्जिद और फिर दफनाने के लिए बिगाहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। तूफानी लेन ला मेरी ओकुले में, तूफानी लेन ला मेरी ओकुले में 85 साल के 85 years old के श्री गोबर्धन आराबंदु, श्री गोबर्धन आराबंदु जो बाय देवन जिफे के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 12 बजे उनके बेटे ताको आनंद आहबंदु रोशन के मकान तूफानी लेन लामेरी ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। नंबर 16 ब्रोड एवेन्यू सैन जॉन कैथो बोन में, नंबर 16 ब्रोड एवेन्यू सेंट जॉन कैथो बोन में 68 साल की 68 years old की श्रीमती लीलामती गणेश, श्रीमती लीलामती गणेश जो कामिनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके बेटे विशाल गणेश के मकान नंबर 16 ब्रोड एवेन्यू सेंट जॉन कैथो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियानों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। रोथ्रॉयल अपरवेल में, रोथ्रॉयल अपरवेल में 62 साल के 62 years old के जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा गुलाम हुसैन, जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा गुलाम हुसैन जो मुस्तफ़ा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा सुबह 10 बजे उनके बेटे अब्दुल रेजा गुलाम हुसैन के मकान रॉयल रोड अपरवेल से उठाकर दफनाने के लिए पेंडे पापाय का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। मामजेल जान गुडलैंड्स में, मामजेल जान गुडलैंड्स में 57 साल के 57 years old के श्री प्रेमदत्त भोईधर, श्री प्रेमदत्त भोईधर जो कविराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनकी पत्नी प्रेमिला भोईधर के मकान मामजेल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। गोपालालेन कारो मान्यक मेबर्ग में, गोपालालेन कारो मान्यक मेबर्ग में 63 साल के 63 years old की श्रीमती लक्ष्मी मानिक, श्रीमती लक्ष्मी मानिक पैदाशी नाम आसिरिया और जो मीडू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दोपहर 2 बजे, अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान गोपालालेन कारोमान्योक में बर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट फोक्यूस रिविया दे क्रेओल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। बंजन रोड सुरीनाम में, बंजन रोड सुरीनाम में 78 साल

के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रिका दत्त मंगल, श्री चंद्रिका दत्त मंगल जो चंद्रिका के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके बेटे केविन मंगल के मकान भजन रोध सुगिनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाभा सुगिनाम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। रा रोड बॉलो में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजकुमारी उदित, श्रीमती राजकुमारी उदित पैराशी नाम कोलीचरण और जो दादी बातू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके बेटे चित्रंजन सिंह उदित के मकान रॉयल रोड बॉलो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8 PM। दुमोलेन शामुनी में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की कुमारी सुचिता दुमोर जो चिस्या के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके भाई विद्यानंद दुमो के मकान दुमोलेन शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8 PM। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की कुमारी शांता उहिया जो शांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनकी बहन संगीता उहिया के मकान अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाहूश गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। रा रोड सेंचुबेया में 19 साल के 19 ईयर्स ओल्ड के श्री भुवेश दुलब जो आयुष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनके मकान रा रोड सेंचुबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचुबेया सोंगोलेट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:10 AM। रा रोड होशतेया में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हवंती चमन जो राम भजन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके पति अर्जुन चमन के मकान रॉय रोड होशतेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:11 AM। कालीमाई रोड पालमा में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री बालाकृष्णा मुकुल जो वासु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1:30 बजे लाशापेलाउदांत एलियन सन्स रॉय रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। रुईलाबू द नेमेबर्ग में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती महित्री तिलक पैदाशी नाम तिलवा और जो दादी मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान रुईलाबू द नेमेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:01 PM। कांगुल बौश मेघोइनिये में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री गणेशन अपासोमी जो सूर्यन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनके मकान कांगुल बौश मेघोइनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिव्यादे काले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:10 AM। आलेजाक्लिस्कालिये में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री नारायण दत्त दलू जो अमरनाथ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके बेटे केवल दलू के मकान आलेजाक्लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेंकारोंग लिस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे 11 AM।
flamboyant street noce de canaris.

Rivière du Rang Paumé, Flamboyant Street, Noce de Cana, Rivière du Rang Paumé, Una Tersale, K69 years old, K Sri Rajkumar Ankur, Sri Rajkumar Ankur, जो सुनील के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनकी पत्नी अनसुया अंकुर के मकान फ्लॉम्बॉयन स्ट्रीट नस दे काना रिविया जो रामपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्रीव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। घोड़दौड़ के साथ इस बुलेटिन को शुरू करेंगे और कल से सिर्फ एक ही नाम है, रैपिडैश। रैपिडैश मेडन कप 2026 में सबसे रैपिड निकला, मेडन कप 2026 रैपिडैश के नाम। 2400 मीटर में घोड़दौड़ सीजन से सबसे बड़ी रेस रैपिडैश ने क्लासिक डबल पूरा किया। सुबिराज गजादर के इस चैंपियन पर सवार था पिया कोने ओफर। अफ्रीकन चैंपियंस लीग में लैक्यो वेव्स ने साउथ अफ्रीका की चैंपियन टीम ओलांडो पायरेट्स को रोका, स्कोर 0-0। अब रिटर्न लेग साउथ अफ्रीका में। स्विमिंग, बोत्सवाना में लगे जोन 4 चैंपियनशिप में हमारे तैराक 17 मेडल जीत पाए, 17 मेडल्स इन टोटल, 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। आनिया प्रयाग 2 गोल्ड मेडल जीत पाई, फिर अलिसिया कोक्सुन भी 2 गोल्ड मेडल, ब्लाइजा जुएल 1 गोल्ड मेडल और लुकास चानचुएन चैंपियन बने। प्रीमियर लीग का डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल अपना पहला सीरियस कठिन परीक्षा में पास हुआ। चैलेंजर टाइटल के दावेदार चेल्सी को 2-1 से हराकर आर्सेनल ने साबित कर दिखाया कि वो अपने टाइटल को बचा के रखेगा जी जान से। चेल्सी के लिए दूसरे मिनट में ही रोजर्स का गोल, फर्स्ट हाफ में ही कई हावर्ट्स ने इक्वलाइज किया और सेकंड हाफ में ओडेगार्ड का विनिंग गोल, आर्सेनल 2 चेल्सी 1। आर्सेनल पहला मेजर टेस्ट में पास हुआ, आर्टेटा की इस टीम को रोकना आसान नहीं होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी 2-2 पसंद है, 3 मैचों में सब कुछ कर चुका है। पहले मैच में हार, दूसरे में जीत, बचा था ड्रॉ, वो भी पूरा हो गया। एवर्टन 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड 2, 96 मिनट पर 96 मिनट इक्वलाइजर से यूनाइटेड 2 अंक गवा बैठा। पहला गोल ब्रायन एम्बुमो ने स्कोर किया सेकंड हाफ शुरू होते ही। एवर्टन ने इक्वलाइज किया, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर से लीड दिलाई सेस्को ने, पर इंजुरी टाइम में आर्सेनल और लियो का पूर्व खिलाड़ी मेटन नाइल्स हीरो बना एक क्रैक इक्वलाइजर के साथ। सो 3 मैचों के बाद मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के पास है 9-9 अंक, हल सिटी के पास है 7 अंक, चेल्सी 6 अंक, ब्रेंटफोर्ड, लिवरपूल, न्यूकासल यूनाइटेड, एवर्टन और लीड्स के पास है 5-5 अंक। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी 11वें स्थान पे है 11th पोजीशन 4 अंकों के साथ। नीचे टोटनहम हॉटस्पर के पास है केवल 1 अंक, फुलहम और कोवेंट्री के पास भी 1 अंक नहीं है। अब 12 सितंबर को एस्टन विला

Nottingham Forest, Bournemouth, Brentford, Chelsea, Hull City, Crystal Palace, Ipswich, Liverpool अपने Anfield Road में होगा Fulham के खिलाफ, Tottenham Hotspur, Everton, Sunderland, Arsenal. Sunderland के लिए Saturday late match 11 बजे और Sunday धमाल फिर से, इस बार Manchester Derby, Manchester United versus Manchester City.

और उसी दिन कोवेंट्री खेलेगा ब्राइटन के खिलाफ मंडे मैच लीड्स न्यूकासल यूनाइटेड। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में हार्ट्स ने डंडी को 2-1 से हराया, सी जॉनस्टन 2-2। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में भी मैच ड्रॉ, बर्मिंगम 2-2। स्पेन के ला लीगा में बार्सिलोना की शानदार जीत, 5-0 से वेलेंसिया को पछाड़ा, यमाल का डबल, लोपेज का एक गोल, राफीना का भी एक गोल रहा, एक गोल पेड्री ने स्कोर किया। अन्य नतीजे, अलावेज 5 ओसासुना 2, मलागा 0 लेवेंटे 0, एस्पान्योल 1 एफसी सेविला 1। जर्मनी के बुंडेसलीगा में हैमबर्ग एसवी 0 माइंस 05 5, एंथ्राक्स फ्रैंकफर्ट 1 ओर्सबर्ग 4। इटली के सेरी आ में यूवेंटुस और एसी मिलान के बीच मैच ड्रॉ, 1-1, फ्रोजिनोने 3 वेनेजिया 2, पामा 1 मोन्जा 1, बोलोनिया 2 सासुलो 2। फ्रांस के लीग 1 में 3-2 स्ट्रासबूर 6, एंजे 1 रेन 2, मार्सेय की हार हुई होम मैदान में पारी एफसी ने उसे 3-2 से हराया। चैंपियंस लीग कल और परसों खेले जाएंगे। चैंपियंस लीग के लिए कल के मैचों में मैनचेस्टर सिटी एवे होगा पोर्टो के मैदान में, रियल मैड्रिड इंटर मिलान, क्लब ब्रुज एस्टन विला, ये कल के 3 मैच हैं और 3 मैच खेले जाएंगे। परसों बुधवार वेंसडे से चैंपियंस लीग जारी रखा जाएगा, इनमें बार्सिलोना फेयेनोर्ड, स्टुटगार्ट वाइकिंग, लिवरपूल एथलेटिको मैड्रिड, नापोली आर्सेनल, पेरिस सेंट जर्मेन स्लोवान ब्रातिस्लावा, स्पोर्टिंग गैलातासराय। मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा गुरुवार को थर्सडे मैच साबा टीम के खिलाफ। टेनिस, यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज का सफर जारी है, इस बार स्टेटमेंट विन पोल पर 6-4 6-3 6-4। इंजुरी से 4 महीने बाद अल्काराज की वापसी हुई है। कल अरीना सबालेंका, इवायोविच, अलेक्जेंडर रेव ये सब जीत पाए। लिंडा मोस्कोवा ने कोइस्टुक को हराया। नोआमी ओसाका, फ्रांसिस चाफुए जीत पाए, चाफुए ने मेदवेदेव को हराया। मेंसिच की हार लेरनेटियन के खिलाफ, रिबाकीना मिकेलसन जीत पाए। आज इगा श्वातेक का मुकाबला जेंग से, सेरिंडोलो ब्लॉक्स, शेल्टन ने सिटसिपास को हराया, पेगुरा भी जीत पाई। फॉर्मूला वन मोटो रेसिंग चैंपियनशिप में इटालियन ग्रांड प्री में किमी अंतोनेली की जीत हुई, ग्रिड से 19वें पोजीशन से निकलकर अंतोनेली जीत पाया। क्रिकेट, टी20 एशियन कप में श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में पहुंची, बांग्लादेश को हराकर भारतीय महिला टीम भी सेमीफाइनल में है। मॉरिशस में क्रिकेट, आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का ग्रांड फाइनल कॉन्टिनेंटल चीताज और कैंपस अब्रॉड लायंस के बीच होगा। कल 2 सेमीफाइनल खेले गए, कैंपस अब्रॉड लायंस 234 रन बना पाए टोमास कुक टाइगर्स के खिलाफ। दिलजीत मैन ऑफ द मैच रहा, 19 गेंदों में 49 रन। फाइनल इस संडे को एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू में। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। रैपिडाश मेडन 2026 जीत गया और आर्सेनल के लिए स्टेटमेंट विन, चेल्सी पर 2-1 से, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 एवर्टन 2। किस्सा बाकी है, बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत कुछ अभी बताना है। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनिए सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्ति। तायाक के आसपास के इलाके एनएचडीसी तायाक और सियाशा सीएचए तायाक के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि सोमवार 7 सितंबर 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और विलाज दे शामुनी रामा रोड कांगुलबा और कौफानी के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल मंगलवार 8 सितंबर 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
2: NBC Radio 24 hours a day.

0: नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जहां आज सोमवार 7 सितंबर 2026 एक खूबसूरत सुबह आप सभी के नाम और नई सुबह एक नई उम्मीद और नई खुशियां लेकर आती है। तो बीती बातों को भूलकर चेहरे पर मुस्कान सजाए और आज के दिन का दिल से स्वागत करते हैं। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग भी साथ निभाइएगा। सबसे पहले चलिए सुनते हैं चिंतन डॉक्टर जुमन जी के साथ।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जो मनुष्य अप्रिय वचनों का कभी अभ्यास नहीं करते, ना उन्हें जानकर बोलते ही हैं, तथा सर्वदा प्रिय वाक्यों का ही ज्ञान रखते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं।

सुबह के 7:23 हुए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना ऑन रेडियो मॉरिशस। खूबसूरत गानों का सिलसिला हम जारी रखते हैं, और यहाँ पर उषा कौर साथ निभा रही है।

7:23 हुए हैं श्रोताओ, चलिए बढ़ते हैं आगे। और बस उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो और रात अच्छी गई और सुबह और भी बेहतर होगी। और सुनते हैं रेडियो सुर्खियाँ। अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम, 8 बजे भोजपुरी समाचार और समाचारों के बाद जी हाँ आपकी राशि सुबह का नजराना प्रोग्राम जारी रखेंगे और हमारी धरोहर कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:50 पर। 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद नीतुषा के साथ आप सुनेंगे आज की चर्चा कार्यक्रम। 10 बजे संक्षिप्त समाचार और भक्ति धारा, इसके बाद 11 बजे संक्षिप्त समाचार और समाचारों के बाद सयादा सुबाई की प्रस्तुति में शामी फरोजन, दिन के 12 बजे मराठी प्रोग्राम और मिसेस दरमिया के साथ 12 से 1 बजे तक का मराठी प्रोग्राम आप सुनेंगे। RSC द्वारा तमिल प्रोग्राम 1 से 2:15 तक और 1:45 रंगारंग प्रोग्राम गुजराती प्रोग्राम रत्ना की प्रस्तुति में 2 से 2:30 बजे तक, 2 से 4 बजे तक आपकी पसंद प्रोग्राम और रशि तीज कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 4:15 से 5:30। जी हाँ, और नहीं, तेलुगु प्रोग्राम आप सुन पाएंगे 4:15 से 5:30 बजे तक वंदना के साथ, और 6 बजे भूलिएगा नहीं आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के बाद चाइनीज़ प्रोग्राम, और चाइनीज़ प्रोग्राम आप के बाद आप सुन पाएंगे पुवाना के साथ तमिल प्रोग्राम, तेलुगु प्रोग्राम 7:30 और 7:30 बजे के बाद मराठी प्रोग्राम 7:50 पर नितिन बापू की प्रस्तुति में, और रात के 8:10 पर देवीना की प्रस्तुति में गणेश चतुर्थी पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे देवीना की प्रस्तुति में। जी हाँ, और सायदा के साथ रात के 8:40 पर, जी हाँ आप भूलिएगा नहीं, उर्दू प्रोग्राम 9 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुरेखा के साथ, और रात के 11 से 12 बजे तक गिनिशा के साथ सुनहरे पल्प, और रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक आप सुन पाएंगे हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट। ये थी आपके लिए रेडियो सुर्खियाँ।

7:54 हुए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। और चलिए इसी गीत के साथ हम भरेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की, और साथ दीजिए, मिलते हैं समाचारों के बाद।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी।

0: सबको के नमस्ते। संक्षिप्त समाचार सुना जा। ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री वेस्टियर ट्वीटिंग कल संडे टाइम्स के दे वाले को बयान में संकेत दिले हवन की उ मॉरिशस के शागोस द्वीप समूह सौंपे खातिर कतिबद्ध हवन। एकर से बर्तान एक बार फिर से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संगे टकराव के नावा राह पर बाटे। ब्रिटेन समाचार चैनल जीबी न्यूज के देवल गले गो इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार के बीफे के लेके सरकार बगल से शागस द्वीप समूह के मॉरिशस के वापस सौंपे के योजना पर बतियालन उबोलन की ई एगो बहुते खराब फैसला बाटे। ई बरिस के शुरुआत में के स्टमर के सरकार इस समझौता से संबंधित प्रक्रिया के उ बखत रोक दिले रहल जब राष्ट्रपति ट्रंप अमरीकी समर्थन वापस ले के फैसला कर ले रहलन। इस समझौता के तहत विशेष रूप से ई प्रावधान बाटे कि जेगो गौसिया के सैन्य अड्डा के उपयोग खातिर ब्रिटेन मॉरिशस के 101 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के भुगतान करी 99 बरिस खातिर। गल बरिस के तुलना में ही बरिस के 2 सितंबर लेक देश के सीमा पर ही जान गवाई होला जना के संख्या जस्ती बाटे। 23 सबसे जस्ती जानलेवा सड़क हादसा होल बाटे यानी 29% के बढ़ोतरी होल बा। ई आंकड़ा चिंताजनक है काहे कि पेनाल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होला के बाद वो सड़क सीमा पर ही जानलेवा दुर्घटना के संख्या बढ़ली बाटे। गल 1 सितंबर के राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघन खातिर एगो विधेयक पारित करल गल ह जेकर तहत ठोस सजा आर जुर्माना के प्रावधान करल गल ह। एतिहाद एयरवेज हाली हाली मॉरिशस में अपन विमान के संचालन शुरू करे सकी। फिलहाल कोनो अंतिम रूप से तय फैसला नहीं बाटे बखेर अब इस संभावना पर विचार करल जात बाटे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलामी बोले हवन कि अबूधाबी के सरकार गल कुछ बखत से ही बात परी रुचि दिखावत बाटे कि एयरलाइंस मॉरिशस खातिर अपन सेवा शुरू कर सकी। हालांकि खातिर बातचीत शुरू करल जाए के बाकी बाटे। नवा हवाई सेवा शुरू हुए से मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी यानी जस्ती मजबूत हो सकी। विदेश की खबर में भारत के राजधानी दिल्ली में गोपेंग गेस्ट कंपाउंड के 5 माला होला इमारत दहगल। कई गोजना के ई मलबा में फसल हो के संकेत बाटे। अभी लेकर 6 जना के मौत के पुष्टि करल गल है जबकि 11 जना के जीवित बचावल गल है। ई पूरा हादसा री बिल्डिंग के गिरे के एगो वीडियो फजर से वायरल होवत बाटे। तय रहल संक्षिप्त समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद आज्ञा दिया नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शुक समाचार सुना जा। कॉलेजूज फॉरेस्ट साइड में 72 बरिस के सुसंदूजों के जनाब अब्दुल रिशाद बकर अली जे रिशाद नाम से जस्ती जानल जातलन आरी UBS के पूर्व शेफ द गॉड रलन गुजरगल हवन। उनका जनाजा फजर के 10 बजे उनकर घरे कॉलेजूज फॉरेस्ट साइड से उठा के सबसे आगे नमाज जनाजा खातिर आली बेत मस्जिद आल दफना खातिर भी कहा के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे 8:10 AM। तूफानी लेन ला मेरी ओकुले में 85 बरिस के 85 के श्री गोवर्धन आराबंधु जे बाई दे वंजी फेस नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरकल हवन। माटी दिन के 12 बजे उनकर बेटा ताको आनंद आराबंधु रोशन के घरे तूफानी लेन ला मेरी ओकुले से उठा के केरा करम खातिर बिगाहा के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन आत नून नंबर 16 ब्रोड एवेन्यू सेंट जॉन कैथोबोन में 68 बरिस के 68 के श्रीमती लीलामती गणेश चेकामिनी नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन। माटी 11 बज के आधा परी उनकर बेटा विशाल गणेश के घरे नंबर 16 ब्रोड एवेन्यू सेंट जॉन कैथोबोन से उठा के केराकरम खातिर रियानो के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन एट 11:30 AM। रा रोड अपवेल में 62 बरिस के सुसंदूजों के जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा गुलाम हुसैन गुजरगल हवन जनाब

जलसा फजर के 10 बजे उनका बेटा अब्दुल रेजा गुलाम हुसैन के घरे रॉयल रोड अपरवेल से उठा के दफनाए खातिर प्लंडी पापा के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल एट 10 AM। मामजल जान गुडलैंड्स में 57 बरिस के सकन सतों के श्री प्रेम दत्त बुईधर, श्री प्रेम दत्त बुईधर जेका विराज नाम से जस्ती जानल जातलन गुजर गल हवन। माटी फजर के 10 बजे उनकर पत्नी प्रेमिला बुईधर के घरे मामजल जान गुडलैंड से उठा के केरा करम खातिर बेल मुकेश मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 10 AM। गोपाला लेन कारो मान्युक में बर्ग में 63 वरिष के 63 के श्रीमती लक्ष्मी मानिक पैदाशी नाम असीरिया आर जे मीडू नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर कल हवन। माटी काल दिन के 2 बजे उनकर घरे गोपाला लेन कारो मान्युक में बर्ग से उठा के केरा करम खातिर पॉइंट बुकुस रिविया दे क्रियोल के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। बंजन रोड सुरीनाम में 78 बरिस के 67 बीतों के श्री चंद्रिका दत्त मंगल जे चंद्रिका नाम से जस्ती जानल जातलन गुजर गल हवन। माटी दिन के 11 बजे उनकर बेटा केविन मंगल के घरे बंजन रोड सुरीनाम से उठा के क्रिया करम खातिर थ्वा भा सुरीनाम के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 11 AM। रारोड बौलो में 74 बरिस के 47 के श्रीमती राजकुमारी उदित पैदाशी नाम कुलीचन आरजे दादू बातू नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर गल हवन। माटी दिन के 2 बजे उनकर बेटा चित्रंज सिंह उदित के घरे रारोड बौलो से उठा के केरा करम खातिर लावों के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 2 PM। दामोह लेन शामुनी में 56 बरिस के 67 के कुमारी सुचिता दामोह जे चिस्या नाम से जस्सी डानल जातलन गुजर गल हवन। माती दिन के 1 बजे उनकर भाई विद्यानंद दामोह के घरे दामोह लेन शामुनी से उठा के केरा करम खातिर इलाका के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 1 PM। एस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 55 बरिस के 67 के कुमारी शांता ओहिया जे शांता नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर गल हवन। माटी दिन के 1 बजे उनकर बहिन संगीता ओरिया के घरे अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठा के केरा करम खातिर बुआहूश गुडलैंड के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 1 PM। रारोड सैचुबेर में 19 बरिस के जिजनेवों के श्री भुवेश दुलब जे आयुष नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन। माटी फजर के 10 बजे उनकर घरे रारोड सैचुबेर से उठा के केरा करम खातिर सैचुबेर सौगोलत के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 10 AM। रारोद होश्तिया में 72 बरिस के 67 के श्रीमती हवंती चमन जे रामभजन नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन। माटी दिन के 11 बजे उनकर पति अर्जुन चमन के घरे रारोद होश्तिया से उठा के केरा करम खातिर दाहुची के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 11 AM। कालीमाई रोड पालमा में 61 बरिस के 63 के श्री बालकृष्णा मुकुल जे वासु नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन। माटी दिन के 1 बज के आधा परी लाशापेला दौ तेलियन सन सरवाल रोड बुबासन से उठा के केरा करम खातिर पालमा के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। हुईलाबू दुनिमी बर्ग में 89 बरिस के कथोवैनेवों के श्रीमती महित्री तिलक पैराशी नाम तिलवा आज दादीमानती से के नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर कल हवन। माटी काल दिन के 1 बजे उनकर घरे हुईलाबू दुनिमी बर्ग से उठा के केरा करम खातिर तोंबू में बर्ग के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। कांगुल बौश में घोइने में 52 बरिस के 52 के श्री गणेशन आपासोमी जे सूर्यन नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन। माटी फजर के 10 बजे उनकर घरे कागुल बौश में घोइने से उठा के केरा करम खातिर रिविया देगा लेके श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 10 AM। आलिशा क्लेसकालिये में 69 बरिस के 69 के श्री नारायण दत्त दलू जे अमरनाथ नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन। माटी दिन के 11 बजे उनकर बेटा केवल दलू के घरे आलिशा क्लेसकालिये से उठा के केरा करम खातिर बासैका ओंग क्लेसकालिये के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन एट 11 AM।

flamboyant street Noste Khan arrivait durant Parmi un hôtel balisqué 69 ans que Shri Rajkumar Ankur je Sunil nam se jasiran aljatalan guzargal havan mati 10 baje unkar patni Ansuya Ankur ke ghare flamboyant street Noste Khan arrivait durant Parmi se uthakar antim sanskar ke liye Othriv ke shmashan bhumi le ja bal jaye cremation today at 10 a.m. शोक में डूबा लिसा परिवार संगे हमने की सहानुभूति है।

आ ये सुनिए कि सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति टायक के आसपास के इलाके एनएचडीसी टायक और सीएचए टायक कच्छा से आशा टायक के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि सोमवार 7 सितंबर 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत

0: 8:21 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। तो दोस्तों, आपके अपने साप्ताहिक राशिफल में आइए जानते हैं कि आने वाला सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आ रहा है।
1: आपकी राशि रेडियो मॉरिशस पर। एरीज, मेष राशि।
0: मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा। आप जिस काम को लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने के योग हैं। काम के क्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, किसी अपने से अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। आर्थिक मामले में समय ठीक रहेगा, लेकिन बिना ज़रूरत खर्च करने से बचना होगा। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि।
0: आपके लिए ये सप्ताह स्थिरता और प्रगति का संकेत दे रहा है। आप अपने काम को पूरी लगन से करेंगे और इसका अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के नए अवसर मिलेंगे। नौकरी करने वालों को अपने अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है और परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लकी नंबर है 6, लकी कलर है सफ़ेद रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि।
0: मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह नए अवसरों से भरा रहेगा। आपकी सोच और बात करने का तरीका दूसरों को प्रभावित करेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है। काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आमदनी बढ़ने के योग है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। घर के किसी सदस्य की चिंता दूर होने से मन हल्का होगा। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
1: कैंसर, कर्क राशि।
0: कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह परिवार सुख और मानसिक शांति लेकर आ सकता है। घर में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। काम के क्षेत्र में आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी होगी। आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं और सेहत के लिए भोजन और आराम की विशेष ध्यान रखें। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेव, सिंह राशि।
0: सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपने फैसलों को लेकर पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे। काम के क्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। आर्थिक रूप से समय अच्छा है, लेकिन धन को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। लकी नंबर है 1, लकी कलर है सुनहरा रंग।

0: वर्गो कन्या राशि।
1: कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह मेहनत के अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे और इसी वजह से दूसरे लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। प्रेम और रिश्तों के मामले में समय मधुर रहेगा। सेहत को लेकर छोटी परेशानी को भी नज़रअंदाज ना करें। लकी नंबर है 5। लकी कलर है हरा रंग।
0: लिब्रा तुला राशि।
1: तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा। आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे और आपको नए लोगों को का सहयोग भी मिल सकता है। काम के क्षेत्र में कोई नया अवसर सामने आ सकते हैं और व्यापार करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में सभी पहलुओं को ध्यान से देखना फायदेमंद रहेगा। लकी नंबर है 6। लकी कलर है गुलाबी रंग।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: वृश्चिक वालों के लिए ये सप्ताह मेहनत और सफलता का संकेत दे रहा है। आपके सामने जो रुकावटें आ रही हैं उनमें कमी आ सकती है। काम के क्षेत्र में आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामले में लाभ हो सकता है, लेकिन किसी को बिना सोचे समझे पैसा देने से बचें और मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना या ध्यान के लिए समय निकालें। लकी नंबर है 6। लकी कलर है लाल रंग।
0: सजिटेरियस धनु राशि।
1: धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह भाग्य का साथ लेकर आएगा। आपके कई काम समय पर पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के योग है। दूर की यात्रा का मौका मिल सकता है और ये यात्रा फायदेमंद भी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। परिवार में आपकी बात को सम्मान मिलेगा। पैसा संबंधी को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बस अपने लक्ष्य से ध्यान ना हटने दें। लकी नंबर है 3। लकी कलर है पीला रंग।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ने वाला है और रुके हुए कामों में गति आएगी। काम से के क्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे और बचत करने का भी मौका मिलेगा। परिवार में किसी मदद करने से आपको मानसिक संतोष मिलेगा। रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है और सेहत के लिए नियमित आराम करें। लकी नंबर है 8। लकी कलर है नीला रंग।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह बदलाव और नई सोच लेकर आ सकता है। आपके सामने काम से जुड़ा कोई नया अवसर आ सकता है। आपकी रचनात्मक सोच का फायदा मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और भविष्य में उनसे सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। घर परिवार में छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। अपनी वाणी पर संयम रखें और बड़े निर्णय सोच समझ कर लें। लकी नंबर है 4। लकी कलर है आसमानी रंग।
0: पाइसेस मीन राशि।
1: और मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत सुखद संकेत लेकर आ रहा है। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। काम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग है। परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा।

0: अपने मन की बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से करना आपको हल्का महसूस करा सकता है। लकी नंबर है 7, लकी कलर है पीला रंग।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मशीन। रेडियो मशीन
0: तो श्रोताओं, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। और याद रखिए, राशिफल हमें भावनाओं को का संकेत देता है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और सही फैसला सबसे ज़रूरी है। अपने दिन की शुरुआत अच्छी सोच से के साथ कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए और हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखिए।

0: आज बजकर 51 मिनट हुए हैं। चलिए 80s के गाने आप लोगों ने एंजॉय किया, अब समय आ गया है और सुनते हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज चला देखी जा कि एगो देश के अपन धरोहर के विश्व विरासत सूची में शामिल करे खातिर कौन प्रक्रिया से चाहे गुजरे के। सबसे आगे तो चाहे ई देश के 1972 कन्वेंशन पर जिसने संदूस कोवासियों पर सही कर ले रहे के। और ई बात चाहे जाने के कि एगो राष्ट्र अपन देश के विरासत के नामजदगी करावेला बल्कि कोनो व्यक्ति या समुदाय या संस्था नहीं। ई देश के चाहे अपन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के सबसे आगे एगो टेंटेटिव लिस्ट तैयार करेगी। जोन साइट उ टेंटेटिव लिस्ट में बा उही खाली सकी ई सूची में शामिल करावे। बहुत ही विस्तार से ई दस्तावेज तैयार होवेला और चाहे साइट के नक्शा भेजे के आप्रवासी घाट मॉरिशस के जोन पहला साइट रहल नॉमिनेशन खातिर ओकर खातिर भी ऐसे ही एगो पूरा दस्तावेज तैयार हो रहल। और फिर ई दस्तावेज पर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी अपन सिफारिश देलक। नॉमिनेशन फाइल तैयार करके सबसे आगे आइकोमोस और IUCN के भेजल जाला। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ई दोनों सलाहकार संस्था ई बात के ख्याल रखेलन जा कि फाइल में जानकारी के कोनो कमी नहीं रही। फिर ई फाइल वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के भेजल जाला और दोनों सलाहकार संस्था अपन सिफारिश प्रस्तुत करेलन सा। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सकी फाइल के डिफर करे, मतलब कि जे कोनो कमी या गलती रही तो उ लोग उदेश के उ फाइल वापस भेजन जा और उदेश के चाहे उ फाइल में सुधार आन के फिर से भेजे के। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के बैठक बरिस में एक हला लगेला। 10 शर्त बा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होई खातिर। एगो साइट के चाहे कम से कम एगो शर्त पर खरा उतरे के। उ 10 शर्त में 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक शर्त बा। चाहे उस साइट के एगो मानव रचना के एगो मास्टरपीस रहे के, जैसे कि ताजमहल बा, या फिर लंबा समय तक एगो सांस्कृतिक इलाका में आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, टेक्नोलॉजी या मोन्यूमेंटल आर्ट पर मानव मूल्य के छाप छोड़े के। ऐसे ही और 8 शर्त बा। आप्रवासी घाट 6 शर्त पर अंकित हो बा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर। वो एगो सांस्कृतिक शर्त है जेकर मतलब है सीधा रूप से और मूर्त रूप से ऐसन घटना, जानदार परंपरा, विचार, मान्यता से जुड़ल साइट जेकर एगो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू बा, मतलब कि मानवतावाद खातिर एगो अनोखा महत्वपूर्ण विशेषता बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

हुआ है दोस्तों, और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। चलिए इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। 9 बजे संक्षिप्त समाचार और इसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम आप सुनेंगे नीतू शाह के साथ, और मैं उषा आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, आदाब, शुभ दिन।

0: Awards. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 9 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे. याचना नमस्कार आपको.
2: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री वेस रीटिंग ने कल संडे टाइम्स को दिए एक बयान में संकेत किया कि वे मॉरिशस गणराज्य को शागोस द्वीप समूह सौंपने के लिए कटिबद्ध हैं. इससे ब्रिटेन एक बार फिर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकरा

की नई राह पर दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन समाचार चैनल जीबी न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को लेबर सरकार द्वारा शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस सौंपने की योजना पर एक बार फिर हमला डाला। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है। इस साल की शुरुआत में केस्टर

0: से ये यह प्रावधान था कि जेगोगोसिया के सैन्य अड्डे के उपयोग के लिए ब्रिटेन मॉरिशस को 99 सालों तक हर साल 101 मिलियन पाउंड स्टर्लिन का भुगतान करेगा। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक कर देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज़्यादा है। 23 अतिरिक्त ज़्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं, यानी 29% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के चलते 1 सितंबर को राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है। नेशनल क्राइम एजेंसी को एक कानूनी ढांचा प्रदान करने की दिशा में 9 विधेयकों का प्रावधान है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर गौर किया गया। इन विधेयकों में संविधान में एक सुधार, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और साथ में वित्तीय अपराधों, संपत्तियों की प्राप्ति और जांचकर्ताओं की मदद करने वालों से संबंधित नियम भी इसमें शामिल किए गए हैं। अगला चरण है राष्ट्रसभा में इन विधेयकों को पेश किए जाने से पहले कैबिनेट के स्तर पर इनका गहन अध्ययन करना। और क्या इतिहाद है, वे जल्द ही मॉरिशस में अपने विमानों का संचालन शुरू कर सकती हैं। फिलहाल कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन इस पर बातचीत की संभावना बनी हुई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि अबू धाबी की सरकार पिछले कुछ समय से इस बात में रुचि दिखा रही है कि एयरलाइंस मॉरिशस के लिए अपनी सेवाएं शुरू करें। हालांकि इसके लिए अब बातचीत शुरू की जानी बाकी है। नई हवाई सेवा शुरू होने से मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत हो सकती है, साथ ही इससे खाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी और बढ़ सकती है। विदेशी समाचारों में भारत की राजधानी दिल्ली में विद्यार्थियों के एक पेइंग गेस्ट कंपाउंड की 5 माले की इमारत कल ढह गई। कई लोगों के इसके मलबे में फंसे रहने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोगों को जीवित बचाया जा सका है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे हादसे और बिल्डिंग के गिरने की वीडियो कल से काफ़ी वायरल हो रही है। दिल्ली के मेयर ने 4 मंजिलों से ऊपर वाली सभी अवैध इमारतों पर तुरंत सील लगाने की घोषणा की। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिस वजह से इमारत की नींव कमज़ोर पड़ गई थी। और इंडोनेशिया में अनाक खतताओ ज्वालामुखी के राख के कारण जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिस वजह से करीब 1,70,000 यात्री वहीं फंसे रह गए हैं। इनमें हजारों विदेशी शामिल हैं। शुक्रवार देर रात ये ज्वालामुखी लावा उगलने लगी और आसपास के इलाकों में जल्द ही राख का धुआं छा गया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

हमने संगे जुड़ल हवा आप सब लोगन के स्वागत बाटे। नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में हमने संगे जुड़ल हवा बहुत बहुत धन्यवाद। आज हो हमने के मेहमान हवन फागिद अनिस से सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान शंभू जी। तबस हमने के संगे जुड़ल रहिया ई जो न टॉपिक है आज हमने बतियाब जा टूटा आपसो लूटा कौन ची है एगो बीमारी एगो बैक्टेरी ई पर हमने जस्ती बतियाब जा साथ निभाते जाइए जा।

0: हाँ, फिर से आप सब लोगन के स्वागत बाटे आज की चर्चा कार्यक्रम में। और जैसे पहले ही तोहरा आप बोल देले रहली कि आज हमनी टूटा आपसो लूटा, ये कौन ची है? एगो बीमारी है, एगो बैक्टेरिया है, जर्म है, कौन ची है? एकर पर चर्चा करे खातिर हमनी के मेहमान हवन फागिद अने से श्रीमान संजय शंभू जी, तचला इनका स्वागत हमनी करी लाजा। भाई शंभू प्रणाम।
1: प्रणाम, नमस्ते।
0: टूटा आपसो लूटा ये कौन ची है?
1: एब्सोल्युटली सबसे टूट गल ये एगो पिलवा हो के कैसे वैसा लाई मोफ
0: लाई हाँ
1: ऐसे ता जब लाई जो नहला ता रात के निकला ना ता इहु रात के निकला लेकिन ये पिलवा जो है ये जो टमाटर हो खास कर ओके पसंद करेला।
0: अच्छा,
1: दूसरा वो चीज पैसा किया है कैसे? हाँ। आज जरको रही, बैगन रही,
0: माने कि जो टमाटर जो पलनामुन के ओकर फामी जो हाँ। जुड़ल रही ला ओकरा।
1: और दूसरा वो चीज पैसा किया है ढेर हाँ। चीज खाला लेकिन खास कर पसंद करेला टमाटर के
0: पलनामुन के।
1: हाँ। पलनामुन के चाहे पसंद करेला तो आज गन लोग आवत आवत अनेक प्रकार के सब्जी रोपल बाते लेकिन आज वहाँ पर टमाटर रही तो उ जाए टमाटर के अता के करे।
0: अच्छा, तो ये कहाँ से आलबा? ये विदेश से आलबा, ये लोकल वे है?
1: विदेश से आलबा। अच्छा, टूटा एब्सोल्युटा जो है ओके ओके अंग्रेजी में बोला सा टोमेटो लीफ माइंड है काहे कि जैसे बोलने वो टमाटर पसंद करेला तो लीफ माइंड जो पत्ता के माइंड करेला ओकर में चिनेल बनावेला तो ये टमाटर के लीफ माइंड है। तो टूटा एब्सोल्युटा उस आलबा लैटिन अमेरिका से लेकिन तब लैटिन अमेरिका से तो उतना सीधा मॉरिशस में नहीं आवा ना
0: जी।
1: तो वो अपन ने गो कैसे भी लाओ करे अपन ने गो यात्रा कर ले बा वहाँ से निकल के लैटिन अमेरिका से थोड़ा ऊपर वगैरह जाके तब यूरोपियन देश में आलबा किसी जो मेडिटेरेनियन इलाका में बा तब वहाँ से तब नीचे बगल आलबा अफ्रीकी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आलबा तब अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में जब ढुकल बा तब नीचे जात जात जात जात तब हमनी बगल साउथ किसी सदर्न अफ्रीका तब होने बगल आलबा तब वहाँ से लेके तब मॉरिशस में आलबा सन 2019 में रेपेते हुए हाल तब से तो यहाँ पर अब बस गलबा है कर यात्रा तो जहाँ जहाँ गलबा अब हम थोड़ा बोलाते हैं है अब है यात्रा एक बरिस की बात नहीं है जब अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आ रहा तब सकेला 2010 मेरा निशा 2010-2000 लगभग साल रहा तो ओके देखा करीबन 10 साल लगल उत्तर अफ्रीका से लेके नीचे आके हमने लगे आए के
0: तो वो जब सगरो सगरो घूम फिर के आवता लैटिन अमेरिका से अफ्रीका लेक माने कि सगरो सगरो वो जहाँ गल हौजा के जो देशवा बातें हौजा के जो क्लीमावा बातें वो लोग से अदाप्ते होते होते हमने लगे आग।
1: हाँ, हाँ ये हुआ। और जैसे बोलिए मेडिटेरेनियन इलाका तो वहाँ पर थोड़ा सर्दी में थोड़ा सर्दी ठंडा रहेला लेकिन गर्मी रहेला वहाँ पर।
0: हाँ,
1: कैसे हमने कह लेते अफ्रीका में तक
0: हमने तो ट्रॉपिकल आइलैंड है सर। तो है जो टूटा आप सोल्यूटा हुआ बाटे वो पलदामुन के जब बोलत हुआ वो जस्ती अफेक्टे करेला वो गर्म के मौसम में अफेक्टे करेला ठंडा में कब?
1: बरिस भर लेकिन चला समझे कि ऐसा नहीं गो जन जन पिलुआ रहेला तो जब देखिला सब लोग का लाइफ साइकिल यानी कि अंडा से लेके कब आजुल्त बन के फिर से अंडा पारेलन सब। हाँ, तो जब सर्दी के मौसम रहेला तो ओके लोग के डेवलपमेंट थोड़ा खालोची हो जला।
0: अच्छा,
1: तो लंबा रहेला नहीं तो गर्मी के मौसम में

0: कहाँ लंबा रहत दो हफ्ते ही में गनला लाइफ साइकिल ओकर गनला कंप्लीट हो जाता
1: जी.
0: तो ई कारण से जस्ती हाली पिपले उलन सा
1: तो जैसे बोले हव एगो फ्लाई ह एगो
0: एगो मॉथ
1: एगो मॉथ ह माने कि लाई नियन तो पापियो नियन जब हम सोचत है तो ओ असने बाते माने कि
0: ओ अंतर ह पापियो जनेला ओ दिन के निकलेला
1: हां
0: कौन
1: भाग में रह पत्ता में भौंस में फलवे में अंदर कैसे रहेला कहाँ रहेला
0: देखा जैसे पहला तो बोलता टमाटर लीफ माइनर क्योंकि ये टमाटर के ज्यादा पसंद करेला दूसर चीज जैसे शुरू में बोले टूटल एब्सोल्युटली सबसे टूटल एगो ऐसे ऐसे करना एगो प्ले ऑफ वर्ड्स कहते बोलनी जब एक आदमी याद रखी कि टूटा एब्सोल्युटा जो बा वो एब्सोल्युमो जितना चीज बा टमाटर में सब क्या ताके कहला हर चीज के ता अब ऐसे देखा सा टूटा एब्सोल्युटा क्योंकि वो लीफ माइनर है और नाम संगीत जुड़ल बा तो सबसे पहला इतना एक लॉजिक बात है कि वो पत्ता क्या फेंकते करी तब पत्ता के ओकर में टनलिंग करेला ओकर भीतरे जियेला पत्ता के भीतरे से खाला लेकिन एगो लीफ माइनर एगो साधारण लीफ माइनर के जब तुलना करब तो ई खाली पत्ता पर नहीं रहेला ई जो ओकर चीज बा स्टेम बा ओकर स्टेमो में रहेला तो ओकर स्टेमो में से कि अंडा पार दे और स्टेमो में से कि हूँ पर ही टनलिंग
1: कले कले उस सब के खा जाए
0: हाँ स्टेम के खाली नहीं ये जन फल बा और जन टमाटर बा ओकर में भी सके अंडा पारे तब जब ओकर में अंडा पार दे तो कर लव भीतरी में चिन्हल करी
1: तो ऊ जब बोला था वह टमाटर वा पलदामुनवा के अंदर ऊ जब छोटे रहेला जब बड़ा हो जाला जब पक जाला तब ओकरे आता के
0: नहीं छोटा ही में जब पक जाए तो ऊ ता गनला बहुत देर हो गल बा जब जब टमाटर हरा ही बा हरा बा वे बाल से बोला सा कंचा बा वो तभी सके ओकर में अंडा पार दे तब जाके ओकर में खाए भीतरे में टनलिंग यानी कि कुंच करा था पत्ता में बा या स्टेम में बा या फ्रूट में बा तो कुंच करता और जो ओकर लव बा ओके तो बड़ा हो के मानो तो बड़ा हो के तो कहाँ से चला खाए के तो कुंच करी तो ओके चला खाए के तो जब पत्ता में बा स्टेम में बा या फ्रूट में बा तो वो जो लव बा तो खाते रहला खाते रहला खाते रहला तो ये कारण से बुझा सा टनलिंग होता लेकिन जब कैसे फ्रूट में भीतरे में जब खाता टनल होता तो टमाटर जुनबा जन फल जुनबा वो तो जाके सरे लगी बाद में तो जब सकेला हरा रही क्योंकि कंचा बातें तो थोड़ा फलवा सुलित बातें लेकिन जैसे तुरबा तुरबा या पके के शुरू करी तो सरे लगी
1: तो जब देख बा वो पिके होला ऊपर से जब मान कि जब आताके हो जाला
0: छेद लौकेला और ओकर जन टनल बा वो भी लौकेला अब आज ठीक से देख बा था एगो अच्छा चीज पूछता एगो एगो किसान जन अपन जन टमाटर रूप ले बा सबसे पहला तो जन पत्ता पर रहेला तो एगो साधारण लीफ माइनर से टूटा एब्सोल्युटा के जन सेप्टम है जन लौकेला टनलिंग कर ले बा वो गनला बहुत अंतर बात है साधारण लीफ माइनर गनला बुझाला भितरे में एगो सांप करीते गन्ना चलल बाते
1: अच्छा
0: गन्ना को चिनेल बा मैस मैस ऐसे रेखा करीते बा सांप करीते गन्ना चलल बा ऐसे रेखा जोन टूटा एब्सोल्युटा बा वो है पत्रा सांप करीते वो चिनेल ने लोकेला वो पाच करीते लोकेला
1: अच्छा
0: वो साके वो ढूँ के जब खाला तक चारों ओर ऐसे खाला तक वो पाच करीते दिखेला गन्ना कोई एगो कैसे जब पेंटिंग कर लंच तो एगो एगो तनी सुन ला पेंचले कैसे फेंक देवे लंच तो एगो पाच करते चिप पाच करते चिप कर लेला ना तो भीतरे में ऐसे लौकी अब ठीक से आज देख बो तोरा पत्ता में आज उसने पाच लोकल तो पाचवा कैसे ना रहला यानी कि भीतरे से जब खाता तो क्लोरोफिलवा चल जाला
1: अच्छा
0: तो जो हाउ हरा हो कुलिया वे रहला क्लोरोफिल के पत्ता के
1: पियरा लेके लेला
0: नहीं पियरा नहीं तो वेवा नहीं लौकेला बुझा लगा नहीं वो खिड़की कहते बा
1: अच्छा
0: एगो थोड़ा सुन
1: ट्रांसपारेंट
0: थोड़ा सुन क्रेम क्वालिटी रहेला बाद में से कि ट्रांसपारेंट ओके ताजे ओके पत्ता के लेके ठीक से आज ओकर में अपन अपन जो मोबाइल फोन बा आज हो तो जन
1: मन से देख बता हाँ
0: ओकर से देख बा में क्या पे आई घमा में से डाल के देख बा तो तरह लौकी हो लौवा जो भीतरी में बाकी से चला था खाता
1: तो हाई जो टूटा एब्सोल्युट बात है भाई शंभू कितना

0: बड़ा बात है, छोटा बात ही बड़ा बात है, कितना
1: बहुत छोटा रहेला, बहुत छोटा रहेला उता ओकर ओकर ओकर ओकर ओकर
0: जैसे बोली ला सा लय नु नै सकब सा देखे कैसे
1: नहीं नहीं नहीं लाई लाई की त लौकी लाई गन ला एगो कैसे तरह मतलब एगो लगभग एगो फतिंगा कहते रहेला छोटा में त फतिंगा त छोटा ही रहेला ना अब कर लव एकदम से छोटा रहेला उता हम तरह बोलते हैं कि जामे छे बुलब त 0.5 मिलीमीटर के अंदर ही रहेला ओकर लजे तो ओकर लंबाई तो ढेर छोटा रहेला देखा इतना ले छोटा रहेला कि कभी कभार जो इंसेक्ट प्रूफ नेट डाली ला जा वैसा कि ओकर भीतर प्रवेश कर दे
0: इतना छोटा बा
1: कौन ची होला कि जब अनेक अनेक कारण बा कहे किसी हम बताए अभी ग्रीन हाउस के बारे में बताए हाइड्रोपोनिक के तो एगो फतिंगा जनबा जन हो लाइक फतिंगा बोला सा तो एगो फतिंगा जनबा वो अनेक कारण से सकी भीतर प्रवेश करे एक होता बात जब कनला सकेला एगो किस एगो किसान हो वो अपन है जन आई ग्रीन हाउस के जन दरवाजा बाते वो सकेला कहना जब खुला तो यानी बहुत समय का दिन खुला छोड़ दे ले बा या फिर जन समय में गन जब वो अंदर प्रवेश करता था वही समय में एक दुख फटिंगा डुक गल
0: कहे कि जब ग्रीन हाउस की बात कर रहा था वही हाइड्रोपोनिक की बात कर रहा था वह सुरक्षित बात है कहे कि दू दू गो दरवाजा बात है एगो खुला
1: दर... सब हाइड्रोपोनिक में दू गो दरवाजा नहीं रहेला,
0: रहेला?
1: ज्यादा तक हम हमार अनुभव बा कि जरा तक जितना कोई के हाइड्रोपोनिक बा वो लोग डबल डोर सिस्टम नहीं कर लें जा एक एगो दरवाजा बात है जब एगो दरवाजा रहेला था जस्ती रिस्क
0: रहेला
1: जैसे खुला था एगो चीज कोने को पिलवा सकी अंदर चलाए डबल डोर रहला था एगो डो एगो दरवाजा खोल के अंदर गेला तब बंद कर देला तो पीछे तब जाके दूसरा दरवाजा खुला तो नहीं हाई में ऐसे नहीं ज़्यादा तक सिंगल डो के प्रबंध बातें प्रयोग होता नहीं हम मांग करती आज कोई कोई नवा जे ग्रीन हाउस बनावट हुई तो चाहे लाओ कि डबल डोर सिस्टम ना लेकिन दस्ती अच्छा और खाली खाली दरवाजा से ढुके नहीं लेना वो ग्रीन हाउस के होकर नेट में इंसेक्ट प्रूफ नेट तब बात जैसे क्लास छेद हुई
0: जी
1: छोटा सुन छेद जन बात है जैसे बोला सा फाउंट फाउंट ही बात है या फिर जन हो दरवाजा हुए जब जब बंद होला खुले ला तो जहाँ से बंद होला खुले होला हो हिंज सब जहाँ पर बा हुए पर या जगह फाउंट हुई
0: और जो जो जो लोग अंदर जालन सा वो लोग के लुगा में वो लोग के बोत में वो लोग के लापागे में
1: जैसे क्लास लुकाल हुई तब चल रहा थे जैसे फतिंगा है रात के निकलेला तो दिन के सकेला लुका गल हुई तब लेकिन अब तो ढुका लगता
0: है जब बात कर रहा था जब हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस जैसे बोला था वह उतना सबसे सुरक्षित जो बातें अब जो टूटा अब्सोल्यूटा अब्सोल्यूटा बातें जो लोग पलदामून के प्लौता शो सब रुपाई कर रहे थे वनसा ग्रीन हाउस में तो अब लोग के जो नेट पर बातें चाहे बदले के तो चाहे कुछ अदाप्टी हुई के तब कैसे
1: ए नो मालमो जैसे बोला सर तो इंसेक्ट प्रूफ नेट एगो प्रोटेक्शन दे वेला लेकिन हाई वाला जैसे बोलता है इतना ले छोटा रहेला
0: एगो स्पेशल नेट चाहे ला
1: होके चाहे जैसे छोटा नेट के प्रबंध करके जस्ती मांगा भी कुत्ते होला हाई एगो चीज तो लेकिन चला चला कभी कुछ समझे कि जोन टूटा एब्सोल्यूटा के ओकर लीफ माइनर बातें फीमेल कोई बन रही अंडा पारे के तो उस अकेला भीतर भी डुक के अंडा नहीं पड़ लेबा उस अकेला जाके हाउ इंसेक्ट प्रूफ नेट में हुएं पर जाके एगो एगो कैसे बोला सा मोमबत्ती मोमबत्ती देख लो ना उज्जर मोमबत्ती तो कर लासिया जन रहेला वैक्स जन रहेला वो देख बा वो फिले में एगो वैक्स उज्जर वैक्स कलिते है बातें तो हवे में जाके अंडा पार दे वेला चिपकल रहेला अब जब अंडावन एकलू होला तो हम जैसे तरह बोलते हैं लवन इतना ले छोटा रहेला तो आज इंसेक्ट प्रूफ नेटवर्क के ऊपर माई जोन बात है मैश रहेला तो एगो साइज के रहेला वो तो उस सकी ऊपर में था वैसे हो जाए पार हो जाए या तो फिर जैसे तरह बोलनी जो फॉन्ट बात है नीचे में और इंसेक्ट प्रूफ नेट नीचे जाके माटी लगे जाके जॉइन नहीं होला वहाँ पर ही तो आज नीचे में वो फॉन्ट हुई तो हाउ जन लवन बा गिर के नीचे तो जन फॉन्टन बा खोज के उठ जान अब तो वो लोग तो आश्चर्य हाउ जाने लें अंदर में टमाटर बा महक बा और एगो लासे में एगो को सौ थ्राशो बा टमाटर के एगो
0: चिपकल रही सब
1: सकले सकले बीरी माना उतना है टमाटर
0: सकले
1: वंसा तो महक भी जन बा तो महक भी ओपन फील्ड की तरह नहीं बा

0: हवा बातें दूर दूर में रुपल बा तब महक कम बा वगैरह
1: तो वहाँ से तो ज़्यादा निकलता ओपन फील्ड तो जस्टी कहाँ पर ही जो टूट एब्सोल्यूट हवा वो अफेक्ट करेला ओपन फील्ड में कि ग्रीन हाउस में
0: ओपन फील्ड में जैसे बोली दूर दूर में रुपल बातें और जो महक वगैरह बातें जो अच्छे करता उपिल हवा के तो वो उतना नहीं बातें और जो हवा बातें लेके गला चल जाता गला महक वाके तो उतना नहीं आवेदन छा आज अब अबू करते हुए तो एगो चीज बात जो मिले नेचुरल एनमीज ओपन फील्ड में तो जो नेचुरल एनमीज बा आके पाजिटे कर लुटापसुलुटा के और जो कंट्रोल किसान भी कराता सब मिला के देखा सब मैनेजेबल रहला या फिर उतना नहीं लौकेला लेकिन एगो ग्रीन हाउस में सबसे पहला ग्रीन हाउस था बन बा अब एगो बन चीज में उधुक गल बा एक तो निकले के प्रॉब्लम बा दूसरा तो उतना निकले ही नहीं खोजी उतना खाए के बा भीतर में काहे के निकले तो उतना हुए पर रही हुए पर ही पिपले हुए खाए के तो बहुत बात हुए पर आके खाए ना एगो ग्रीन हाउस में अंदर में लगभग बाहर से जब तापमान देख तब भीतर में सकेला 7 डिग्री 8 डिग्री ज़्यादा रहेला आज बाहर आज कैसे हबी बाहर में अगर 22 डिग्रीज का हुए तो अंदर एगो एगो ग्रीन हाउस में सकेला 30 तक करत हुई तक शुरू में कौन चीज बोलनी जब जब गर्मी के मौसम में ला तो जस्ती पिपले हो लंच तो लोग के लाइफ साइकिल कम हो जाला कम थी पर जला कम लंबा नहीं रहला छोटा रहला तो अब जब एगो ग्रीन हाउस में आज ढूक गल कौन चीज हुए एगो तो तापमान बाते तापमान ज़्यादा बा तो जस्ती हाली पे प्ले हुई दूसरी चीज कौन सी हुई खाए की तो कमती नहीं बा टमाटर ही खुशी रह लंच अब वहाँ पर तो अगर पत्ता बा ओकर फल बा ओकर स्टेम बा जोन लोग के चाहेला सब बातें अब जैसे बोली लासेवा तो बन बा ना उतर ढूक गल बा अब खाए के मिलता पेपले हुई तो उतर
1: नहीं जाए
0: अब जन बाहर में जो नेचुरल एनमीज बा ये जो ग्रीन हाउस में तो जब तापमान ऊंचा रहेला तो वो लोग तो नहीं आए भीतरे तो हाई पर
1: कंट्रोल नहीं रही
0: हाई पर तो अब नेचुरल एनमीज नहीं आए हाँ तो एक गो तो जो सहायता सकत करे वो तो अब सहायक नहीं बाटे अब एक जज चना सोचे के एगो जो फीमेल बाटे तो आप सुलता के गन ना उसकी
1: कितना अंडा पार
0: 200 अंडा पार दे
1: एक ही हला
0: ठीक 200 अंडा जब पारी तक नाचुए में सकीला सा काल के लिए कर बोला सके देखा आधा फीमेल आधा माल रहे ना तो अगर आज 200 अंडा पारी तो बोला सके देखा 100 गो सकेला में फीमेल रही 100 गो सकेला माल रही अंडा में तो जब एकलो ही तो आप 100 गो फीमेल मिली तो 100 गो फीमेल कौन चीज है 100 गो फीमेल अब जाके सकेला हर एगो फीमेल जनबा 200 अंडा और पारी तो हर एगो फीमेल जन्म ओकर में से 100 गो और मिली फीमेल अंडा पारे होला तो कौन चुगल 100 गो फीमेल एगो से 100 गो आल 100 गो से 100 मिल्च पेपर 100 कितना हो 10,000 हो गल अब 2 महीना में सकेला थोड़ा 100 फा 100 फा 100 फा 100 सकी हो जाए वो खातिन थोड़ा रोकेला कि एगो ग्रीन हाउस में एगो एक्सप्लोजन होला पॉपुलेशन टूटा एब्सोल्यूटा की क्योंकि हर एगो फीमेल जितना अंडा पारा था ओकर से और इसे मल्टीप्लाई हो ले जाता ओके एक्सपोनेंशियल बोला सब एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल मोटे हुई
1: हबी मोरिस में सिचुएशन कैसे बाका है कि भर्ती बारिश पर दामुन के तब लोताशो होती थी रहेला पोजुक्शो होती थी रह हबी सिचुएशन कैसे बा
0: देखा ब्रुता एब्सोल्यूटा के मैनेज करे खातिर कंट्रोल करे खातिर चला जाने के ओकर व्यवहार कैसे बा ओकर बिहेवियर कैसे बा ग्रीन हाउस में जोन किसान लोग समझल
1: जी
0: जेकरा से हमनी सकनी सा बातचीत करे जेकरा से सकनी जा साथ साथ एगो कोनो ट्रेनिंग करे या फिर अपने से अपने आप से किसान लोग चलना से सीखे हाँ अपने से सीखलन सा कि ओकर व्यवहार कैसे बा तब कैसे सकल जाए जस्टी बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाए ओके कंट्रोल करे खातिन तो वो लोग खातिन है सब जाने लन सा कैसे मैनेज करके मैं जो नहीं जाने लन सा दुविधा में होवन सा
1: जी
0: और ए, जे जे जे पेस्टिसाइड पर खाली रिलाय करेला तो उतना ज़्यादा दुविधा में होवन सा क्योंकि ई जन पिलुआ बा जैसे बोली लातिन अमेरिका से आलवा लातिन अमेरिका से हुआ यूरोप में आज अफ्रीका में

0: यात्रा करत करत मॉरिशस में आयल सोचला हुआ से हियाँ ले अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड ओकर पर प्रयोग हो गल बाती इतना ले होल बा कि ओकर जौन रीजनिंग आशो बा आजकल जौन रिपोर्ट लौकेला बोलन सा कि चुटाप सुरुता में कोनो कोनो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस भी डेवलप कर दे ले बा यानी कि काम नहीं करेला और बाहर में बोलन सा जैसे पा इफेक्टिव नहीं है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट पेस्टिसाइड द्वारा ओकर मैनेजमेंट करके इफेक्टिव नहीं है चाहेला ओकर बिहेवियर समझे के बिहेवियर पैटर्न ओकर से एक चीज जैसे अपनाए के योजना अपनाए के जो उनसे सकब सा ओकर सामना करे ज़्यादा जैसे निमन से
1: तो जैसे बोला था वह अभी पेस्टिसाइड के इस्तेमाल जे करबत सकेला वो और मिटे हो जाला और अभी कौन ची लोकल बातें ई जो छूटा एब्सोल्यूटा बातें कौन सोल्यूशन लोकल था
0: एगो सोल्यूशन एक गो से काम नहीं चले चाहला अनेक प्रकार के जो जैसे बोला योजना में स्ट्रैटेजी बातें चाहला अपनाए
1: करो जैविक सोल्यूशन कुछ बातें
0: हाँ यू सब बजा करे जैविक को सब बजा करे बियो अनेक प्रकार के बात लेकिन हाई मोवे नहीं छा सोल्यूशन वा जो बोला तो कौन सोल्यूशन वा हाई नहीं छा
1: बात
0: जो आदमी सोचता कि एगो सोल्यूशन वा प्रयोग करे तो वो डूब जाए तो हाई जो मेंटालिटी बा सोल्यूशन के चाह निकाले के जे भी जेकर लगे ग्रीन हाउस बातें टूटाप सुलता के समस्या बातें ओके चाहला बिहेवियर समझे के व्यवहार समझे के ताकि सकेंसा ऐसा ऐसा योजना अपनाए सोल्यूशन पेस्टिसाइड या स्प्रेइंग खाली कर रहा ये भुला जा तो कौन चीज चाहला करे के सबसे पहला कौन चीज बोलनी बोलनी जैसी पा देखा जो फौत बा ओकर में से ढुक जाए तो तोरा चला ऐसा ऐसा योजना अपनाए के जो हाउ फॉन्ट वगैरह जो फिशिया बात है फॉन्ट बा ओके सब बा बंद कर दे
1: जी
0: ये को प्रिकॉशन हो तब भी सकी ढुके बोलनी जिस जे जो फीमेल बात है जो ताप सुलता के उस की फिले पर चिपका के हुआ पर ही अंडा पारे तब ब्लव जब निकले ला तो या तो नीचे से जाके ढुक जाए या तो फिले में था वैसे हो जाए
1: जी
0: हाँ तो कुछ चला करे के एगो किसान जेकर ग्रीन हाउस बाते तो के चला खाली नहीं ताकि जना टमाटर की सेवा करे के बेच के पैसा गने के चला खाली चला ओकरा जब जब अपन लासे में जाता तो चला लासे के चारों ओर चले के अंदर से या बाहर से हो खोजे के हो जैसे बनी वैक्स लाबूजी लाबूजी का लेते हो वैक्स की तरह हो सफ़ेद थोड़ा क्रेम सफेद रंग के और चिपकल बातें
1: ये तो थोड़ा मिनिस्यूर
0: चाहे प्रिकॉशन चाह ले के कैसे जब लाइसेंस मिलल कोंजिया करे के तो चला ठीक से कोंजिया करे के ना कि जब लाइसेंस मिल गया जब कोंजिया करे जैसे तो अनभन मन करी नहीं सक बना तो चला चला प्रिकॉशन लेके और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यू जैसे बोल रहा सा अब जब ओके लोग जाए कि वहाँ पर ही
1: अंडा पड़ा
0: बा तो ओके चला जैसी सूचित हो जाए कि चला ओके जस्ती प्रिकॉशन लेके चला कार्गो ट्रीटमेंट भी करे के खाले होकर पड़ा हाई एगो चीज दूसरा चीज थोड़ा बोलनी हम टूटा सुलता को फतिंगा हो वो दिन के नहीं निकलेगा
1: खाली रात में
0: रात के निकली अपन जितना दिगा बा रात के करी जितना चिकाम बा करे के ओके सब रात के करी शाम से रात के तब दिन के जब सूर्य निकलेगा तब लुका जला चाहे ला किसान के समझे कि कहाँ लुकाला वो फतिंगा है तो जहाँ जहाँ सूर्य के किरण नहीं ढुकेला हुआ हुआ जाके लुकाला कहाँ है सब जगह वन भीतर जब एगो ग्रीन हाउस में चल बा तो देख बा फीले जब दिशान होला जब नीचे उतरेला तो कभी कभार खोसल रहेला
1: जी
0: तो खोसल जगह एगो सीट इडियाल है जहाँ पर ही उलुकात हुई
1: अच्छा
0: हाई एगो दूसरा चीज जब तोहर जो लाइन बातें टमाटर के ओकर में जैसे बोला सा कानोपी दौसीते ढेर बातें ढेर पत्ता बातें तो छाँव ज़्यादा करेला तो तबे आके जस्ती अंडा पारी जब तोरा हो जन फल बातें टमाटर के और घापन जब निकलेला तो दूगो टमाटर ऐसे छुअल रहेला तो दूगो टमाटर के बीच में या दो तीन गो टमाटर के बीच में वहाँ सूर्य की किरण ने ढुकेला
1: जी
0: तबे तोरा लो कि हाउ दूगो टमाटर अजी हटेला तो जाके अंदर में वहाँ भीतर में थोड़ा लो कि वहाँ पर ही
1: मानी कि जहाँ रोशनी नहीं बाटे हो जे उ लुकाला
0: हाँ हाँ तो हाई चला ऑब्जर्व करे के तब बाद में आप कुछ चला एक पर करे के दूसरा चीज बात थोड़ा बोलिए रात के निकलेला तो जितना हमने के मेन एक्टिविटी बाओ के मैनेज करे के चला योजना हुआ रात के योजना रहे के
1: जी
0: कैसे सकब सा करे

0: अंदर ग्रीन हाउस में सकप सा जैसे बोले इलेक्ट्रिक फ्लाई ट्रैप्स के प्रयोग करी ओकर में ओकर जो बल्ब रहेला वो मूव कुल मूव के लाली मियाँ मित करेला और एगो ग्रिल रहेला ग्रिलवा इलेक्ट्रिक का
1: जो जे एगो बाते मच्छर उस मारे के उस बाते
0: हाँ ओसनी ओसनी लेकिन छोटा छोटा नहीं चलना ला
1: बड़ा बड़ा
0: बड़ा बड़ा लेकिन डाले के एगो गनला एगो 500 या 600 मीटर स्क्वायर के ओकर ग्रीन हाउस में पर ही कम से कम एगो 4-5 को लगाए गया उसे
1: जी
0: अब हाउ के सकबा नीचे ही रख दे अब नीचे कहाँ पर फीले के भीरी ने रखिया नहीं तो फीले वहाँ पर जब बल्ब बरी तब बाहर से और आश्चर्य करी बिलवालों की तब भीतर जो लाइन बा टमाटर के एक दो लाइन के अंदर तब नीचे में सकबा रख दे तब दूसरा दूसरा लाइन में तब एगो 4-5 को इसे डाल दे बा रात के जब फतिंगा निकली तब वो लाली मेवा संगे वो रोशनी संगे जो मूव बात आश्चर्य हुए जब ग्रिल में पड़ी तब मरी लगी फजीर के तौरा पड़ी ताकि सब ग्रिल के
1: सफा
0: करे के नहीं तो आज हवे ग्रिलवा छोड़ दे बा जब दूसर आके ओकर पर पूजी हुई तब वो तो जो मरल बा ओकर पर पूजी हुई ना तो हवा कुआवाने लगी तो नहीं मरी चला निकाले के सफा करे के हाई एगो चीज बा दूसर चीज बा स्टिकी ट्रैप्स
1: जो एगो पियर के रहेला
0: हाँ एगो मूव के बाद दोनों से की काम करे लेकिन सबसे जस्ती कब काम करी जो सकबा एगो सोलर लाइट लेके ओकर ऊपर में लगा दे
1: अच्छा
0: ओकर ऊपर में जब दलबा तो सोलर लाइट बना अब गन्ना हो पियर कवा स्टिकी ट्रैप बा तो रात के जब हाई रोशनी बरता और यहाँ पर स्टिकी ट्रैप बा तो लोग रोशनी संगे आश्चर्य रहेला तो वहाँ से की जाए कोई कोई बात जो किसान लोग हम देख ले हैं अब क्योंकि कहना इलेक्ट्रिसिटी के मन में डाले के तो कुंज कलन से एगो सोलर लाइट लेके एगो कीवेट पानी एगो कीवेट पानी रख के वहाँ पर बीच में एगो सोलर लाइट डाल देव तुम सब दिन के चौ चला तो शाम के लेके डाल देवे लंस और पानी में तनि सुन हो लिक्विड वेसल जो रहेला
1: अच्छा।
0: तनि सुन खाली हो डाल देवा वो का है सरफेस टेंशन पानी के तुरे खातिन तो ऐसे जब फतिंगा आल तब कर पर जब पानी में छुआल तो सरफेस टेंशन तो कम हो गल बा तो में डूब के मर जला में कोई पेस्टिसाइड कुछ डाले के नहीं बा देख ला छोटा मोटा योजना बात है फिर बा फेरोमोन लेकिन हम देख ले हैं एक आध जना जन बा फेरोमोन के लेके शुरू से ही लाशे के अंदर प्रयोग कर सर हाई हाई अच्छा नहीं बात
1: है
0: तो फेरोमोन तो माल के आश्चर्य कर ला
1: अच्छा
0: आज दो प्रकार के फेरोमोन बा अभी मार्केट में एक बार जो केवल माल के आश्चर्य कर ला एक बार दोनों के आश्चर्य कर ला अब जो डाल देला जो फीमेल माल के दोनों आश्चर्य कर ला तो अच्छा करे तो लेकिन बाहर से बुलावत हो भीतर अंदर
1: जी
0: ना तब अब भीतर में फेरोमोन के तो बाहर से बुलावत है तो बाहर से खोज ही कहाँ पर ही फोटो बाबरी को डुके आते हैं तो फेरोमोन हम बोलते जो फेरोमोन के ट्रापा अच्छा बा एगो निमन चीज है ओके चला लाशे के बाहर डाले के खासकर जो खाली माल होला बा
1: जी
0: जैसे माल के पॉपुलेशन कमती हो जाए तो मेटिंग तो कमती हो जाए तो प्रोबेबिलिटी कमती हो जाए लेकिन सकबा दोनों जो नर मादा जो दोनों माल फीमेल दोनों के ओकर रखा बा वो भी सकबा प्रयोग करे लेकिन बाहर करिए क्योंकि अगर अंदर डाल देला तो अंदर आश्चर्य करबा
1: जी
0: जब गन्ना तो एगो सिचुएशन में हवा भीतर में अब कानी कुंच होल ऐसा सकेला योजना नहीं तैयार कर ली हुई तो अब भीतर में एगो बड़का पपीलाशो हो फतिंगा के तब आज भीतर में मन करी थोड़ा फेरोमोन डाल के तब लेके डाल दिया लेकिन शुरू में नहीं
1: अच्छा है
0: अब तो हर इलेक्ट्रिक फ्लाई ट्रैप बात हर स्टिकी ट्रैप बात हर पानी की हो या हो लालिमिया हो ला के हो तो हर फेरोमोन ट्रैप बा देखा कितना तरह के ला ट्रैप सब चला संगे संगे चले के हो जो फोन बा सबके ठीक कर दिले हो ऑब्जर्व ही करा तो अब हमने के जो काम कर ले हैं ऐसा उत्तरी इलाका में एगो कोलिक बा वो ईस्टर्न रीजन में भी वो काम कर ले बा तो हमने के लोकल बा पेस्टिसाइड जो केमिकल बा उन्हें काम करला एक तबा देजा है बाहर से जो विदेश में जो रिसर्च हो बा वो बोला जिस पर रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो बा शायद जिन्हें हाशन जो नाल बा तो लोग रेजिस्टेंस ने काम करला तो हमने देख ली जो नीम के जो जो कंपाउंड बा कोल्ड प्रेस नीम के जो बिछाता तो ज़्यादातर काम करेला हाँ काम करेला और अनेक प्रकार के बाद नाम नहीं सका बोले क्योंकि हम मार्केटिंग नहीं करते हैं तो ज़्यादातर नीम से जो आधारित जो
1: तेल
0: तेल बा बिछाता तो

0: काम करेला हवे तिलवा लेके सगबा जहाँ फिलेवा में स्प्रे कर दे जहाँ पर हो लाबूजी कहते थोड़ा लोकल तो मैं स्प्रे कर दे बा या फिर प्रिवेंटिवली जब तब दो हफ्ता में एक बार टमाटर में स्प्रे नहीं करे तो वो जन हफ्ता फिले बा ओकर में थोड़ा स्प्रे कर दे बा या फिर नीचे जैसे बोली हो फिले आके नीचे में ज्वाइन होता वहाँ हो कोई नवन में स्प्रे कर दे बा तो नीम के कुंज के ला वो एक रिपेलेंट हो जब डाल लेते को रिपेलेंट के त्याज करी ओ विसी द अंडा जे हुई तो के मुआ दे फिर तो एक इंसेक्टिसाइड की तरह वो भी सकेला
1: जी तब करना है अब तो हमने के बताओ भाई शंभू जब ये जो टूटा एब्सोल्यूटा हुआ बात है वो नाश कर दिलक धर ला एक ग्रीन हाउस के नाश कर दिलक तब सैनिटाइजेशन अब कैसे चाहिला करेगी ओकर स्टेप नेक्स्ट स्टेप कौन सी है
0: ये अच्छा प्रश्न पूछ ला क्योंकि जब ले हो फतिंगा रही तो आज एगो दूसरा टमाटर के ओकर प्लांटेशन कर ला तो वो प्लांटेशन वहाँ आगे रही जैसे कि हानि पहुँचे तो आज कोई टमाटर रोप ले बा टूटा होई या नहीं होई टूटा अब्सोल्यूटा होई या नहीं होई ओके चाहेला एगो नीमन सैनिटाइजेशन करे के और एगो ड्राई पीरियड अपनाए के
1: मतलब
0: यानी कि जब ओकर टमाटर के प्लांटेशन जब समाप्त होगा समाप्ति होगा सब लेके निकालियो निकाल के दो तीन हफ्ता कैसे बोले ओकर लाइफ साइकिल ओकर लाइफ साइकिल जोन बा गर्मी के मौसम में दो हफ्ता लगभग लगेला तो आज तीन हफ्ता तक कुछ नहीं रुक बा ओकर में टमाटर नहीं रही तो ओके खाए के कुछ नहीं मिली ना जो अंडा एक लो हो के रही तो वो एक लो हो गल रही तो लव के नहीं मिलल खाए के तो तब ले सकेला सब चीज़ मर जाए तो चाहेला जितना चीज़ बार निकाल के तो लासे के हो वाटर प्रेशर से नीमन से खूब धो के सकबा लासे के अंदर हो जो जैसे बोली नीम बेस कंपाउंड के लेके तब यू है ना ओके फीले पर नीचे वगैरह सब नीमन से रोप दे हाँ हाँ सब डाल दिया तब जाके तीन हफ्ता के बाद जब ड्राई पीरियड हो गल तब जाके एक दूसरा टमाटर के प्लांटेशन डाल दिया और एक चीज शुरू में ही एगो एंजिकाटिया की तरह हम तो बोलिए सैक्सों में कागे में चार पाँच गो एगो हो इलेक्ट्रिक फायर ट्रैप डाले के ना तो शुरू में ही टमाटर की जब प्लांटेशन डाल दिला सकबा एगो लेके बीच में डाल दी
1: तो हाइजा पर एगो प्रश्न आवता कई जरा बोले हवन कि हाँ जब से तुहू बोले हवा कि रोपाई से आगे जोन बिया बातें हमने बोली ला जाए हॉट वाटर ट्रीटमेंट जोन बिया बातें चाहेला करे के तो तुहर देखे में जे निमन से हॉट वाटर ट्रीटमेंट करबा पलदामुन के बिया के तो ई टूटा आप सोटूटा आए
0: हॉट वाटर ट्रीटमेंट बीमारी खातिर होला हाई पिलवा
1: इकर से नहीं जुड़ल रहेला
0: ई हॉट वाटर ट्रीटमेंट पिलवा से नहीं जुड़ल बात है लेकिन हॉट वाटर ट्रीटमेंट करल अच्छा है हॉट वाटर ट्रीटमेंट आज करबा रोपाई करे से आगे सेमे करे से आगे ता जन जन बीमारी रहेला तो कैसे बचबा
1: जी
0: आप टमाटर के जन पौधा रहे वो बची ता तो रहा उतना समस्या नहीं पड़ी नहीं नहीं हुई
1: अच्छा तो अब हमने के ढेर जना वो लोग सकेला बड़ा मात्रा में नहीं करे लन सा एगो अपन आंगन में घर के पाछे वो सब बातें तन सुन अपन कारों में करे लन जा जे लोग ये जो टूटा आप सोलूटा हुआ जो पैसवा बातें ओकर मैनेजमेंट के मन बातें करे के तो उन लोग के कौन सोल्यूशन कौन चाहेला करे
0: उन लोग के सब समस्या नहीं हुई बाहर में टूटा आप सोलूटा क्या हमने देख लें ऐसा हमने के जो कोलेग लोग बा ऑफिसर लोग बा क्रॉप एक्सटेंशन सब ऑफिस के इंचार्ज हुआ सा हर इलाका में बोले लन सा कि उतना नहीं लोकेला ओपन फील्ड में
1: कोनो ट्रेनिंग कुछ हो मिलेला रहेला
0: हाँ बिल्कुल जहाँ पर भी एगो किसान होई तो वहाँ के सबसे भीरी दफ्तर क्रॉप एक्सटेंशन के जरिया तो वहाँ के जो हमने के अधिकारी बा ओके बोलिया जैसे बात तोरा मन बा एगो ट्रेनिंग मिले के स्वीप करे के जो टूटा अब्सोल्यूटा मैनेजमेंट पर रही तो वो लोग सब प्रबंध करी अंजा
1: जी
0: हाँ वो लोग करी अंजा या तो हमने के सैंपिया में भी सब कॉन्टैक्ट करे हमने जो अरेंजमेंट करे के बाद कर दे जा
1: चल जितना जना हमने के संगे जुड़ल हुआ जे पलदामुन के बारे में ई जो टूटा अब्सोल्यूटा पर सकेला अभी ढेर जना जानत हुआ ई कौन चीज है तो फागे के कॉन्टैक्टे करिए और जो मेन ऑफिस न तो जो जितना सब ऑफिस बातें देश भर में हो जा परी जाके और
0: हाउ एगो चीज अच्छा बुला के जो बोलनी जब एक शुरुआत करत हुआ ग्रीन हाउस में एगो प्लांटेशन टमाटर के तो एगो इलेक्ट्रिक फ्लाई ट्रैप अनिवार्य चाहला बोले

0: लगाए के काहे वो एगो मॉनिटरिंग कहते हो गल तो रोज फजर के आके दिखब रोज के नहीं चाह ला के ऑन करे के लेकिन जब तब रात के लेके डाल दिया ऑन फजर के आके दिखब आज ओकर में चिपकल बा हाँ। एगो एगो फतिंगा तो जान जाए सकीला एक दुगो डुगल आज इलेक्ट्रिक नहीं डलब तो जैसे बोलिए सोलह लाइट जो बाटे ऊ लेके सब डाल दे और ओकर साथ साथ जो हॉस्टी की ट्रॉप डाल दिया तो एगो मॉनिटरिंग कहते काम कामे आए
1: तो तू लोग जब जाला जा कारो में ग्रीन हाउस में चेकअप करे एगो स्वीवी करे तो जब ये जो टूटा एब्सोल्यूटा वा बाते कितना तो लोग के लोकल बाते पीती पीती तो बाते तो लोग के देखे में कितना लोकल बाते
0: हम लगे ढेर वीडियो बा फोटो बा
1: कितना चिपकल रहेला
0: निर्भर करेला कि किसान के कितना कर अनुभव रहल मैनेजमेंट करे के ऐसे होला कि जन जन जन किसान के अनुभव बात है जो हम संगे ट्रेनिंग स्वीप कर दे बा जन ऐसा योजना आप नहीं ले बा दिखला ऐसा योजना में हम केमिकल पेस्टिसाइड नहीं बोले हैं ये सब काम कर रहा था सकियन जा ऐसा ऐसा लाशे भी विजिटे करे देखे कैसे दूसरा किसान कर रहा था जन जन जन किसान ये सब समझ गल बा हो बिहेवियरल पैटर्न हो पिलोवा की समझ ले बा और ओकर आधार पर अपन योजना अपना हुआ था तो वो ओके बा जो नए जन ले बा जो नया बातें जो नए जन ले बा जो नए समझ जा वो लोग के सब प्रॉब्लम होला लेकिन जब ऐसा ऐसा जब लाशे में जब जाए बा एक एगो उदाहरण के रूप में तोरा बोल देला कैसे तोरा लौकेला एगो आग लगल बा सबसे जरल लौकेला ना तो गन्ना एगो जब एगो ग्रीन हाउस में ढुकल तोरा ऊंचा ऊंचा टमाटर के पौधा लौकता उ गन्ना सब पौधा में आग धरल बा ऐसे सकब तोरा बोल दे इतना कि हर पत्ता हर एगो पत्ता में हो टूटा सुटा लिफ माइनर के ओकर प्रभाव बाते और जब वो जब बोल लीजिए हो क्लोरोफिल चल रहा विंडोइंग होला हो थॉस भागा लौकेला तो ट्रांसपावर इतियानल नहीं है हमेशा का तीन रहेला वो अमर नहीं है वो समय के साथ सरे लगेला तो जब सरेला तो वही जब एगो ब्राउनिंग इफेक्ट होला माहो वेला जर वही हो कुले कला जरल के कुले कहते लौकेला तो जब एगो ऐसा एगो ग्रीन हाउस में ढूब तोरा लोकल बा गनला हो जन खेती बाते हो टमाटर के गनला आग धरल बा ई में
1: सब कोई के नाश हो जाला
0: हाँ सब नाश हो जाला अब हम एगो चीज और सकब बोले शुरू में जब हम ही काम कर लेनी कर पर जो किसान लगे इस समस्या पहला आलम के लोकल रहल तब जाके सीख ली सा सोच ली सा कैसे सा कब सब क्योंकि पेशी ने काम करता
1: जी
0: ओके हाउ हाउ हाउ जो प्रताशो रहल टमाटर के हमने रेशियो नहीं सा निमन करे के हाई सब योजना अपना के एक महीना के बाद वो जन टमाटर के पौधा रहा फिर से हरिया गल लेकिन जाना तो ओके फिर से हरियाए के ओकर जितना फूल रहा फल रहा सब पड़ल निकाले के
1: अच्छा
0: अब जब फिर से हरियाल अब फूल पौधा अब फूल फल हो तोरा दो महीना और बा इंतजार करे के तो लगभग तीन महीना मर गल है सुधारत में अब एगो टमाटर के पौधा बा ओके तो जिए के बा गन्ना सात आठ नौ महीना न तो जब तीन महीना हिये मर गल
1: लाइफ स्पैन कमती हो
0: कितना महीना रह गल हाँ तो ये सब चला सोचे के कि हमने के चला ऐसा ऐसा योजना अपनाए के कि जमे वो नहीं आई इतने में
1: तो अभी जितना सकेला खेती हर जो जो लोग पलदामो नु सब के प्रोताशो करत हो वन जा उन लोग के कौन मिसाज दे पा कौन कोसे दे पा
0: हम बोलनी अनभन कैसे बुला सा अनभन इधर उधर नहीं सुना जाल में नहीं फंसा कि तोरा बोलन जा हाई प्रयोग करे के हाउ प्रयोग करे के ऐसे करे के नहीं नहीं चलेला हम अगली बार जो एगो प्रोग्राम करवाए तो हम सकब किसान लोग के आने जो जाके ऐसे अनभन सुन ले वन जा और वो लोग के कितना डिफिट हो बात है इसे बोला सब पैसा खिड़की पर फेंक दिलन जा फागे के पास आ हमने के जो अधिकारी का वो लोग संगे बातचीत करा हमने की जो ट्रेनिंग जो जो फॉर्माशो दे टूटा मैनेजमेंट में ओके जाके स्वीव करो तब जाके ऐसा ऐसा स्ट्रैटेजी योजना अपनाओ बेहतर रही तोर खातिर
1: कोनो दस्तावेज कोनो पापिया कुछ चाहिए ला इस सब ट्रेनिंग करे खातिर
0: जाके तू किसान हो हमने जाने ला सर तू किसान हो तू जाके हमने के क्रॉप एक्सटेंशन सब ऑफिस में जा हमने के जो वहाँ पर ही ऑफिस से बात है ओके भेंट करो ओके से दफ्तर से संपर्क रखा सब त्योहार आगोश में हो जाए वहाँ पर।

0: जी
1: कानूनी तौर से कोठा वगैरह नहीं मांगा जा।
0: अच्छा तो आज के चर्चा कार्यक्रम है जी परी समाप्त होला। तब आए संजय सबु बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यही आशा करे थे जा कि जो टूटा आप सुलूटा बा आप सुलूट में हमने की जन पदाबुन बा ओलो के सब कोई के नाश नहीं करी और कोथोले हो सकी जो हमें सब कोई की पलदाबुन मिली खाए के
1: कोशिश करे। और बोल दे अनुभव से लोकल बा की गन्ना एगो एगो ग्रीन हाउस में दो तरह के वाइटी बातें तो हम बोली थोड़ा टमाटर पसंद करा ना लेकिन एक आध गो वाइटी वो ज्यादा ही पसंद करेला।
0: अच्छा
1: ये किसान लोग के बोलती तो लोग अपन अनुभव से कभी कभार तो ग्रीन हाउस में एक और दूसरा वाइटी साथ साथ भी डाल दिया दो करते तो अपने ऑब्जर्वेशन से तो लोग अनुभव से जान जेब कि अगली बार कौन सी चना डाले की कौन सी नहीं।
0: अच्छा निमन से सुनिया निमन से ऑब्जर्व करिया और फलते फूलते रहिए जैसे हमने बोली ला सा। सब कोई के नमस्ते प्रणाम।
1: नमस्ते।

ज़्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं, 29% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या

के चलते पहली सितंबर को राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है। 3 सितंबर को लॉन्च किया गया बॉम्बस्टाट्स बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और

0: से आगे बढ़कर सवाल ये है कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने वालों के लिए वास्तव में इससे क्या बदलाव आएगा। उनका कहना है कि आंकड़ों को विषय या समय अवधि के आधार पर देखा जा सकता है और उपभोक्ताओं के लिए उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों के अनुसार उन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता है। नेशनल क्राइम एजेंसी की एक कानूनी ढांचा प्रदान करने की दिशा में 9 विधेयकों का प्रावधान किया जा रहा है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर गौर किया गया। इन विधेयकों में संविधान में सुधार, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और साथ में वित्तीय अपराधों, संपत्तियों की प्राप्ति और जांचकर्ताओं की मदद करने वालों से संबंधित नियम भी शामिल हैं। अगला चरण है राष्ट्रसभा में इन विधेयकों को पेश किए जाने से पहले कैबिनेट के स्तर पर इनका गहन अध्ययन करना। विदेश में भारत की राजधानी दिल्ली में विद्यार्थियों के एक पेइंग गेस्ट कंपाउंड में 5 माले की इमारत ढह गई। कई लोगों के इसके मलबे में फंसे रहने की आशंका है। कल से बचाव अभियान जारी है। अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 लोगों को जीवित बचाया जा सका। इस पूरे हादसे और बिल्डिंग के गिरने की वीडियो कल से काफ़ी वायरल हो रही है। दिल्ली के मेयर ने 4 मंजिलों से ऊपर वाली सभी अवैध इमारतों पर तुरंत सील लगाने की घोषणा की। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिस वजह से इमारत की नींव कमजोर पड़ गई। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। भंजन रोड सुहिनाम में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रिका दत्त मंगल जो चंद्रिका के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके मकान भंजन रोड सुहिनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाभा सुहिनाम की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. 819 kHz. Yeh hai Radio Mauritius.

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, 10:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। कार्यक्रम है भक्ति धारा। हमारा सादर प्रणाम सभी सुनने वालों को। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। चलिए इस घंटे के सफ़र में आपके लाए हैं चन्न भक्ति गीत। और हमेशा की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम भगवान गणेश जी का नाम लेकर करते हैं। और आपको पता है कि कुछ ही दिनों में हम गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने वाले हैं। तैयारियाँ जो है हो चुकी है। और आपको पता है ये त्यौहार जो है बहुत ही पावन पर्व है। और इस पर्व में हम भगवान गणेश जी को बहुत ही श्रद्धापूर्वक उनको हम पूजते हैं, उनका जो है व्रत धारण करते हैं। और चलिए कार्यक्रम के अंतर्गत जो है चन्न भक्ति गीत आपकी सेवा में शुरुआत जो है उन्हीं का नाम लेकर करेंगे।

श्रोताओं, सोमवार का दिन है आज और सोमवार का दिन आपको पता है कि समर्पित है भगवान शिव जी को। और शिव जो है सत्य है, सत्य में ही शिव है। वो बहुत ही दयालु है, कृपालु है, हर एक की मनोकामनाएं वो जो है पूर्ण करती है। बहुत ही सरलता पूर्वक जो है हम उनको मना सकते हैं। और कहते हैं एक मात्र लोटा जल चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाती है, और जितना वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतना जल्दी भी रुष्ट भी हो जाती है। तो शिव जो है हमारे लिए कल्याणकारी है, और भक्तगण जो है सोमवार का दिन बहुत ही श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से उनको पूजते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, हर एक तरह के जो उपाय करके जो है उनको हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का दिन जो है आप शिव के मंत्र को भी जाप कर सकते हैं, और सरलतापूर्वक हम ओम नमः शिवाय का जो है इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र भी बहुत ही कारगर जो है, बहुत ही सरलता से हम इस मंत्र का जाप करके शिव जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं।

0: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनु अरुण।
1: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में आप सभी श्रोता भाई बहनों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन। रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 260 दोहा के नीचे की चौपाइयाँ मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग आपको याद होगा, धनुर्भंग का प्रसंग है। वह अवसर जिसकी सबको प्रतीक्षा थी कि श्री राम धनुष तोड़ें और सीता जी के साथ उनका विवाह हो, लेकिन अभी तक वो क्षण आया नहीं था। यद्यपि गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम मंच तक चले गए हैं, धनुष को उन्होंने निहार लिया है, और जब वे ऐसा कर रहे हैं तो तुलसीदास जी ने सबके मन की स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। माँ अधीर हो रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी कम आयु का ये बालक कैसे इतना बड़ा धनुष, इतना कठोर, इतना भारी धनुष उठा पाएगा। इसी तरह की आशंका सीता जी के मन में भी है। उनके तो जीवन का पूरा आधार इसी धनुष पर टिका हुआ है। वे भी मन ही मन सभी देवी देवताओं की प्रार्थना कर रही हैं कि किसी तरह ये धनुष हल्का हो जाए ताकि श्री राम इसे आसानी से उठा लें और इस धनुष को तोड़ दें और इस प्रकार सीता जी की मनोकामना पूरी हो जाए। अब श्री राम सीता जी की ओर एक दृष्टि डालते हैं और उनके मन की स्थिति को भली प्रकार समझ जाते हैं, और अपने मन में ही वे ये सोचते हैं कि यदि उचित समय पर कोई कार्य ना किया जाए तो फिर बाद में पश्चाताप होता है। कहीं यदि मैंने धनुष उठाने में, तोड़ने में विलंब कर दिया तो सीता कहीं प्राण न त्याग दें, क्योंकि एक क्षण में ही श्री राम ने सीता जी की मनः स्थिति को परख लिया था, जान लिया था। वे समझ गए थे कि एक एक पल सीता जी

के लिए कितना कठिन है। और अब वो समय आ गया है कि श्री राम को धनुष उठाना है, तो कैसे उठाते हैं धनुष, इसका वर्णन इन चौपाइयों में हो रहा है। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन श्री राम जी ने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। कल्पना करके देखिए कि जिस धनुष को एक से एक बड़े वीर पराक्रमी और अजेय राजा उठाने आए थे, वे उसे टस से मस नहीं कर सके थे। उठाना तो छोड़िए, धनुष को उसकी जगह से हिलाना भी किसी के लिए संभव नहीं हो पाया था। और सब लज्जित और अपमानित होकर के अपनी अपनी जगह पर जा कर के बैठ गए थे। सबको यही लगता है कि अब ये धनुष कोई नहीं तोड़ पाएगा। जब राजा जनक ने अपने मन का परिताप अभिव्यक्त कर दिया कि इस धरती पर कोई राजा, कोई वीर राजा नहीं बचा, कोई पराक्रमी नहीं बचा, क्योंकि यदि कोई पराक्रमी या वीर होता तो अवश्य धनुष उठा लेता और मेरा प्रण पूरा हो जाता, तो सभी जो अपमानित राजा हैं, लज्जित राजा हैं, जिनका मनोरथ पूरा नहीं हो पाया, वो भी अंदर ही अंदर यही सोचते हैं कि कोई नहीं उठा पाएगा धनुष। लेकिन उसी धनुष को उन श्री राम ने कैसे उठा लिया, फुर्ती से उठा लिया। बाकी लोग तो अपनी पूरी ताकत लगा के उसको कभी यहाँ से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वहाँ से, और कोई नहीं, एक तरह से छू भी नहीं पा रहा था। और उसी धनुष को तुलसीदास जी लिखते हैं, अति लाघव उठाई धनु लीना, मानो राम जी ने छुआ और वह धनुष उठ गया। इतना पराक्रम था श्री राम में कि वो भारी धनुष भी उनके लिए बिल्कुल भारी नहीं था। उन्होंने उसे ऐसे उठाया मानो कोई हल्की सी चीज़ हो और उसे आसानी से उठा लिया जाए। फिर उन्होंने क्या किया, उसे उठाई धनु लीना, उसे अपने हाथ में ले लिया उठा करके। कैसे ले लिया, उतना बड़ा उतना विशाल धनुष उन्होंने अपने हाथ में उसे बहुत ही सहजता पूर्वक उठा लिया। और फिर क्या हुआ, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। तब वह धनुष बिजली की तरह चमका, मतलब उन्होंने उठाया और जैसे लग रहा था कि बस धनुष इसी प्रतीक्षा में था कि श्री राम के हाथ का स्पर्श मिले और वो खंड खंड हो जाए। इसलिए जैसे ही श्री राम ने उसे छूने की कोशिश की, मानो वह धनुष अपने आप उनके हाथ में आ गया। कहने का तात्पर्य, उन्हें इतना हल्का लगा कि मानो उन्हें कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ा, अनायास वो धनुष उनके हाथ में आ गया। और फिर वह धनुष बिजली की तरह चमका। बिजली की तरह चमकने का क्या मतलब, जब आकाश में बिजली चमकती है तो कितने क्षणों के लिए चमकती है, जब तक हम देखें कि बिजली चमके तब तक बिजली की चमक समाप्त हो जाती है। यानी पलक झपकने में जितनी देर लगती है उतनी देर में बिजली चमकती है और समाप्त हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जितना समय बिजली चमकने में लगता है उतने ही समय में वह धनुष मंडलाकार हो गया। यानी लग रहा था कि गोल गोल वो आकाश में घूम रहा है और बिजली की तरह चमक रहा है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। क्या अर्थ, कि ये जो तीन काम हैं कि श्री राम धनुष को लेते, उसे उठाते, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते, ये तीनों काम करते हुए किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि एक क्षण भी नहीं लगा ये सब करने में। वो गए, उन्होंने छुआ, मान लो धनुष उठा, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। इतना आसान था। इसलिए जब ये काम

कार्य हो रहा है, तो इतनी जल्दी में हुआ, इतनी शीघ्रता से हुआ कि मानो किसी ने उसे देखा ही नहीं। कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता नहीं चला। सबने श्री राम को धनुष खींचे खड़े देखा। जब ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई और श्री राम खड़े हैं अब कि धनुष तो टूट गया, तब लोगों ने देखा कि अरे धनुष तो टूट गया और श्री राम खड़े हैं। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उस क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से तीनों लोक भर गए। जब उस धनुष पे उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई तो जो गर्जना हुई, जो बहुत तेज ध्वनि हुई, वो ऐसी थी कि तीनों लोक उससे भर गए। यानी वो ध्वनि तीनों लोकों में भर गई, हर लोक में वो ध्वनि भर गई। कहने का तात्पर्य यह है कि उससे बहुत बड़ा शोर हुआ, बहुत बड़ी ध्वनि हुई, बहुत बड़ी आवाज़ हुई, क्योंकि धनुष इतना बड़ा था, इतना कठोर था, इसलिए जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ी तो बहुत बहुत बहुत आवाज़ आई, बहुत शोर हुआ, बहुत ध्वनि हुई, और लगता था कि सारे लोकों में ये ध्वनि भर गई। यानी होना तो ये चाहिए था कि केवल उस सभा मंडप में वो ध्वनि सुनाई देती। बहुत यदि होती तो सभा मंडप में आवाज आती, लेकिन वो धनुष तो कोई साधारण और सामान्य धनुष नहीं था, शिव जी का धनुष था। इसलिए मानो जब वो टूटा तो तीनों लोकों में उसके टूटने की आवाज पहुंच गई। तुलसीदास जी लिखते हैं आगे, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तज मा रघु चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही, कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल बिचार ही, को दंड खंडे उराम तुलसी, जयति बचन उचार ही। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वारा और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको ये निश्चित हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सब कुछ अनायास हो गया, सब कुछ एकाएक हो गया, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ तो सीता जी की माँ चिंतित हो रही हैं कि श्री राम कैसे धनुष उठाएंगे, सीता जी चिंतित हो रही हैं, और कहाँ एक क्षण में श्री राम ने ये चमत्कार किया कि धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके दो टुकड़े कर दिए। इतनी जल्दी में ये सब कार्य हुआ कि जैसे लग रहा था कोई इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकेगा। इसलिए घोर कठोर शब्द से लोक भर गए, मतलब वो जो शब्द हुआ धनुष टूटने का, वो इतना बड़ा था, यानी इतना कोलाहल था, उसमें इतनी तेज आवाज़ थी कि मानो तीनों लोकों में वो शब्द पहुंच गया। और उसे सुन करके, उस शोर को सुन करके सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। कहने का मतलब, आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव अपने रथ से जाते हैं और उनके रथ में 7 घोड़े होते हैं, लिए आपको ज्ञात है कितना अनुशासन है उनके जीवन में। सूर्य अपनी गति के अनुसार चलते हैं, उनकी गति में कभी भी कोई रुकावट नहीं होती और समय का कोई व्यवधान नहीं होता। इतना अनुशासित, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्य की गति इतनी अनुशासित है, इतने अनुशासन के अनुसार चलती है कि एक क्षण की भी कहीं कोई देरी नहीं होती। ऐसे सूर्य देव के जो घोड़े हैं, जो उनको पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करवाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है सूर्य को कहते हैं कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वे दिन रात परिक्रमा करते हैं ब्रह्मांड की, तो ऐसे सूर्य के जो 7 घोड़े हैं वे भी डर गए और डर के मारे वे अपनी
दिशा भूल गए।

क्योंकि इतनी तेज आवाज थी, आज तक उन्होंने इतनी तेज आवाज नहीं सुनी थी, तो घोड़े भी मानो विचलित हो गए। और जो दिग्गज है, दिग्गज का क्या अर्थ है, हमारे यहाँ 10 दिशाएं मानी गई हैं। एक तो पृथ्वी, ऊपर आकाश, फिर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और जो चार दिशाएं हैं उनके चारों कोण। तो इस प्रकार 10 दिशाएं, और हर दिशा का एक हाथी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर दिशा में एक हाथी है जो अपनी दिशा को नियंत्रित करता है। तो जितने दिग्गज हैं, मतलब गज मैंने हाथी, जो दिशाओं के हाथी हैं, वो भी कांप गए कि ये क्या होगा, और वो चिंघाड़ने लगे, यानी तेज आवाज करने लगे। धरती डोलने लगी, हिलने लगी। आपको याद होगा कि लक्ष्मण जी जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी को दबा दिया था ताकि पृथ्वी का संतुलन ना बिगड़ पाए। लेकिन उसके बावजूद भी पृथ्वी डोलने लगी। पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है? शेषनाग, वारा और कच्छप ने। इस शोर को सुन के धरती के नीचे वे कच्छप जी, वे शेषनाग, वे वारा, जिन्होंने धरती को धारण कर रखा था, किसी ने अपनी पीठ पर, शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर, तो सब के सब बिल्कुल व्याकुल हो उठे। और देवता, राक्षस और ऋषि मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे, क्योंकि केवल पता तो चल रहा है जनकपुरी में कि श्री राम धनुष तोड़ रहे हैं, अभी तो दूर दूर तक ये समाचार नहीं फैला है। इसलिए जितने देवता हैं, राक्षस हैं, ऋषि मुनि हैं, वे सब व्याकुल हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, आज क्यों एकाएक इतना कोलाहल हो रहा है, एक विचित्र प्रकार की ध्वनि हो रही है, आखिर ऐसा क्यों। तो तुलसीदास जी कहते हैं, को दंड खंडे उराम तुलसी जयति बचन उचारही। जब सबको ये पता चल गया, सबको ये निश्चित हो गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ा है, तब जाके मानो सब होश में आए। अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को ना अपनी आंखों पे विश्वास हो रहा है, ना कानों पर उस ध्वनि को सुन के विश्वास हो रहा है कि धनुष टूट गया। यानी सब जैसे कोई चित्र खींच करके किसी ने स्थिर करके उसको रख दिया हो, क्योंकि चित्र तो अपने आप नहीं डोलता है, चित्र तो स्थिर है। तो सब बिल्कुल चित्रवत हैं, सब स्थिर है, किसी को होश नहीं है, सब देख रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। आंखें जो देख रही हैं, वे आंखें उस दृश्य पर विश्वास नहीं कर रही हैं, कान उस ध्वनि पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा सा समय लगा, उसके बाद सबको लगा कि अरे ये तो राम जी ने धनुष तोड़ा है, और तब जाके सब श्री राम की जय जयकार करने लगे। शंकर चापु जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। आइए श्रोताओं, इस सोरठे को जरा हम गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करें। आपको याद होगा कि तुलसीदास जी ने इसके पहले भी दोहा 260 के पहले दो चौपाइयों में एक बात कही थी कि संभुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़ हारू। यानी ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े, और ये राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई केवट नहीं है। ये बात जो वहाँ कही थी 260 दोहे के पहले, उसको यहाँ पर वे एक तरह से समाप्त कर रहे हैं, उसका यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शिव जी का धनुष जहाज है। पहले भी कह चुके हैं कि शिव जी का धनुष क्या है, जहाज।

जहाज है। जहाज कहाँ चलता है? समुद्र में। तो यदि जहाज है तो समुद्र होना चाहिए, तो समुद्र कौन है? तो कह रहे हैं रघुबर बाहुबल, राम जी की भुजाओं का जो बल है वही मानो समुद्र है। और धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया। कौन सा समाज डूब गया? जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने 260 दोहे के पहले किया था। कौन कौन? सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। ये इतने लोगों का समाज, इतने लोगों का एक समूह जाकर के जहाज पर बैठ गया था। कहने का मतलब, इन सब लोगों की चिंता कहाँ टिकी हुई थी, सबका मन कहाँ टिका हुआ था? राम जी के धनुष पर, कि ये धनुष टूटेगा या नहीं। तो ये जो धनुष टूटेगा या नहीं, इस पर सबका मन टिका हुआ था। तो मानो ये सब क्या हैं? ये सब सवारियाँ हैं। और ये सब कहाँ सवार हो गई हैं? यानी लोग नहीं, लोगों के जो भाव हैं जिनका वर्णन किया अभी, कि सीता जी की चिंता, रानियों का दुख, राजाओं का अभिमान, ये सब जो बातें हैं, ये मानो ये सब क्या हैं? लोग हैं, समाज हैं, और इनको समुद्र पार करना है। तो कहाँ जाके बैठ गए हैं? जहाज पर। जहाज क्या है? शिव जी का धनुष। यानी सबका मन शिव जी के धनुष पर टिका है कि ये धनुष टूटेगा या नहीं। और ये जो जहाज है शिव के धनुष रूपी, जो जहाज की महिमा है, वो जहाज है कहाँ? तो कह रहे हैं वो जहाज है समुद्र में। और समुद्र क्या है? श्री राम की भुजाओं का बल। और अब हुआ क्या? जब जहाज टूट गया तो लोग कहाँ जाएंगे? डूब जाएंगे। समुद्र है, समुद्र में जहाज है, जहाज पे लोग बैठ गए हैं, लेकिन जहाज टूट गया तो लोग डूब गए। कहने का मतलब क्या? देखिए कितना सुंदर लिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि उन सब लोगों की जो चिंताएं थीं, संदेह था, किसी का अभिमान था, किसी का गर्व था, वे सब मानो सवारियां बन करके श्री राम के धनुष टूटने की प्रतीक्षा में थे कि पता नहीं टूटेगा या नहीं। लेकिन अब जब टूट गया तो सबकी चिंता मिट गई। जहाज टूट गया, टूट गया का मतलब वो समुद्र में गिर गया। तो जब समुद्र में गिर गया और जहाज टूट गया तो जितने लोग बैठे थे वे डूब गए। तो ये कौन लोग हैं जो डूबे? तो लोग नहीं डूबे, लोगों के जो मनोभाव थे, जो चिंताएं थीं, जो दुख था, वे सब दूर हो गए। बस इतना तात्पर्य है कहने का कि जो सब लोग आशंकित थे, सबके मन में चिंताएं थीं, सबके मन में भय था, सबके मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे, वो धनुष टूटते ही समाप्त हो गए। क्योंकि वो सवारियां थीं और मानो जब जहाज टूटा तो सवारियां डूब गईं और वह सारा समाज डूब गया। तुलसीदास जी कहते हैं जो प्रथम ही मोह बस, जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। कौन चढ़ा था? जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। और प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे, कौशिक रूप पयोनि दीपावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, ये कई चौपाइयों में ये भाव निहित है और इसे हम अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। आइए एक भजन सुने और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम दें। धन्यवाद, नमस्कार।

चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भजले प्रभु का नाम। वैसे ये कार्यक्रम रात के 8 बजे आप सुन पाएंगे और इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भक्ति धारा कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रही है शुक्रवार। वैसे हम आपके लिए फिर से भक्ति धारा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए श्रोताओ, सोमवार का दिन हम भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं। चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत ही प्यारा सा जो है भक्तिगान जो है आप सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ, आइए सेंट्रल एक्विस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। विलाज डे सामुनी गामा रोड का गुलबाव और कंफानी के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 8 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्विस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। अभी आप सेंट्रल एक्विस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं, श्रोताओ आप समाचार सुनेंगे, बाकी कार्यक्रम उर्दू भाषा में सायदा के साथ। तो चलिए हमारी ओर आप सभी को शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार प्रणाम सभी सुनने वालों को। नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार। एमिरेट्स की फ्लाइट EK704 जो मॉरिशस से दुबई के लिए कल रात 9:50 पर रवाना होने वाली थी, वो एक तकनीकी खराबी के कारण एयरपोर्ट पर ही रह गई। वो फ्लाइट आज सपहर 3:30 रवाना होगी। यात्रियों को खाने पीने के लिए वाउचर्स दिए गए और जिन लोगों को दुबई में दूसरी फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, उनके लिए दोबारा बुकिंग कर ली गई है। एमिरेट्स के प्रवक्ता ने इन बातों की जानकारी देते हुए इस देरी को लेकर खेद जताया। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा है। 23 ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए, यानी 29% की वृद्धि। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के चलते 1 सितंबर को राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया।

हैं जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है। क्या इतिहाद एयरवेज जल्द ही मॉरिशस में अपने विमान का संचालन शुरू कर सकती है? फिलहाल कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन अब इस संभावना पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि अबू धाबी की सरकार पिछले कुछ समय से इस बात में रुचि दिखा रही है कि ये एयरलाइंस

0: करें। हालांकि इसके लिए अब बातचीत शुरू की जानी बाकी है। नई हवाई सेवा शुरू होने से मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत हो सकती है। विदेश में भारत की राजधानी दिल्ली में विद्यार्थियों के लिए एक पेइंग गेस्ट कंपाउंड की 5 माले की इमारत कल ढह गई। कई लोगों के इसके मलबे में फंसे रहने की आशंका है। अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 15 लोगों को जीवित बचाया गया। इस पूरे हादसे और बिल्डिंग के गिरने की वीडियो कल से काफी वायरल हो रही है। दिल्ली के मेयर ने 4 मंजिल से ऊपर वाली सभी अवैध इमारतों पर तुरंत सील लगाने की मांग की। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिस वजह से इमारत की नींव कमजोर हो गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोज़ा।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ इत्र से कपड़ों को महका लेना बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महका लेना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है कि इंसान के किरदार से खुशबू आए। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाज फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, बयान, नातु सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। गिरते आंसू और टूटे दिलों की कद्र सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। कुरान कहता है दिलों के हाल तुमसे बेहतर अल्लाह जानता है, तुम्हारे खामोश सजदे और तुम्हारी अनकही बातें खुदा के यहाँ बहुत ख़ास मकाम रखती हैं। मौज़ सामीन, हस्ब मामूल आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समात फरमाएंगे सूरह अलानाम का एक और हिस्सा। आउज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

0: और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन मवेशियों के पेट में है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है, और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो तो सब उसमें शरीक हैं, यानी उसे मर्द और औरतें सब खाएं। अनकरीब अल्लाह उन्हें उनकी इस तजवीज पर सजा देगा, बेशक वो हिकमत वाला है, खबरदार है।
1: قد خسر

और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ, और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी उसमें से अदा करो, और बेजा ना उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता।

और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।

ये बड़े छोटे मवेशी 8 किस्म के हैं, दो दो भेड़ों में से और दो दो बकरियों में से, यानी एक एक नर और एक एक मादा। ऐ पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसे? अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और दो दो ऊंटों में से और दो दो गायों में से, उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसको? भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था तुम उस वक्त मौजूद थे? अब उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि बेजाने बूझे लोगों को गुमराह करे? कुछ शक नहीं कि अल्लाह सालिम लोगों को हिदायत नहीं देता।

0: कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लुहू या सुअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज हो कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है मेहरबान है।
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم

और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गायों और भेड़ बकरियों से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। यह सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अब अगर ये लोग तुम्हारी तकजीब करें तो ऐ पैगंबर कह दो, तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है और उसका अजाब भी गुनहगार लोगों से नहीं टलेगा।

जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते और ना हमारे बाप दादा शिर्क करते और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो इनसे पहले थे, यहां तक कि हमारे अजाब का मजा चक कर रहे। कह दो, क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता।

कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीजें हराम की हैं, फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं।

कहो कि लोगो आओ, मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं, उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसुलूकी न करना, बल्कि हुस्न सुलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं, और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास ना फटकना, और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल ना करना मगर जायज तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो।

0: और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो के वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो, इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो, और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना, और दूसरे रास्तों पर न चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो।
1: सदकल्लाहु लज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक शख्स गुज़रा। कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इस शख्स से महज खुदा की खातिर मोहब्बत है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो क्या तुमने इस शख्स को ये बात बता दी है? वो शख्स बोला, नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और इस पर जाहिर कर दो कि तुम खुदा के लिए इससे मोहब्बत करते हो। वो शख्स फौरन उठा और जाकर उस जाने वाले से अपने जज्बात का इजहार किया। उसके जवाब में उसने कहा, तुझसे वो ज़ात मोहब्बत करे जिसकी खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है। बाहवाला तर्मिज़ी शरीफ।

प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में इरशाद है, जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। हमें अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करते रहना चाहिए।

0: ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र किस किस बात पर करें, तेरी नेमतों का जिक्र किस किस लफ्ज़ में करें। शुक्र इस ज़िंदगी का, शुक्र इस ईमान का, शुक्र तेरी रहमत का, शुक्र तेरे कुरान का, शुक्र माँ बाप की मोहब्बत का, शुक्र घर के सुकून का, शुक्र रिस्क की बरकत का, शुक्र हर एक निवाले का, शुक्र आँखों की रोशनी का, शुक्र दिल की धड़कन का, शुक्र सुबह की किरणों का, शुक्र रात के दामन का, शुक्र सेहत व आफियत का, शुक्र हर आसानी का, शुक्र गम में सब्र का, शुक्र तेरी मेहरबानियों का। ऐ परवरदिगार, एक नेमत और हमेशा अता रख, हमारे दिलों को अपने जिक्र से सदा आबाद रख। नमाज की मोहब्बत हमारे दिलों में बसा दे, हर सजदे में हमें अपने और करीब बुला ले। हमें पांचों वक्त तेरे हुजूर झुकना नसीब हो, आखिरी सांस तक तेरा शुक्र करना नसीब हो। नेमतें चाहे कम हो या ज़्यादा, दिल शुक्रगुजार रहे। अल्लाह बस तेरा करम हम पर हमेशा बाकी रहे। मौज़े सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं। पीर का दिन है और सितंबर की 7 तारीख है, और माह नूर माह रबीउल अव्वल की आज 25 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। ताखीर ना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे मुबल्लिगे दावते इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम गुनाहगारों की शफ़ाअत फरमाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन अल्फा मर्रा लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्ना। यानी जो मुझ पर एक दिन में 1,000 दुरूद शरीफ पढ़ेगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईने किराम, 9वीं सदी हिजरी के एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन कासिम रस्सा रहमतुल्लाही ताला अलैह। आप अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और काजी,

यानी जज थे। आपने प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों से मुतालिक एक किताब लिखी है जिसका नाम है तज़किरतुल मुहिब्बीन। बहुत प्यारी किताब है और ये किताब हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल भी है। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मरतबा मैं यही किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई, ज़ाहिरी आँखें बंद हुईं, दिल की आँखें खुल गईं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्वाब में प्यारे नामों वाले प्यारे नबी रसूल हाशिमी मक्की मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा किराम अली मुरीदवान इर्द गिर्द हलका बनाए बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमने की सआदत हासिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी इस मुबारक मजलिस में बिठाया, मुझसे तिलावत भी सुनी और यही किताब यानी तज़किरतुल मुहिब्बीन जो मेरे हाथ में ही थी इसके भी कई सफ़ात सुने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उठकर तशरीफ़ ले गए। जब मैं नींद से जागा तो खुशी के मारे आँखों से आंसू जारी थे। सुभान अल्लाह, कैसी खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह पाक हमें भी ख्वाब में दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत नसीब फरमाए। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, इस प्यारी और बारगाह रिसालत की मकबूल किताब के सफ़ा नंबर 52 पर हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत ही गुनाहगार था, नेकी की जानिब तो कभी बढ़ता ही नहीं था, बस दिन रात गुनाहों ही में गुजारता चला जा रहा था, सारी उम्र यूं ही गुनाहों में गुजरी। आखिर एक दिन उसका वक्त आखिरी ही आ गया, हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, रूह कब्ज़ हुई और ये बंदा गुनाहगार मौत के रास्ते कब्र की सीढ़ी उतर गया। मरने के बाद किसी ने उसे ख्वाब में बहुत ही अच्छी हालत में देखा, हैरानी से पूछा, ये हुस्न व जमाल, ये ज़ेब व ज़ीनत, ये बुलंद मकाम तुम्हें कैसे मिल गया, तुम तो बहुत गुनाहगार थे। कहा, हाँ वाकई में बहुत गुनाहगार था, एक दिन मैंने तौरात शरीफ खोली तो इसमें अल्लाह पाक के महबूब नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, आपके प्यारे प्यारे औसाफ देखे तो गलबा मोहब्बत से मैंने आपका नाम पाक चूमा और सर पर रख लिया। बस नाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अदब की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझ पर फजल व एहसान फरमाया और मेरे सारे गुनाह बख्श दिए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, क्या शान है मेरे महबूब नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा भी हैं, हाजत रवा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक को भी अजमत बख्शी है कि आपके प्यारे प्यारे नामों के सदक़े भी हाजात पूरी होती हैं, मुश्किलात टलती हैं। दुनिया तो दुनिया रही, यहाँ की मुश्किलात की तो वक़ात ही क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम ऐसे शान वाले हैं कि इनकी बरकत से दुनिया ही नहीं कब्र की मुश्किलात भी टलती हैं, हश्र की मुश्किलात भी टलती हैं, क़यामत की होलनाकियों से भी निजात मिलती है, पुले सिरात पर भी आसानी भी नसीब होती है। अल्लाह पाक के फजल व करम से नाम मुस्तफ़ा बरकत से गुनाहगार बख्शिश की खैरात पाकर जन्नत के हकदार भी बन जाते हैं।

मुझको सुनाना नामे मोहम्मद, मुझको सुनाना नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे

नाम मुहम्मद मैं ये कहूँगा, नाम मुहम्मद सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामेईने किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहुत बुलंद शान वाले हैं। यह हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व आज़मत, आपके औसाफ़ व कमालात ऐसे नहीं कि इनको शुमार किया जा सके। ये सिर्फ शायराना मुबालिगा नहीं है बल्कि हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर औसाफ़ व कमालात की तो क्या बात की जाए। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी को इतने ज़्यादा नाम और औसाफ़ अता फरमाए हैं कि हम इन नामों की गिनती भी नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम क्या हैं, इनका माना क्या है, इन प्यारे नामों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या शानें मालूम होती हैं, ये तो बात की बात है। उलमाए किराम ने इस बात पर तहकीक की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की तादाद कितनी है, तो बड़े बड़े उलमाए ज़ीशान ने मेहनत की, नामों की तादाद मालूम करने की कोशिश की तो 800 नाम मिले। मगर कुर्बान जाइए ये तहकीक की इंतहा नहीं थी, इसके बाद भी मज़ीद तहकीक की गुंजाइश मौजूद थी। आखिर सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर तहकीक फरमाई। आप लिखते हैं, मुझे मुख्तलिफ किताबों और रिवायात की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 यानी 1400 नाम मिले। मज़ीद फरमाते हैं, ये तो वो हैं जो मेरे इल्म में आ गए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों की गिनती नामुमकिन है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ये तो अभी नामों की गिनती की बात है। अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम कितने अता फरमाए हैं, हम जैसे आम इंसान तो इनकी गिनती भी नहीं कर सकते। फिर इन नामों के माने यानी मीनिंग क्या हैं, इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी कैसी शानों का बयान है, फिर इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात क्या हैं, इनको कौन शुमार कर सकता है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, यहाँ एक बात पर ज़रा गौर कीजिए। नाम मेरा भी है, नाम आपका भी है, दुनिया में हर इंसान का नाम है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम तो होता ही है। लेकिन गौर का मकाम है कि क्या मेरे नाम की कोई खसूसियत है। मसलन किसी शख्स का नाम जैद है, इस शख्स का नाम जैद होने में इसकी क्या खसूसियत हो सकती है? कुछ भी नहीं, बस बचपन में वालिदैन ने इसका नाम जैद रख दिया था तो वही नाम अब तक चल रहा है। मगर कुर्बान जाइए, मेरे प्यारे आका ओ मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निराली है। अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेशुमार नाम तो अता फरमाए, इनके साथ इनकी पाकीज़ा नामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खसूसियात से भी नवाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नामों के लिहाज से भी बेमिसलो बेमिसाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों की खसूसियत ही को अगर शुमार किया जाए तो ये खसूसियात ही हमारी अक्ल व फहम से बहुत ज़्यादा ऊँची चली जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नामों की सिर्फ़ एक खसूसियत अर्ज़ करता हूँ। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं काजी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं, मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेशुमार नाम हैं, इन नामों में 30 नाम वो हैं जो असल में अल्लाह पाक के नाम हैं, मगर

रब्बे करीम ने वो नाम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाए हुए हैं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नामों में 30 नाम वो हैं जो हकीकत में अल्लाह पाक के नाम हैं, और वो नाम ही अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। यानी जैसे रऊफ़ अल्लाह का नाम है, प्यारे आका अली सलातु सलाम को भी रऊफ़ कह सकते हैं। रहीम अल्लाह पाक का नाम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहीम कह सकते हैं। अलीम अल्लाह पाक का भी नाम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अलीम कह सकते हैं। गर्ज़ के 30 नाम अल्लाह पाक के वो हैं जो अल्लाह करीम ने बाकायदा वो नाम ही अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिए। अब ज़रा इससे एक कदम आगे बढ़िए। उलमा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के जो अस्माउल हुस्ना हैं, यानी अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे 99 नाम जो कुरान व हदीस में ज़िक्र हुए हैं, वो नाम अल्लाह पाक के हैं, वो सिफात अल्लाह पाक की हैं। अगरचे वो नाम किसी और पर बोले नहीं जा सकते, मगर रब कायनात ने उन तमाम अस्माउल हुस्ना का मज़र यानी नमूना व निशानी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक के अस्माउल हुस्ना में एक प्यारा नाम है अर्रहमान। कुरान करीम में भी इसका कई मरतबा ज़िक्र आया है और बड़ा मशहूर नाम है। इस नाम की पूरी सूरत कुरान करीम में मौजूद है। ये लफ्ज़ रहमान ये अल्लाह पाक का नाम है। अल्लाह पाक के अलावा हम किसी को भी रहमान नहीं कह सकते। हाँ, बाज़ हमारे यहाँ लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं अब्दुलरहमान, मगर उसको रहमान कहकर पुकारते ही गलत है। रहमान अल्लाह पाक का नाम है और अल्लाह पाक ही के साथ ख़ास है। रहमान यानी बहुत ज़्यादा मेहरबान होना सिर्फ अल्लाह पाक की है। ये नाम अल्लाह पाक का है। जब ये ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चाँद सूरज सितारे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मखलूक बनी ही नहीं थी, अल्लाह पाक उस वक्त भी रहमान था। वो हमेशा से रहमान है और हमेशा तक रहमान ही रहेगा। लेकिन गौर का मकाम है, अल्लाह पाक रहमान है, मगर जब रब्बे करीम ने अपनी रहमतों को मखलूक में बरसाना चाहा, अपने रहमान होने को ज़ाहिर करने का इरादा फरमाया, तो क्या किया? इस सिफ़त रहमान को ज़ाहिर कैसे फरमाया? अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा। यानी ये रब रहमान की सिफत, रहमान का सबसे बड़ा ज़ुहूर है। जब अल्लाह पाक ने अपनी सिफत रहमान को ज़ाहिर करने का इरादा फरमाया, तो अपने महबूब नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिफत का मज़हर यानी निशान व नमूना बनाकर दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन यानी तमाम जानों के लिए रहमत होना अल्लाह पाक की सिफत रहमान का इजहार है। मैं इस बात को ज़रा खोल कर बयान करूँ तो देखिए, अल्लाह पाक इंसानों के लिए रहमान है। हमें इसका पता कैसे चला? पता इस तरह चलेगा कि अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाया है। अल्लाह पाक फरिश्तों के लिए रहमत है। इसका ज़ुहूर कैसे हुआ? यूं के रब रहमान ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के लिए रहमत बना दिया। अल्लाह पाक ज़मीन व आसमान के लिए रहमान है। इसका ज़ुहूर यूं फरमाए कि ज़मीन व आसमान के लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना दिया। अल्लाह पाक तमाम मखलूकात के लिए रहमत है। पता कैसे चला? इस तरह कि इसने तमाम मखलूकात के लिए अपने महबूब को रहमत बनाया। अल्लाह पाक इस दुनिया के लिए रहमान है, तो इसने इस दुनिया में अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। और हक यह है कि अल्लाह पाक की सिफत रहमान का असल ज़ुहूर क़यामत के दिन होगा। हदीस पाक के मुताबिक इस दुनिया में अल्लाह पाक की सिर्फ़ एक ही रहमत का ज़ुहूर है। रोज़ क़यामत रब्बे करीम की 100 रहमतों का ज़ुहूर होगा। लिहाजा क़यामत का दिन असल में रब्बे करीम की सिफ़त रहमान के ज़ुहूर का दिन है। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ क़यामत के लिए भी रहमत बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल्लिल आलमीन होने का असल ज़ुहूर भी रोज़ क़यामत ही होगा। आपको लिवाल हम्द का परचम अता किया जाएगा। मकाम महमूद पर फाइज फरमाया जाएगा। शफात कुबरा का मनसब आप ही को अता होगा। कोई अप

ना हो या पराया, अगले हों या पिछले, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शफ़ात का सवाल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाएंगे, अना लहा यानी हाँ मैं ही इसी के लिए हूँ, मुझे ही सारे जहानों के लिए रहमत बनाया गया है।

मौजूद सामीन, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। जी हाँ, लासुरेन दागुचिया से, जी हाँ लासुरेन दागुचिया से भाई सलीम, जिनके इंतकाल को 6 साल हो चुके हैं, उनके लिए दुआएं भेजी हैं उनके भाई असलम ने कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा दुमिया खालिक, जी हाँ दुमिया खालिक अपने वालिद मरहूम हाजी साहिब दुलमिया फारूक मंगू मरहूम बीबी जज्बिया दुलमिया और तमाम मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब की गुजारिश कर रहे हैं। इसके अलावा जी हाँ सैंपल से रिहाज और रेहाना ने एक फरमाइश की है जिसे हम कल चलाने की इंशाल्लाह ताला पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
1: पुनश्च स्वागत आहे आपला भक्तिमय कार्यक्रमात। तेव्हा रसिक हो चला ऐकूया ज्येष्ठा सखू व समूहाच्या आवाजातलं हे।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समय थयो छे बपोरना पौणा बे।
2: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
2: 毛里求斯广播电台，听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台9月7号的节目。我是您今天的节目主持人张大卫。今天是歌曲节目，希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。

घड़ी मिला लीजिए, समय बिल्कुल दिन के 2:30 बज चुके हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वेवार्ड 19 किलोहर्ट्ज पर से आप हमें सुन पा रहे हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस लाजवाब कार्यक्रम को लेकर। जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। और बेशक सोमवार का दिन है, 7 तारीख है, सितंबर महीना है, 2026 का वर्ष। और आज के इस लाजवाब कार्यक्रम के साथ आपका साथ बहुत ही ज्यादा मजेदार बनाएगा इस सफर को। गीतों की फरमाइश आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 4028085 पर, और मैसेज भेजना चाहें तो 5251705 पर। आपके मैसेजेस का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं यशवंत फिल्म से लिए हुए इस गीत के साथ, रविंद्र साठे की प्यारी सी आवाज़।

0: आपकी पसंद।
1: कर 30 मिनट और चलिए यहाँ पर अगला गीत जो है फिल्म हिल स्टेशन से लिया हुआ नई मंजिल नई राहें। ये गाना जाएगा शकुंतला जी के लिए जो इस वक्त मोतायलोंग से साथ दे रही हैं, उनकी प्यारी ननद गायत्री, बेटा है अजय, बेटी है सुनीता, अनवर फौज से साथ दे रहे हैं और सभी सुनने वालों के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल जन्मदिन के मूड में बहुत सारे लोग हैं। आज मेवा रंगस्वामी अपना जन्मदिन मना रही है, 4 वर्ष की वे हो चुकी हैं और बहुत सारा प्यार उनकी मामा अश्विनी, पापा है अरविंद, चिपापा युवान, आपे है सोफी, ग्रैंडमा है उनकी सुनीता, दादू है सुदेश और उनकी बड़ी मम्मी है श्वेता, बड़े पापा है नीलेश और उनकी छोटी मम्मी है युक्ता और सभी मुतिया परिवार और रंगस्वामी परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार जाएगा मायवा के लिए। और साथ ही साथ 4 वर्ष की गिरिशा को भी हम बहुत सारी बधाइयां देंगे जन्मदिन की। यहाँ पर उनकी दादी पुपू मानती हमारे साथ जुड़ चुकी है नुवेलफ्रांस से और खासकर उनकी मामा है अनुषा, पापा है रनीश, बहन है नीतिशा, साथ है भाई हितांशु, दादू है आनंद, चाचा है निवेश, चाची उर्वशी और सभी साथ ही साथ उनके कजन्स भव्या और पुष्कल और सभी परिवार की ओर से उनको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। चलिए हमारी टीम की ओर से भी ये गाना आपके लिए और बिल्कुल आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहे, दिल से बस यही प्यार और प्रार्थना दुआ आपके लिए।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते चलेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल मॉरिशस भर में हमारे सारे श्रोता बहुत ही प्यार से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो चलिए अगले गीत की फरमाइश लेते हैं बहुत ही जल्द से। ये है फिल्म वक्त का गीत, रफीक दौलत और नूर जहाँ उनकी प्यारी बेगम जो है प्लान मायों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके नाम करेंगे ये अगला गीत। चलिए वैसे उनकी फरमाइश को बस अभी थोड़ी ही देर में हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए लेते हैं ये अगला गीत जो है फिल्म उजाला से लिया हुआ। और रिहाना जी इस वक्त नॉर्थ गोदाम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी प्यारी सखी है माला फौदा, साथ है सुरेखा और उनकी प्यारी बहन जो है मिजिन कौंडमास से अमीदा जी के नाम। ये है मुकेश साहब और लता जी की प्यारी सी आवाज़।

की पसंद कार्यक्रम इस वक्त 2:50 हो चुके हैं और अगले गीत के साथ है। जी हाँ, चलिए वक्त फिल्म का ये गाना हम चलाएंगे रफीक मौदौलत जी के लिए, जो प्लान मायों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी प्यारी बेगम हैं नूर जहाँ, जो प्लान मायों से ही साथ दे रही हैं।

जी हाँ, आपकी पसंद कार्यक्रम और आपका प्यार हमेशा यूं ही बरसता रहता है। तो चलिए अगला जो गाना है बिल्कुल हेमंत कुमार की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत जाएगा अनीता जी के लिए, जो त्रियोले से इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। उनकी प्यारी बेटी अंजू, दामाद वेद, बेटा सचिन, बहू है पूजा, साथ है केयांश और सिया, उनके दो नाती पोते।

वैसे आपको याद दिला दें कि अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे 3 बजे के सपहर के समाचारों के साथ, और 3 बजे के समाचारों के बाद इस कारवां को जारी रखा जाएगा, तो कहीं मत जाइएगा। अभी थोड़ी ही देर में आपका साथ देते चलेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सपेर के ठीक 3 बजे हैं। ये जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

0: नमस्कार। कॉगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन नए हैंडलिंग उपकरणों की खरीद में 2.8 बिलियन रुपए का निवेश कर रहा है। इसका उद्देश्य माल की अदला बदली की मात्रा बढ़ाना और कार्यकुशलता में सुधार करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी HHMC को दिया गया है और नए क्रेन January 2028 से चालू हो जाएंगे। आज सुबह पोटली में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। बंदरगाह जहाज़ों को दी जाने वाली सेवाओं को आसान बनाने के लिए आधुनिकीकरण कर रहा है। MPA एक नए प्रबंधन सॉफ्टवेयर मैरिटाइम सिंगल विंडो के विकास के साथ प्रक्रियाओं के डिजिटलाइजेशन को और आगे ले जाना चाहता है। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे कई बंदरगाह सेवाओं को एक जगह लाएगा। इस प्रणाली से बंदरगाह को समुद्री यातायात में अपेक्षित वृद्धि का बेहतर जवाब देने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। आज 73 नौजवानों को सम्मानित किया गया। ये 73 ऐसे युवा हैं जिन्हें सालों की मेहनत और त्याग के बाद उनके प्रयासों का फल मिला है। आज सुबह स्टेट हाउस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों के करीबियों की उपस्थिति में वर्ष 2025 की लॉरिएट्स की चयन सूची का समारोह आयोजित हुआ। लेकिन मुस्कानों और समारोहों के पीछे एक साझा संदेश था, एक ये सफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नए चरण की शुरुआत है। और विदेश में बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इस साल अब तक 42,590 लोग अस्पताल में भर्ती हुए और 117 की मौत हो चुकी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। मुसलमो लिगिबीज पाए में 17 साल के 17 ईयर्स ओल्ड के मोहम्मद सैयद सफिया अल्दीन भिकारिया इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज शाम 4:15 उनके पिता मोहम्मद सलीम भिकारिया के घर मुसलमो लिगिबीज पाए से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए पाए की अहमद रजा खान मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए लिगिबीज पाए का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4:15। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद। सुपहर के बिल्कुल 3:03 होने जा रहे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है और इस कार्यक्रम को फिर से जारी रखा जा रहा है, यानी आपकी पसंद, जो चलेगा शाम के 4 बजे तक। मैं हूँ रत्ना, पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं। आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल आप भी भाग लेंगे और थोड़ा संयम, थोड़ा धीरज रखिएगा क्योंकि ढेर सारे फ़ोन कॉल्स बिल्कुल। तो चलिए इस अगले गीत के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माधुरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ यूनियन पार्क से हमेशा की तरह ज्योति जी साथ दे रही हैं। साथ है प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और किनीता। और अगले गीत की जो फरमाइश आई है बहुत ही लाजवाब सा ये गीत है और फिल्म है हरीश चंद्र से लिया हुआ और ये गाना जाएगा शीला जी के लिए। ज्योति पेनी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आइए सुनते हैं इस लाजवाब गीत को।

सुन है तकदीर, लता जी की प्यारी सी आवाज, जब जब बहार आए बस कोई याद आ जाता है। और चलिए इसी के साथ ये गाना याद आ गया दिलीप जी को, जो है कुंगुमा से, उनकी प्यारी पत्नी संगीता, साथ है योगेश, कविता, कृष्णवी और सभी सुनने वालों के नाम।

बिल्कुल बाहरें तो तब आती है जब आपके चेहरे पर खुशी आती है, और हम आपका आपके दिल को खुश करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके ही पसंदीदा गीतों को चलाने के लिए। चलिए यहाँ पर सैपिए से हमारे साथ जुड़ चुकी है गायत्री जी। वैसे गायत्री जी बहुत ही तगड़ा गाना आपने मांगा है, पर हम भी चूकेंगे नहीं, हम भी आपके लिए गाना ढूंढ कर ही लाए हैं। और ये है फिल्म बिल्कुल गौरी से लिया हुआ गीत जो नूतन पर फिल्माया गया था, और ये प्यारा सा गाना हम चलाएंगे आपकी प्यारी बहन अमृता, उनकी तीन प्यारी बेटियां नेहा, क्षिति, दिव्या, बेटा है सुधीर और कमलेश, और बहू है सुधा, साथ है आपकी प्यारी भाभी मीरा, साथ है आप उनकी दो प्यारी बेटियां गिरीशा और मेधा के नाम। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

वैसे आपको ये भी बताते चले, ये गाना हम सुनीता जी के लिए भी मांगते हैं। और सुनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गांव गोब से, प्यारी बहन विमला है कुंगुमा से, साथ ही साथ आपकी बहन अमृता जो है गांव गोब से ही और गुडलैंड से साथ दे रही हैं वीना जी।

गाना जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में गायत्री जी ने मांगा था, बहुत ही प्यारा सा और बिल्कुल मन में राधा किशन का प्यार। और इसी के साथ लेते हैं ये अगला गीत, ये है फिल्म अनोखी रात से लिया हुआ गाना और ये जाएगा हमारे प्यारे भैया उदय जी के लिए जो रिवेज पोस्ट से हमेशा साथ देते हैं। उनकी प्यारी पत्नी है संगीता, दो प्यारी बेटियां स्मृति और कीर्ति, साथ है दामाद जी नागेश और योगेश और माफ कीजिएगा ज्योति, जी हाँ ज्योति, उनकी प्यारी समधन जी और प्यारे समधी जी है सुनील जी जो बौशीगी से हमेशा साथ देते हैं और प्यारा नानू है कियान। साथ ही साथ पॉइंट तो साहब से शांता तूफानी, सभी तूफानी परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं जो हमारे प्रोग्रामों को बेहद पसंद करती हैं। चलिए प्यार से साथ देते रहिएगा और मुकेश साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना आपके नाम।

0: आपकी पसंद।
1: जवाब सिलेक्शन जो आपकी ओर से हमें मिल रहा है और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। और इसी के साथ चलिए अगला गीत जो है आरती जी त्रियोले से हमारे साथ बहुत ही प्यार से जुड़ चुकी हैं और अगले गीत की फरमाइश कर रही हैं। वैसे आरती जी, आपने जिस गाने की फरमाइश की, आपने कहा फिल्म गोवा, हालांकि ये फिल्म गोवा नहीं, ये फिल्म है जौहर मोहम्मद इन गोवा। हाँ जी, और इस फिल्म में बिल्कुल आईएस जौहर नजर आए थे, महमूद साहब नजर आए थे और साथ नजर आई थी सिमी गरेवाल। तो चलिए इस गीत को हम साथ मिलके सुनते हैं। आपके पति हैं सुरेंद्र, साथ है तीन प्यारी बेटियां रीमा आनंदी और सिमला बेटा है आश्ले, और जरूर हम आपके लिए ये गाना बजाएंगे अभी।

है कॉलेज गर्ल यीशुदास की प्यारी सी आवाज, और ये गाना है मिंता जी जो इस वक्त मेबर्ग से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आज उनकी प्यारी बहन इंदिरा मोहन जो है काजियानकियोपी के रहने वाली, उनकी तीन प्यारी बेटियां प्रिया, शमिला और विद्या, बेटा है दीपक और विकास, साथ है भव्या और चेतवीर उनके दो प्यारे नाती, और सभी मोहन परिवार और बुजावन परिवार की ओर से। और इंदिरा जी को ये गाना बेहद बेहद पसंद है, तो चलिए मिंता जी की ओर से ये गाना उनके नाम बिल्कुल एक गिफ्ट के तौर पर।

0: मानिक एक संतोष सदा।
1: भाई कभी कभी संतोष जीवन में होना बहुत जरूरी है, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि दिल को सुकून ही नहीं मिलता, उनको बस ऐसा लगता है कि देखते ही रहें। और चलिए फिल्म कभी कभी का ये प्यारा सा गीत हम करेंगे इब्राहिम जी के लिए, जो इस वक्त पोर्ट लुइस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं लता जी और किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज में। चलिए रिहाना आप भी हमारे साथ फिनिक्स से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत प्यार। लक्ष्मी जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं बॉम्बू से, आपके दो प्यारे बच्चे अक्षय और आशनी के साथ आप भी जुड़ चुके हैं।

0: की पसंद।
1: चाहने वाले पास हो तो भाई नजारों की ओर नजर नहीं दौड़ती। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर हमारे बहुत सारे श्रोता इस वक्त जुड़े हुए हैं। गीता जी मोताइलोंग से साथ दे रही हैं और अगले गीत की फरमाइश कर रही हैं। स्वयंवर फिल्म से लिया हुआ ये गीत है मोहम्मद रफी और लता जी की प्यारी सी आवाज में। और यही गाना हम करेंगे रोशनी महादेव के लिए और उनकी प्यारी मम्मी सुनीता देवी दीन जो हमेशा मेहबर्ग से साथ देती है, और उनकी सभी प्यारी बहनों के लिए और जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उन सभी के नाम जोड़ती हैं ये प्यारा सा गीत। तो चलिए आपके दिल से आपको खुश करते हैं इस गीत के साथ।

चलिए यही गाना करेंगे सुदेवी जी के लिए, वाकवा से साथ दे रही हैं, साथ है ललिता कुशल उनकी प्यारी बहन त्रियोली से, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, माला, बिंदु, मलेगा से है अक्षय, स्नेहा, कीर्ति, रामरतन, रिदोई, कुवारू, रघुबा और जालू परिवार के नाम। और वाकवा से ही विश्वानी दुमन भी जुड़ चुकी हैं, बेटा है कमल, धर्मा, खुश और बहने हैं इंदिरा, शारदा, सहेली है नीता, नीला और प्रतिभा, साथ है शोभा और गीता के जाधव।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, आपकी पसंद कार्यक्रम में बस कुछ ही समय रह गया है, 4 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम जारी है। सैम पीएस से संध्या जी जुड़ चुकी हैं और अगले गीत की फरमाइश करती हैं। प्रेम रोग फिल्म से लिया हुआ ये गाना जाएगा उनके सभी सुनने वालों के नाम, उनके सभी दोस्तों के नाम, सभी परिवार के नाम। और ये गाना है अनुराधा और बाबुल सुप्रियो की आवाज में, जिंदगी 4 दिन की।

नहीं, जिंदगी में रूठना मनाना और फिर जब हमसे कोई सच में दूर हो जाता है तब जाके एहसास होता है कि ये रूठना मनाना बस कुछ पल के लिए होना चाहिए, ना कि पूरी ज़िंदगी के लिए। चलिए इसी के साथ फिर नया दौर का ये गाना अमीना जी पोंफाले से हमारा साथ दे रही हूँ, उनके सभी परिवार के लिए, सभी दोस्तों के लिए। और यही गाना हम जोड़ना चाहेंगे बंधु परिवार के लिए जो त्रियोली से जुड़ा हुआ है। विद्या जी हमारा साथ दे रही हैं यूनियन पार्क से, और साधना जी हैं रिवेदी खयोल से, उनके नातिन जिया तेजल गौरव क्रियान लड्डू गोपाल तस्वीक के लिए, और रिवेदी खयोल से साथ दे रही हैं मोडाल बेया यूनियन पार्क लाहौजा दुबई से सभी जीवन परिवार के नाम। और शिमला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेलगोज से, बहनें हैं रूमा आरती इंदिरा, भाई है राकेश धीरज, बेटा है नमलेश, बेटी कीर्तिना।

0: आपकी पसंद।
1: तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम का समापन करने का समय हो चला है। अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लैक से आप साथ दे रही हैं, आपके पति हैं राज, बेटा है अनीश और अंकुश, साथ है आपकी बहू मनीषा आशिमा, पोती है हिमेशा और राध्या, पोता है अंश और आप सभी सुनने वालों के नाम। ये गाना है किशन कन्हैया फिल्म से लिया हुआ आखिरी गाना, नितिन मुकेश और लता जी की प्यारी सी आवाज़, और इसी गीत के साथ आज का ये समा बस यही समाप्त होगा और बिल्कुल कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा। बिल्कुल आप 4 बजे सुन सकते हैं। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर, बिल्कुल हमारे साथ क्षितिज कार्यक्रम 4 बजे आप सुन पाएंगे, जहां पर श्रीमान झा और श्रीमती श्रुति पाठक साथ देंगे। तो इसी कार्यक्रम को यहां पर समाप्त करेंगे। हमारी और आपकी पुनः भेंट होगी ठीक 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में। तब तक के लिए बस सुनते रहें, साथ देते रहें और रत्ना को दीजिए अनुमति। फिलहाल के लिए नमस्कार, शुभ संध्या सभी को।

0: on the hour, every hour. Radio Marches.
1: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
2: श्रोताओं नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वाधान में आयोजित क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के क्षितिज कार्यक्रम में हम लोग भारत, मॉरिशस और दुनिया के अन्य देशों में हिंदी दिवस क्यों और कैसे मनाया जाता है, इस विषय पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। मैं मॉरिशस से डॉक्टर कृष्ण कुमार झा और आज मेरे साथ MBC स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित हैं,

0: बुल्गारिया से सोफिया विश्वविद्यालय की डॉक्टर मौना कौशिक जी, जो वहाँ हिंदी भाषा शिक्षा और भारतीय संस्कृति से लंबे समय तक जुड़ी हुई है। नमस्ते मैडम, और आपका मॉरिशस में स्वागत है। दूसरी हमारी विशिष्ट वक्ता, जो लंबे समय तक भारत में प्रशासनिक पदों पर कार्यरत रही हैं और वर्तमान में भारतीय उच्चायोग में भाषा और संस्कृति की द्वितीय सचिव हैं। नमस्ते मैडम, सबसे पहले आपसे ही हम शुरुआत करेंगे। यह हिंदी दिवस की संकल्पना का विचार या हिंदी दिवस की शुरुआत कब से होता है?
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद झा जी। सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं को मैं भारतीय उच्चायोग यानी इंडियन हाई कमीशन की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं इस मंच के माध्यम से। तो जैसा आपने पूछा कि हिंदी दिवस की शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए, भारत तो एक बहुभाषी देश है, और अगर हम देखें कि प्राचीन काल से कभी एक समय था कि जब संस्कृत मुख्य रूप से इसका वर्चस्व था और संस्कृत साहित्य की और राज दरबारों की भाषा हुआ करती थी, और इसी संस्कृत की गोद से जन्मी है हिंदी। धीरे धीरे प्राकृत, पाली, अपभ्रंश इन सब से होते हुए आगे बढ़ी, और मुगल काल में अगर आप देखें तो फारसी उस समय राज दरबार की भाषा थी। यही कारण है कि हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा अरबी फारसी के शब्द भी आपको दिखेंगे, जैसे मुवक्किल, अदालत, वकील आदि। तो इनसे होते हुए ये हिंदी आगे बढ़ी, जिसे आज हम और आप बोलते हैं, ये खड़ी बोली हिंदी जो इसका मानक स्वरूप है, ये है। तो अब ये जो हिंदी आई, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले एक लंबे समय तक अगर आप देखें तो ब्रिटिश हुकूमत थी, जिसके कारण अंग्रेज़ी में बहुत सारे दस्तावेज़ सारे अंग्रेज़ी में उपलब्ध थे। तो जब आज़ादी मिली, उसके बाद हमारी संविधान सभा, भारत की जो संविधान सभा, वो इस पर निर्णय ले रही थी कि किस भाषा को भारत की एक राजभाषा के रूप में, सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में लिया जाए। तो ऐसे में ये हमारी संविधान सभा में जब चर्चा हुई, तो ये समझ में आया कि हिंदी एक ऐसी भाषा के रूप में, एक ऐसी सशक्त भाषा है जिसे ये दर्जा दिया जाना चाहिए। और 14 सितंबर 1949 का वो दिन था जब यह निर्णय लिया गया संविधान सभा द्वारा कि हिंदी भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, संघ की राजभाषा। तो इस कारण इस दिन को खास तौर पर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो विश्व भर में जहाँ पर भी हिंदी प्रेमी संस्थाएं हैं, हिंदी प्रेमी लोग हैं, वो सभी पूरे महीने को हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस के रूप में विभिन्न रूपों में, और हमारे भारत के जो विभिन्न दूतावास हैं वो इस पूरे महीने को विशेष रूप से बहुत ही उत्साह से हिंदी के इस दिन को मनाते हैं। तो इस तरीके से हिंदी की शुरुआत मानी जानी चाहिए हम।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यह बिल्कुल सही बात है। भारत का प्रभाव मॉरिशस पर भी पड़ता हुआ दिखता है, और वही स्थिति मॉरिशस में भी है। और हम भी यहाँ अब हिंदी दिवस को, जैसे महात्मा गांधी संस्थान इसे हिंदी सप्ताह के रूप में पूरे सप्ताह भर आयोजन करता है, और अन्य संस्थाएँ भी जो है हिंदी दिवस का यहाँ पर जो है आयोजन करते रहते हैं। श्रोताओं, जो हमारी आज की स्टूडियो में जो खास मेहमान हैं, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। और हमारे साथ बल्गेरिया से डॉक्टर मौना कौशिक जी उपस्थित हैं। मौना जी, आप अपने परिचय में हमारे श्रोताओं को कुछ और बताना चाहेंगे?
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर मौना कौशिक, सोफिया विश्वविद्यालय क्लिमेंट ओखरित्स्की के भारत विद्या विभाग इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में भाषा और साथ ही साथ संस्कृति के विषय ले रही हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं बल्गारिया से आकर हिंदी पर बात कर रही हूँ। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर के झा जी को, और साथ ही आदरणीय श्रुति पाठक जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।
0: जी मोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी रुचि है, हमारे श्रोता भी यह जानना चाहेंगे कि बुल्गारिया में हिंदी दिवस वहाँ के लोग कैसे मनाते हैं, हिंदी के

0: जो दो संस्कृतियों के बीच में एक सेतु का काम कर रहा है। बल्गारिया वह देश है जहाँ पर भारतीय डायस्पोरा बहुत कम है, तो हिंदी किससे जुड़ी है? हिंदी वहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ी है। हमारे छात्र बल्गारियाई हैं, वे बल्गारियन हैं, और हिंदी के माध्यम से भारत को जीते हैं। वे हिंदी अपने भीतर भारतीय समाज, साहित्य, लोक स्मृति, दर्शन, सिनेमा और दैनिक जीवन की अनेक परतों को समेटे हुए है, और इसीलिए विदेश में हिंदी का अर्थ और भी व्यापक हो जाता है। वह भारत को समझने का एक माध्यम बन जाती है। बल्गारिया में हिंदी का जो अध्ययन और अध्यापन है, वह किसी आकस्मिक सांस्कृतिक रुचि का परिणाम नहीं है, इसका बहुत मजबूत अकादमिक आधार है। हमारे विभाग की स्थापना 1983 में हुई। ICCR भारतीय सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ हिंदी चेयर आती हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, उसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की पढ़ाई होती है। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ यूरोप के उस देश में हिंदी उपस्थित है और हिंदी दिवस हम मनाते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मैं आपसे, हमारे श्रोता यह भी जानना चाहेंगे कि जैसे हम मॉरिशस में हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, अब जैसे कल महात्मा गांधी संस्थान ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक हिंदी सप्ताह का आयोजन कर रहा है, और कल एक नुक्कड़ नाटक है, और इस तरह से कविता प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिताएं, आपका जो है पोस्टर प्रतियोगिता, इस तरह से अंताक्षरी प्रतियोगिता, इन सब प्रतियोगिताओं का हम आयोजन करते हैं और बच्चे इसमें भाग लेते हैं, और इससे कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति बच्चों में वह उत्साह, प्रेम जो है जागृत होता है और हिंदी से जुड़ते हैं बच्चे। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि बल्गेरिया में भी आप लोग, आपका विश्वविद्यालय या वहाँ भारतीय उच्चायोग कुछ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इसी तरह की कुछ गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं।
0: जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी हिंदी दिवस उसी उत्साह से मनाया जाता है। मुख्य रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाते हैं, लेकिन 14 सितंबर के आसपास हिंदी वर्कशॉप्स और उसके अलावा देवनागरी लेखन कार्यशालाएं चलती हैं, भारतीय साहित्य पर चर्चा होती हैं, हिंदी फिल्म दिखाई जाती हैं, और साथ ही साथ निबंध प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, विद्यार्थी कविताएं भी लिखते हैं। उसके अलावा जो भारत के लोग वहाँ पर हैं, वे भी उत्साह से इस सप्ताह में या उस दिन भाग लेते हैं इन प्रतियोगिताओं में। तो उसके अलावा जब विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तब बहुत बड़े स्तर पर भारतीय दूतावास के साथ मिलकर और अन्य हमारी कई सारी संस्थाएं हैं, वे सब हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं। उसके साथ साथ भारतीय भोजन भी साथ में
1: वाह वाह
0: रहता
1: वाह,
0: है, तो उसमें एक अलग ही उत्साह हो जाता है। तो कक्षा में, कविता में, अनुवाद में, सिनेमा में, संवाद में, इन सब को मिलाकर हम लोग अपना हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: आपने अभी कुछ संस्थाओं की बात की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे मॉरिशस में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, हिंदी पचारणी सभा 1926 से तिलक महाविद्यालय, फिर 1935 में यह हिंदी पचारणी सभा के नाम से यह संस्था जानी जाती है, और महात्मा गांधी संस्थान 1970 और 76 से जो है कि इसका संचालन शुरू हो जाता है, और फिर कई जो हैं सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो हैं, हिंदू महासभा है, आर्य समाज है, सनातन धर्म संस्कृति फेडरेशन है, सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन है, अभी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है विश्व हिंदी सचिवालय भी है। तो ये सारी बहुत सारी संस्थाएं जो हिंदी के प्रचार प्रसार, भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में संलग्न है। क्या बल्गेरिया में भी कुछ ऐसी संस्थाएं, अक्षरम जहाँ मुझे याद है, और भी कोई संस्था है इस तरह की?
0: हमारे यहाँ एक देवम प्रतिष्ठान है जो बहुत 1990 से लगा हुआ है। इसका ये बहुत बड़ा बीड़ा है जिसको उठाया हुआ है कि हिंदी और संस्कृत की कक्षाएं होती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोना कौशिक जी। हम आदरणीय भारतीय उच्च आयोग के द्वितीय सचिव सुरती पाठक जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे

0: कि भारतीय उच्चायोग हमेशा से हिंदी भाषा और संस्कृति के स्तंभ रहे हैं, हमेशा हिंदी के प्रचार प्रसार में भारतीय उच्चायोग कुछ न कुछ नया करता आ रहा है। गत वर्ष से नुक्कड़ नाटक को भारतीय उच्चायोग स्पॉन्सर प्रायोजित कर रहा है, इसके लिए हिंदी विभाग आपका आभारी है। इस बार भारतीय उच्चायोग हिंदी दिवस में क्या नया करने जा रहा है मैडम?
1: तो जैसा कि आपने बताया कि हाँ, भारतीय उच्चायोग हमेशा से भारतीय संस्कृति और हिंदी का प्रचार प्रसार तो करता ही है, और गत वर्ष से हम महात्मा गांधी संस्थान के साथ भी जुड़ गए हैं, क्योंकि युवाओं को हिंदी भाषा और संस्कृति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार भी नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हम मिलकर उनके सहयोग से हम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय एक द्वीप भारत सरकार और मॉरिशस सरकार की द्विपक्षीय संस्था है, तो ये भी यहाँ पर एक हम कार्यशाला का आयोजन करने जा रहे हैं जो नाटक पर है। इसमें नाटक के भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य पर चर्चा होगी, और इसके लिए रिसोर्स पर्सन भारत से आ रहे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो इसमें हमारे जो सुन पा रहे हैं श्रोता, और अगर वो नाटक से जुड़े हैं तो मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगी कि वो इस कार्यशाला का लाभ लें। और 8 तारीख को होने वाली है ये कार्यशाला सुबह 10 बजे से, तो इस कार्यक्रम में भी वो भाग लें। साथ ही हमारा एक कार्यक्रम PSUs के साथ है, जिसको यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसको कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC या फिर इंडियन ऑयल। तो इन सब के लिए भी हम राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी भाषा प्रतियोगिता आदि आयोजित करने जा रहे हैं। साथ ही जैसा आपने सुना होगा कि भारतीय उच्चायोग हिंदी कक्षाएं आयोजित कर रहा है, हिंदी क्लासेस भी कंडक्ट करता है, तो इसमें इन विद्यार्थियों के लिए भी खासतौर पर हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
0: बहुत सुंदर विचार, और समय का दबाव है, समय हमारे पास कम है। आप लोग हिंदी भाषा, बुल्गेरिया, भारत में हिंदी की भूमिका और इसके भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। श्रोताओं, आइए हम सभी संकल्प लें कि हिंदी को केवल एक भाषा के रूप में नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में आगे बढ़ाएं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्ते, धन्यवाद।
3: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।

0: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मॉरिशस की लहरों पर मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ बचपन ऐसा कार्यक्रम को लेकर, जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ बिल्कुल आप बहुत ही प्यार से जुड़ चुके होंगे। तो चलिए बचपन ऐसा कार्यक्रम में, जहाँ पर बचपन की यादों को ताज़ा करने की कुछ ऐसी बातें हम लेकर आते हैं और बिल्कुल लाजवाब गीतों के साथ सजाया जाता है ये सेगमेंट, तो आइए एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

जी हाँ, अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दे रही हूँ बचपन ऐसा कार्यक्रम में। दोस्तों, पहले के बच्चों में और आज के बच्चों की जो मानसिकता है उसमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है। पहले का समय अलग था, पहले के समय में जो थी तकनीक जो थी वो उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी, उतनी एडवांस नहीं हुई थी। पर आज की जो परवरिश है उसके तौर तरीकों में भी तकनीक का, टेक्नोलॉजी

का बहुत ही बड़ा हाथ है, इस बात को तो आप मानेंगे। चलिए दोनों ही दौर के बचपन की बातें हम करते हैं और मानसिकता पर किस तरह से परिवर्तन आया है उसकी बातें आप तक हम पहुंचाते हैं। पहले के ज़माने में हम कह सकते हैं, चलिए हम अपने ही ज़माने की बात करें, तो जब हम बच्चे थे तो कहीं ना कहीं धैर्य और संतोष की भावना हमें सिखाई जाती थी। पहले के बच्चों में किस तरह से हमें धैर्य रखना है, किस तरह से हमें जीवन में धैर्य के साथ हर काम को करना है, सोच विचार करके हर काम को करना है, ऐसा कहा जाता था कि धैर्य अगर आप सीख गए जीवन में कभी भी आप हार नहीं मानोगे। और इसी के साथ वे त्योहारों के साथ, जन्मदिन हो, कोई भी पर्व हो, तो बिल्कुल इंतज़ार किया जाता था हर एक समय का, उसे बहुत ही प्यार से हम संतोष की भावना उसमें बिठाते थे। यानी कहीं ना कहीं हम में जो भावनाएं होती थी उसका जो इनपुट है वो बहुत ही अनूठा होता था, बहुत ही अलग तरीके से होता था। इतना ही नहीं, हमारी जो भावनाएं थी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में हम जॉइंट फैमिलीज के साथ रहा करते थे, इसीलिए सामूहिक भावना हम में बिल्कुल एक तरह की ऐसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते थे। संयुक्त परिवारों में हम कहते हैं ना कि आस पड़ोस के साथ किस तरह से रिश्ता बनाए रखना है, ये आदतें हम में कहीं ना कहीं थी। और इतना ही नहीं, हम कल्पनाशील, बिल्कुल क्रिएटिव, किस तरह से क्रिएटिव बनना है, पहले के समय में हम वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाना है, इस पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। हम ये नहीं कहते कि आज के समय में ये नहीं होता, आज की क्रिएटिविटी भी एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी है। और इसी के साथ पहले के समय में जहाँ पर बड़े बात करते थे वहाँ पर हम अपनी राय रखने का बिल्कुल हमें कोई अधिकार नहीं था। उस टाइम पर हमें कहा जाता था कि जहाँ बड़े बात करते हों वहाँ छोटों को बात करने की अनुमति नहीं थी। तो जी हाँ, ये था पहले के ज़माने का बचपन। और अब के ज़माने के बचपन में क्या परिवर्तन आया है, हम ज़रूर बात करेंगे इस गीत के बाद।

0: दोस्तों बचपन ऐसा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और बचपन ऐसा कार्यक्रम में पहले के बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर आया है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर हम कुछ बातों के साथ गीतों का भी मज़ा उठाते जा रहे हैं और आज के बचपन की जब हम बात करें तो आज के बच्चों की जो मानसिकता है उसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन ये है कि आजकल के बच्चों में तुरंत परिणाम यानी इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की भावना को देखा गया है। आज के बच्चों को हर चीज़ तुरंत चाहिए, इंटरनेट, तकनीक और जानकारी, चाहे फिर मनोरंजन ही क्यों ना हो, उनमें वो धैर्य कहीं ना कहीं कम हो गया है, पेशेंस कम होने लगा है। ये तो हम मानते हैं क्योंकि स्नैप ऑफ फिंगर्स यानी बिल्कुल एक टच की दूरी पर होता है दुनिया का हर इन्फॉर्मेशन, दुनिया की हर जानकारी। और इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो डिजिटल युग में है, यानी अत्यधिक रूप से जागरूक, हाईली अवेयर। डिजिटल युग के कारण आज के बच्चे दुनिया भर की चीज़ों में, तकनीक में, अधिकारों के प्राप्ति में बहुत ज़्यादा जागरूक और स्मार्ट हो गए हैं। बिल्कुल स्मार्ट युग है। इतना ही नहीं, आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही इंक्विजिटिव और लॉजिकल हो गई है। सवाल पूछने की जो आदत है ये आजकल की जनरेशन में हिम्मत रखती है। बिल्कुल किसी भी चीज़ को करने से पहले हम क्यों करें और हम कैसे करें, ये सवाल पूछने से नहीं घबराती है ये जनरेशन। और इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्पेस यानी प्राइवेसी और इंडिविजुअलिज्म में मानने वाली ये जनरेशन, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो स्पेस मांगने वाला, रिलेशनशिप में हमेशा स्पेस थोड़ी बहुत मिलनी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सांस लेने तक की जगह अगर ना रहे तो बिल्कुल दम घुट सा जाता है। इतना ही नहीं, एक हम कहेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा रहती है। सोशल मीडिया के प्रभाव और पढ़ाई करियर के बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के साथ आजकल बच्चों का जो मानसिक तनाव है वो कहीं ज़्यादा बढ़ा है। तो बिल्कुल ये है फ़र्क हमारी जनरेशन में और हमारी नई जनरेशन में। चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।
1: बच्चे मन के सच्चे

0: दोस्तों बचपन ऐसा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इसी के साथ पहले की मानसिकता बहुत सादगी से भरी हुई थी, सामाजिक जुड़ाव हुआ करता था और आज की मानसिकता की बात करें तो तकनीक रफ्तार और आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इतना ही नहीं, हर उम्र की बात जब हम करते हैं तो उसमें दोनों ही हमें बदलाव दिखाई देते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और भाई ये प्रभाव हमारी जीवन शैली पर ज़रूर दिखता है। तो भाई आज के बचपन में और पहले के बचपन में यही अंतर हुआ करता था। आज समय बदला है और समय के अभाव से हम ये नहीं कह सकते कि आज का बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं। हर बचपन सुंदर होता है, हर बचपन स्पेशल होता है। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ हमने सजाया आज का ये प्रोग्राम। आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको भी पसंद आया होगा, गीतों का सिलेक्शन आपको पसंद आया होगा। और बिल्कुल इसी के साथ चलते चलते बचपन ऐसा कार्यक्रम में बस यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे कुछ ऐसी ही लाजवाब बातों के साथ। पुनः उपस्थित रहेंगे अगले सोमवार को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच बचपन ऐसा कार्यक्रम में। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: शाम के 6:01 हुआ है। नमस्कार, सोमवार 7 सितंबर

0: मर 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन नए उपकरणों की खरीद के वास्ते 2.8 बिलियन रुपए का निवेश कर रहा है। उद्देश्य है ट्रांसशिपमेंट की गतिविधियां बढ़ाना और कार्यक्षमता में सुधार लाना। 2025 के 73 लॉरियट्स के सम्मान में आज स्टेट हाउस खेजरी में एक खास समारोह लगाया गया। ये मौका रहा उनकी कड़ी मेहनत और त्याग की सराहना करने का। इस समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा कई अन्य महानुभाव और लॉरियटों के परिवार वाले उपस्थित हुए। कल पेलावाल के मकबरे तक की तीर्थ यात्रा शुरू होगी। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां का दौरा करते हैं। इसके लिए हर साल की तरह सेंट क्वा को नया स्वरूप दिया गया है। इस महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अधिकारियों ने आज स्थल का दौरा किया। और भारत की राजधानी दिल्ली में कल एक आवासीय इमारत के ढहने से कम 7 लोगों की मौत हुई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हादसे के वक्त इस 5 मंजिली इमारत में कितने लोग मौजूद थे। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन नए हैंडलिंग उपकरणों की खरीद में 2.8 बिलियन रुपए का निवेश कर रहा है। इसका उद्देश्य ट्रांसशिपमेंट यानी माल की अदला बदली की मात्रा बढ़ाना और कार्यकुशलता में सुधार करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी HHMC को दिया गया है और नए क्रेन जनवरी 2028 से चालू हो जाएंगे। आज सुबह पोटरी में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। कुणाल गुर्जी, रजनी पीकर।
1: चीनी कंपनी HHMC को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 2028 के जनवरी महीने से 2 नए पोर्टिको शिप टू शो कार्यरत होंगे। ये मौजूदा पोर्टिको के साथ जुड़ जाएंगे। नई क्रेन्स की खरीदारी कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2026-2030 की निवेश योजना के पहले चरण के अंतर्गत आती है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन नोबे मासेल ने कहा, ये निवेश योजना एक मजबूत भविष्य के बंदरगाह की नींव रखती है, जो वैश्विक व्यवसाय की जरूरतों को पूरा कर सके और उत्पादकता बढ़ा सके। मकसद है कार्यों में सुधार लाना, खासकर इलाकाई स्तर पर होड़परस्त बंदरगाह के चलते। इस निवेश योजना में जल्द ही 5 नए हाइब्रिड पोर्टिको की खरीदारी शामिल है। साथ में कंटेनर हैंडलिंग के लिए 15 ट्रैक्टर और ट्रेलर तथा 2 रिच स्टैकेज भी शामिल हैं। जेमिनी की TUV कंपनी की ओर से डिजाइन को अप्रूव किया गया और पोर्टिको को कायम करने तथा बिठाने के लिए चंदाओ हाई सी हैवी ड्यूटी मशीनरी को ठेका दिया गया है। HHMC के मार्केटिंग डायरेक्टर मॉवन मैंग ने कहा, बंदरगाह के ये क्रेन ज्यादा बड़े हैं, 72.5 मीटर चौड़ा, ऊंचाई 50 मीटर की, पर्यावरण प्रिय भी है, नए टेक्नोलॉजियों से लैस है, ज्यादा कारगर भी। ये प्रति घंटे के हिसाब से 28 से 30 कंटेनरों का संचालन कर सकता है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से इन उपकरणों की खरीद के लिए 2.7 बिलियन रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका मकसद है कंटेनरों की आवाजाही बढ़ाना और बंदरगाह में कारगरता में सुधार लाना। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर गासेन दोसामी ने कहा, हम ज्यादा ट्रांसशिपमेंट कर पाएंगे, ज्यादा जहाज मॉरिशस आ पाएंगे, जिससे कि आर्थिक दृष्टि से अन्य सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, बंकरिंग भी होंगे, मॉरिशस पोर्ट अथॉरिटी को ज्यादा आय भी प्राप्त होंगे। इस पहले चरण में अहम साझेदारी का उल्लेख नहीं, ना ही किसी प्रकार के कर्ज का उल्लेख। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुद के फंड से ऐसा किया जा रहा है। अभी कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रतिवर्ष 8 लाख कंटेनरों का ट्रांसशिपमेंट किया जा रहा है। ऑपरेटर ने 2 वर्षों में 1 बिलियन ऑपरेटरों ने 2 वर्षों में 1 मिलियन कंटेनर तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बीच भारत की तरफ से ट्रांसशिपमेंट कार्रवाइयों से संबंधित सिमुलेटर अगले महीने पहुंच रहा है। इसका इस्तेमाल बंदरगाह कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।
0: आज 73 नौजवानों को सम्मानित किया गया। ये 73 ऐसे युवा हैं जिन्हें सालों की मेहनत और त्याग के बाद उनके प्रयासों का फल मिला है। आज सुबह स्टेट हाउस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों के करीबियों की उपस्थिति में वर्ष 2025 के लॉरियटों के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। पिछले शुक्रवार को

0: जारी एक विज्ञप्ति में समाज सुरक्षा मंत्रालय ने इस साल सितंबर से दिसंबर के बीच 61 वर्ष के होने वाले लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन BRP के लिए अपना पंजीकरण कराने के लिए आमंत्रित किया है। पेंशन प्राप्त करने की ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार इसमें वो पहला समूह शामिल है जो BRP के लिए पात्रता आयु बढ़ाए जाने से प्रभावित हुआ है। यासिन दिन मामूद की रिपोर्ट पेश है।
1: सामाजिक

0: सितंबर के बीच 61 साल के हो जाएंगे और ये बेसिक रिटायरमेंट पेंशन पाने के लिए उम्र बढ़ाए जाने के बाद शुरुआती लाभार्थियों में शामिल हैं।
1: Mon désir fini inscrit à 3 mois avant qu'il me avant 3 mois avant qu'il me gagne 60 ans. Là, je tiendrai à vous, je me donnerai une réponse, mon désir est fini pour venir inscrire à deuxième coup.
2: L'année dernière, je gagne 60 ans et mon petit temps envie venir mais ben les enfants peut-être moi venir parce que mon pensée peut passer ban information peut dire besoin venir poser ban document.
0: पंजीकरण की ये प्रक्रिया कोई नई बात नहीं। जो भी व्यक्ति बेसिक रिटायरमेंट पेंशन पाने के लिए पात्र होता है उसे सामाजिक सुरक्षा विभाग में आवेदन करना होता है। मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली में सुधार प्रक्रिया की याद दिलाना है।
3: Et cette fin arrive l'âge d'éligibilité à ce qu'on appelle full pension, sa pension qui est à 15 555 € aujourd'hui là. Maintenant, avec l'avènement du SAP, vu qu'il y a une possibilité qui comprend pension en retard et augmentée, peut-être nous parlons d'un système que, même si on va faire une application en retard, mais pour une compensation qui pourrait être payée, donc pour gagner une pension plus élevée. Donc on peut travailler là.
0: 1 जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू की जाएगी। जो लोग उस तारीख तक पहले से बीओपी के लाभार्थी होंगे उन्हें कोई नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन की राशि में कोई बदलाव नहीं होगा।
4: मॉरिशस बार एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान में मॉरिशस में मौजूद भारत के पूर्व चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने इस सोमवार को कई औपचारिक मुलाकातें की। उन्होंने न्याय और संस्थानों के आधुनिकीकरण पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और राष्ट्रपति धर्म गोकुल सहित कई राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की। फवल आवाल की तीर्थ यात्रा से ठीक एक दिन पहले सेंट क्वा का रूप बदलने के लिए तैयार हैं। गहरी आस्था और आखिरी तैयारियों के बीच ये इलाका इस मंगलवार से हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। आस्था का ये अवसर हर साल इस इलाके की कायापलट कर देता है और कैथोलिक समुदाय से कहीं आगे के लोगों को एक साथ लाता है। तैयारियों की आखिरी समीक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स आज स्थल का दौरा किया। संतना पोंसनो, रजनी बिकर।
5: सैखों में अभी के लिए सामान्य रूप से जीवन चल रहा है, लेकिन पेलावाल के मकबरे की ओर जाने वाली इस गली में ऐसे संकेत कि वो अहम दिन नज़दीक ही है। फूल, मोमबत्तियां, मालाएं, टी शर्ट्स, विक्रेता अपने स्टॉल्स लगाने में व्यस्त, वे भी तीर्थयात्रियों का स्वागत करने की तैयारी में। मंगलवार से ये समा बदलने वाला है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही जो होगी, हर साल हजारों लोग यहाँ फौदालावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। फौदालावाल 1841 में मॉरिशस आए थे। वे गरीबों के मसीहा कहलाए जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे जरूरतमंदों और मॉरिशस के पुराने दासों की मदद करने में बिता रहे थे। उनके निधन के 160 वर्ष बाद आज भी वे बहुत से मॉरिशनों के दिल में बसे हुए हैं। इस बीच संबंधित तैयारियां की जा रही है। सोमवार 7 सितंबर को नेशनल टास्क फोर्स स्थल पर मौजूद और इंतजामों का जायजा लिया जा रहा था। सेंटर दे पेलरिनाज दे पेलावाल के मुताबिक दिन के दौरान 60,000 से 75,000 लोगों के आने की उम्मीद है और पूरे महीने के लिए करीब 2,00,000 लोग।
4: भारतीय राजधानी दिल्ली में एक रिहायशी इमारत ढहने के एक दिन बाद बचावकर्मी मलबे को हटाने में जुटे हैं। इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। करुणा लालू।
0: दिल्ली में एक आवासीय इमारत के गिरने से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सत्यानिकेतन इलाके में स्थित ये इमारत दिल्ली विश्वविद्यालय के साफ कैंपस में थोड़ी दूर पर है। हादसे के वक्त इमारत मालिक वहीं पर नीचे था, कैमरे में उस स्थल से भागते हुए देखा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इमारत के बेसमेंट में पानी जमा होने और वहां चल रहे मरम्मत कार्य के कारण ये इमारत ढह गई। इमारत का नाम हॉस्टल डेज बताया गया।
6: दुखद है इस बिल्डिंग के ऑनर की जो लापरवाही है। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और बेसमेंट में पानी भरा होने के कारण उसके पिलर जो है वो गिर गए, पूरी बिल्डिंग ढह गई इस बिल्डिंग पे भी कार्रवाई।

0: हो गई, इसके मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा। सरकार की ओर से जितने भी वो अधिकारी हैं जिनकी अनदेखी थी, लापरवाही थी या कोई भी कारण था, ऐसे अधिकारियों को भी आज की आज उनके एक्शनों का किसी को भी छोड़ेंगे।
1: इमारत में रहने वाले अधिकांश लोग छात्र थे। माना जा रहा है कि हादसे के समय कई छात्र अपने कमरों में ही थे क्योंकि रविवार को कॉलेज में कक्षाएं नहीं होती। दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम के सहयोग से ऐसी नीति तैयार कर रही है जिसके तहत पेइंग गेस्ट आवास, नर्सिंग होम और स्कूलों समेत सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारतों का समय समय पर संरचनात्मक ऑडिट और सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार इस त्रासदी से प्रभावित छात्रों के माता पिता के संपर्क में है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।
2: उधर नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। 26 अगस्त को रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में आई इस भयानक बाढ़ में अपनी जान गंवाने वालों के सम्मान में आज नेपाल में एक राष्ट्रीय शोक दिवस का आयोजन किया जा रहा है।
1: नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में मारे गए सैकड़ों लोगों की याद में आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 3 करोड़ की आबादी वाले हिंदू बहुल नेपाल में सरकारी कार्यालयों और विदेश में स्थित नेपाली मिशनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा मस्तूल पर है। 26 अगस्त को हिमालयी क्षेत्र में नेपाल और चीन के तिब्बत की सीमा पर एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से नदी में भारी मात्रा में पानी और मलबा आ गया। इससे मिट्टी और चट्टानों का एक विशाल सैलाब पैदा हुआ जिसने कस्बों और गांवों को बहा दिया और सड़कों और राजमार्गों को भारी कीचड़ और मलबे के नीचे दबा दिया। इस आपदा में कम से कम 1380 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 5000 से अधिक लोग लापता हैं। इस बीच वहां खोज और बचाव अभियान जारी है। हाल के दिनों में 4 लोगों को चमत्कारिक ढंग से जीवित बचाया गया। इनमें एक चीनी नागरिक शामिल हैं जिसे शनिवार को एक सुरंग से बाहर निकाला गया। अन्य लोगों में 2 जल विद्युत परियोजना कर्मी शामिल हैं जिन्हें शुक्रवार को एक सुरंग से बचाया गया था। इसके अलावा शनिवार को एक नेपाली महिला को उसके दबे घर के मलबे से जीवित निकाला गया।
2: और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि आज 73 नौजवानों को सम्मानित किया गया। ये 73 ऐसे युवा हैं जिन्हें सालों की मेहनत और त्याग के बाद उनके प्रयासों का फल मिला है। अनाबेल वुल्बेया, करुणा लालू।
1: अपने माता पिता, परिजनों और शिक्षकों से घिरे 2025 के 73 लॉरिएटों ने इस खास पल का भरपूर आनंद लिया। सभी को स्टेट हाउस में आभार के साथ आमंत्रित किया गया।
3: Il y a beaucoup d'émotions. Mon copain est sensiblement émotion depuis février. Oui, le trip encore, c'est venir gouverner à la Banque Maurice. Pour en essayer de réaliser, moi j'espérais réaliser quand on finit mon étude dans l'économie.
4: Jamais moi je pensais qu'il m'a pour réussir à faire, qu'il m'a pour venir ici à State House, mais Dieu écoute ma prière et aussi je suis bien content qu'il m'ait réussi à amener mes parents aussi ici avec moi et que la fierté est exceptionnelle.
5: Un sentiment de joie pour nous tous d'être ici. Et ça montre vraiment le résultat des efforts qu'on a entamé pendant plusieurs années vraiment.
6: Je suis très content, je suis très ému parce que c'est une affaire que je suis attendue depuis tout le temps, surtout qu'ils ont bien travaillé dur et ça c'est mon récompense.
1: लेकिन लॉरिएट होने का मतलब केवल शानदार परिणाम हासिल करना नहीं है। गणराज्य के राष्ट्रपति के अनुसार ये नया चरण खोज परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और निरंतर सीखने का भी होना चाहिए।
7: We live in a global village which is more connected than ever before. Broaden your educational horizons. Explore career opportunities. Be alert, flexible, and adaptable. Wherever you are and whatever you do, let Mauritius remain in a corner of your heart.
1: व्यक्तिगत सफलता के साथ शिक्षा व्यवस्था भी है। इस समारोह में 2 श्रेणी के लॉरिएटों को सम्मानित किया गया, मेधा और सामाजिक मानदंडों के आधार पर चुने गए छात्र। अधिकारियों द्वारा ये रेखांकित करने का एक तरीका है कि उत्कृष्टता और समानता साथ साथ आगे बढ़नी चाहिए।

0: It encourages students to strive for excellence and maintains a high standard of academic performance. But most importantly, it can provide talented students from modest backgrounds and from regional colleges with access to some of the world's best universities. Opportunities that might not have been possible for them because financially beyond their reach. We should not therefore see the debate as one between excellence and equality. Our responsibility is to pursue both. We must preserve opportunities for excellence while continuing to improve fairness, accessibility, and inclusiveness of our education system. This year, we have decreased the income ceiling for eligibility for the scholarship scheme for students from vulnerable families. This is because we want to show our determination to further widen access to scholarship opportunities and to ensure that deserving students, they're not excluded simply because their family income barely exceed the existing threshold.
1: इनमें कई युवा अब विदेशों में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, उनके वापस लौटने की संभावना और व्यापक रूप से अपनी प्रतिभाओं को रोकने तथा विदेश गए प्रतिभाशाली युवाओं को वापस लाने की मॉरिशस की क्षमता पर भी सवाल खड़े करती हैं।
0: We must offer our young people not only a good education, but also opportunities, meaningful careers, the right environment to motivate them. If you want to attract the best and the brightest, you must also look at their pay packet. We have to attract these people. Many people don't want to come. This is what this mindset that we have to change if we want to move to become a first world country. You may have a very good job abroad. You may get a better pay. But at the end of the day, you're still a foreigner abroad. This is your country. These are your roots.
1: स्टेट हाउस से लेकर मॉरिशस और विदेशों की यूनिवर्सिटियों तक 2025 के ये 73 लॉरिएट अब अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं।
2: और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल।
3: कल सुबह 10 बजे से मॉरिशस में ऊंची लहर उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 10 सितंबर 2026 तक शाम 4 बजे तक लागू है। दक्षिण पश्चिम की ओर से मस्करिंस टापों की ओर ठंडे हवा की लहर बह रही है। ये कल सुबह से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। इसके गुजर जाने के बाद एक काफी जोरदार एंटी साइक्लोन का असर होगा, जिसकी वजह से टापों भर में मौसम हवादार रहेगा और ठंडी हवा बहेगी। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से टापू के आधे दक्षिणी हिस्से में और सेंट्रल प्लाटू पर। सामान्य रूप से वर्षा होती रहेगी, कुछ इलाकों पर कोहरे छाए रहेंगे, रात के दौरान आसमान साफ हो जाएगा। कल टापू भर में रह रहकर बारिश होती रहेगी, कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। दक्षिण की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके रात के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। कुछ इलाकों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने लगेगी। कल से ऊंचाइयों पर कुछ कार्य करने से बचने की मांग की जा रही है। साथ में सड़कों पर भी सावधान रहें, क्योंकि उल्टी तरीके से हवा बहेगी। समुद्र खराब रहेगा, 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। ये ऊंची लहरें ज्वार भाटे के दौरान तटीय इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं, मुख्य रूप से पश्चिम में और दक्षिण में निचले वाले इलाकों तक। इस तरह मच्छरों से, प्लेजर क्राफ्ट चलाने वाले लोगों से और अन्य लोगों से आम जनता से मांग की जाती है कि ज्वार भाटे के दौरान दूर समुद्र में और तटों के पास न जाएं। तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 19 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 24 एवं 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 6:02 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:22 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार। रुई लाबोडोनी मेबर्ग में 89 साल की 89 years old की श्रीमती महित्री तिलक, पैदाइशी नाम तिलवा और जो दादी मानती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे कल दिन के 1 बजे उनके घर रुई लाबोडोनी मेबर्ग से उठाकर तोंबो मेबर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। नंबर 24 जानेट स्ट्रीट विल में कल सिमिदितिय में 83 साल की 84 years old की श्रीमती सूर्या कीर्ति रामफल, पैदाइशी नाम झकुरी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर नंबर 24 जानेट स्ट्रीट विल में कल सिमिदितिय से उठाकर विल में की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। शिवाला रोड त्रियोली में 70 साल की 70 years old की श्रीमती अनीता जगलोल, पैदाइशी नाम कांदाई, की मृत्यु हो गई है। वे हमारे सहयोगी कैमरामैन सचिन जगलोल की माँ थी। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर शिवाला रोड त्रियोले से उठाकर टेमिनस त्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमिशन टुमोरो एट 10 AM। रोड श्वाजी बेचुकाप में 77 साल की 77 years old की श्रीमती राजिका हरी, पैदाइशी नाम इसराम, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति श्री दयानंद हरी के घर ओथवायल श्वाजी बेचुकाप से उठाकर सैमौतें बेचुकाप की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रोमिशन टुमोरो एट 11 AM। रारोड ग्रांड पॉइंट पीमो में 49 साल के 49 years old के श्री मनोज सिचन, जो चुना नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रारोड ग्रांड पॉइंट पीमो से उठाकर पॉइंट बीश की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रमिशन टुमोरो एट 10 AM। सीताराम लेन लावंचुआ में 70 साल के 70 years old के श्री सुखदेव खनरारी, जो टोंपले नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके घर सीताराम लेन लावंचुआ से उठाकर लावंचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Radio 24 hours a day.

0: सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति सुनिए। सीबी अपने ग्राहक जो शामुनी रामा रोड कौ गुलबा कौ फैनी और आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि कल मंगलवार 8 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के पूरा होते ही एक बार फिर बिजली की सप्लाई को जारी कर दिया जाएगा। किसी भी असुविधा के लिए सीईबी आपसे क्षमा प्रार्थी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सादर प्रणाम तथा स्नेह भरा अभिवादन मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एमबीसी रेडियो मॉरिशस

और मैं हूँ दिविना, लेकर आई हूँ भक्ति, विश्वास तथा सकारात्मकता से भरी एक और खूबसूरत रात्रि। आप सभी का अभिवादन करते हैं आपके ही कार्यक्रम भज्य प्रभु का नाम में। आज की यह रात्रि है बहुत ही विशेष, क्योंकि हमारे चारों ओर गूंज रहा है विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का पावन नाम, गणपति बप्पा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं, यह विश्वास का उत्सव है श्रोताओं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्ची श्रद्धा तथा सकारात्मक सोच के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो आइए आज अपने मन के मंदिर में बप्पा को विराजमान करें तथा प्रेम से कहे, हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करें, हमारे परिवार में सुख शांति स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्रदान करें।

श्रोताओं कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश के नाम से ही तो किया जाता है और ऐसा करने से मंगल ही मंगल होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है जो हमारे मार्ग की बाधाओं को दूर करते हैं। तो इस पावन अवसर पर आज आप सुनने वाले हैं गणपति पापा की स्तुति से सजा एक सुंदर भक्ति कार्यक्रम।

श्रोताओ, गणेश जी का स्वरूप हमें बहुत सुंदर संदेश देता है। उनके बड़े कान कहते हैं अच्छा सुनो, उनकी छोटी आंखें कहती हैं एकाग्र होकर देखो, उनका बड़ा मस्तक कहता है बड़ा सोचो, तथा उनकी सूंड हमें सिखाती है परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीखो। यही तो जीवन की सच्ची सीख है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भज्जे प्रभु का नाम कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर। मैं हूं देविना आपके संग। जहां श्रद्धा होती है वहां उम्मीद जन्म लेती है, जहां उम्मीद होती है वहां मार्ग अपने आप बन जाते हैं। इस गणेश चतुर्थी पर बप्पा से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना न करें, बल्कि यह भी कहें, हे गणपति बप्पा, हमें सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए तथा हर परिस्थिति में मुस्कुराने की शक्ति दीजिए।

जहाँ श्रोताओ, और अब समय है एक और मधुर गणेश वंदना का। आप जहाँ भी हो, घर में परिवार के साथ या अपने काम से लौटते हुए, कुछ पल के लिए आंखें बंद कीजिए। मन में बप्पा की सुंदर छवि बसाइए तथा पूरे विश्वास के साथ बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।

आज की इस पावन रात्रि में हमने भगवान गणेश के चरणों में अपने मन की भावनाएं अर्पित की। गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर दिल से, मन से यही प्रार्थना है कि गणपति बप्पा आपके तथा आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, प्रेम तथा समृद्धि लेकर आए। आपके घर में हंसी बनी रहे, आपके मन में विश्वास बना रहे तथा आपके जीवन से हर विघ्न दूर होता रहे। जब मन में प्रभु का नाम हो तो कठिनाइयों में भी मुस्कान होती है। जब सिर पर बप्पा का नाम हो तो हर राह आसान होती है। इसी प्रार्थना और इसी विश्वास के साथ आज के भज्र प्रभु का नाम कार्यक्रम से हम लेते हैं विदा। पुनः मिलते हैं पूरे प्रेम तथा श्रद्धा के साथ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सुखकर्ता दुखहर्ता मोरिया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी पूजा सफल हो। शुभ रात्रि।

मौज़े सामीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो मेरी उम्मत का अस्सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। फिर इरशाद फरमाया, मेरा तुम्हारे दरमियान रहना तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम किसी चीज़ का सवाल करते हो और तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जाता है, और मेरी वफ़ा भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मुझ पर तुम्हारे आमाल पेश किए जाते हैं, तुम्हारा अच्छा अमल देखकर मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ और तुम्हारा बुरा अमल देखकर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करता हूँ।

मौजूद सामेईन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो किसी मुश्किल में हैं उनके लिए आसानी के दरवाज़े खोल दे, और जो खामोशी से तुझसे अपनी मुरादें मांग रहे हैं उनकी जायज़ दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामेईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
4: नमस्ते, मैं के सब श्रोतालों के स्वागत करते हैं जहाँ आज सोमवार है, आज लेंदी है, लेंदी के रात के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो हर स्वागत करते हैं जहाँ और ये जहाँ हुई बजा हो जिसे हमने के कार्यक्रम में भाग ले बजा यही उम्मीद रखते हैं जहाँ आज के दिन तोहर खातिर बहुत मंगलमय रहल हुई और ये अभी शाम के वक्त रात के वक्त तोहरा खूब सुकून खूब शांति मिलत हो, सेहत भी अच्छा हो तोहर ये उम्मीद करते हैं जहाँ। तो हमसे रेखा लेके आए हैं तोहर खातिर हमने के भोजपुरी तड़का और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हमने के जो जो भोजपुरी गीत बा तोहर के पसंद के हमने सुनवाओ अब जा और एक में एगो खेल प्रतियोगिता भी बा, एगो क्विज भी बा, हमने के संगे संगे रहिए जा, हमने क्विज तोहर खातिर प्रस्तुत करब जा और एगो अच्छा सन इनाम तोहर के मिली जे विजेता हो बजा। तो चला हमने के भोजपुरी तड़का में सबसे पहला हमने तोहर के सुनवाला जा संभावती दुमन जी के गावल गाना और ये गाना हमने सब हमने के श्रोतालु के नाम करत

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: दुखरता हवन गणपति बप्पा, दुखर लिहन सब को के ही उम्मीद प्रार्थना करते हैं जो उनकर से चला आगे बढ़ी जाओ. और हमनी आत्माराम चाचा के पसंद के को गाना प्रस्तुत करते हैं जा. आत्माराम जी मंगले हवन बेलिया से गाना अपन बहिन सुदेवी ललिता छोटी जी और प्रभावती जी खातिर और बेलिया के पूरा स्नू परिवार खातिर नंदकेश्वर शंकर के गावली गाना.

ननकेश्वर शंकर जी के गावली गाना के बाद चला उषा सुधीरा जी के गावल चनन बरसे गाना सुनी जा। और ये गाना सुन के तनी ठमक ठमक जाए ला जा। ये गाना रीता जी के पसंद पर रीता जी कौ फुकौ से गाना मंगले हवन। रीता जी गाना सुनवाई खोजत हवन अपन माता जी के।

और चली जा आगे बढ़ी जा और ही प्रस्तुत करी जा हमने विक्रम कोलाचन जी के गावल गाना और यह हमने के पूर्वज लोग के गाना हम के पूर्वज लोग के प्रेम आदर इज्जत देवे होला गाना। तो चले गाना हमने अबू जी के फरमाइश पर सुनी जा। अबू जी ये गाना मंगले हवन आफेज खातिर रईस खातिर और जाहिरा जायान असलम आयाज खातिर फिर अप्पी जी उनकर पत्नी खातिर रकीबा खातिर और काला चोती खातिर। तो चलो सुनी जा हमने विक्रम कोलाचन जी के गावल गीत।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर खाती रह और भोजपुरी तड़का में आज एगो खेल प्रतियोगिता रखब जा, एगो क्विज रखब जा। क्विज के सवाल तो बड़ा आसान रही, बस हमनी के क्विज के खेल में भाग लिया जा। एक में जी तोहर जीत हो तो तोहरा एगो अच्छा सन बड़ा इंटरेस्टिंग सन इनाम मिली। तो अभी सुनते रह जा हमनी के भोजपुरी तड़का और देखी जा के हमके सवाल के जवाब दे। थोड़ा रखड़ी में अभी प्रस्तुत करब जाए खेल और ये खेले से आगे चला सुनी जा हमने अगला गाना। और ये गाना है ज्ञान महिपतलाल जी के गावल गीत। ये गाना हमने बजावत हैं जा गौगुप के सुनीता जी के फरमाइश पर, कुंगुमा के उनकर बहिन वी माला खातिर।

आजिले हंसले गाले ये गाना हमसे मंगले हवन शांति जी तैहूर से दागोचे के अपन पूरा मराठी परिवार खातिर अपन दागोचे के भगीना ओम खातिर और अपन भाई बलराम खातिर गाना मंगले हवन गिरीश रूपचंद के गा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का में तो हम लोग के बोले रह ली जाए, एगो क्वीज रखब जाए, एगो सवाल करब जाए, तो ऐसे एगो सिंपल सवाल कर

तब जा तोहर से और ई सवाल के जवाब जे देब तो तोहरा एगो अच्छा सनी नाम मिली। तो चले हम के खेल शुरू करी जा। ये हम जितना बात बोलब जाई बतवन पर तनी ध्यान दिया जाए कैसे जनब यही में से तोहरा एगो एगो टिप मिल जाए कैसे हमने के सही जवाब देवे के। चला असल में है जो न खेल प्रतियोगिता बा स्पॉन्सर्ड बा और चिल जवाता सर्कस बगल से जीते होला खातिर जे भी जीती उनकरा बगातेल में जो औशी जवाता सर्कस होई ओकर दुगो एंट्री टिकट्स मिली। तो अपन परिवार के संगे तैयार हो जा और ये यादगार एक्सपीरियंस पैया जहाँ पर मैजिक थ्रिल ठाके सब भरल रही शानदार सर्कस परफॉर्मेंस में और ये जवाता सर्कस एक जवाता जो बगातेल में लगी ये हर बीफे के और सुख के सांझ के 6 बजे हुई और यह सामदी और दिमास के दिन के 2:30 से सांझ के 5:30 लिख हुई जे और जानकारी तोह लोग के चाही और या फिर बुकिंग करी खोजब तो सक बच्चा टेलीफोने करे 5250943 पर सीएक जवाता खातिर। सीएक जवाता बड़ी चौचक मैजिकल बिग शो रही बहुत बड़ा मैजिकल शो रही एकरा मिस ना करिया जा याद रखिया जा कि हमने के ई क्विज में जे जो सवाल पूछब जा तोरा 2 एंट्री टिकट्स मिली। तो चला हमने के सवाल ई है कि सामदी और दिमास के सीएक और श्री जवाता के कई गो परफॉर्मेंस रखल गल बा हमने के टेलीफोन करके बोला जा 402-85-85 पर बोला जाए 2 गो रखल बा कि 3 गो रखल बा। 2 गो नहीं तो 3 गो में से एगो सही जवाब दिया जा और ये एंट्री टिकट्स पैह जा। फिलहाल तो चला हमने आगे बढ़ब जाए अगला गीत संगे और ये अगला गीत हमने बजवावत है जा सुदेश बोईजू जी के गावल मुर्गा मुर्गी के कहानी। चला सुनी जाए गाना हमने आशिता जी के पसंद के आशिता जी गाना मंगलवन कोंगो मा से याद करिया जा टेलीफोने करिया जा। तो अभी फिलहाल सही जवाब दे खाती टेलीफोने करिया जा 402-85-85 पर हमने के सवाल यह कि सामदी और दिमास के सियक और शिजावाता के कई गो परफॉर्मेंस रखल गलबा।

0: मुर्गा मुर्गी की कहानी थोड़ा घड़ी में सुनब जा। अभी हमने सुनी जाए एक गो श्रोता के कॉल और सुनी जा हमने के श्रोता हमने से क्या बोलत हुआ। हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते सूरिका बहना।
0: नमस्ते जी, तोहर नाम बोला था हमने के श्रोता लोग के।
1: हम है शोभा पॉपले मुझसे।
0: शोभा जी पॉपले मुझसे हमने के कार्यक्रम सुनते रहे ला।
1: हम हाई सुनी ला हाई के काम हो
0: तो
1: रेडियो सुने के
0: मतलब अच्छा से हमने के थोड़ा एक दुगो बतिया सुन ला।
1: हाँ?
0: तो हमने के बोला था हमने के प्रश्न के जवाब कुछ यह सामदे और दिमाग के सेक और शीशा वाता के कई गो परफॉर्मेंस रही दुगो की तीन गो
1: दुगो
0: मच्छे से सुन ला सेक देखे के खुशी रहे ला।
1: हाँ छोटा में देखे रही सा
0: तो चला अभी बड़ा में भी देखिया तो हर दुगो एंट्री टिकट्स मिली सेक जवाता के सेक जवाता लगल बा बागातेल में और ये औशी सावता सिया कस सकस के दुगो एंट्री टिकट

0: मिली तो हरा बहुत बहुत मुबारक हो
1: शोभा जी,
0: अपन पूरा परिवार के संगे जय हर मिली। अच्छा बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक शोभा जी। शोभा जी तहलक तहरा चाहिए एम्बे से आके अपन टिकट लेके भजीर के 9 बजे से दिन के 3 बजे के बीच में। अच्छा जी हम तो लोग के याद दिला दिला जा कि शोभा जी के मिलल है बगातेल में जो होता और शीजावाता सर्कस ओकर 2 गो एंट्री टिकट्स और अपन परिवार के संगे संगे तैयार रही शोभा जी। यादगार एक्सपीरियंस रही वहाँ माजिक फील ठहाका सब रही वो शानदार सर्कस परफॉर्मेंस रही हो जहाँ पर शीजावाता बगातेल में लगता हर हर बीफे और शाम बीफे और सुख के 6 बजे से सामदी और दिमास के 2:30 बजे से यानी कि 2:30 से सांझ के 5:30 लेक। जानकारी और बुकिंग खातिर 5204934 पर सब टेलीफोन करे और इसे जवाता भुलाइया नहीं बड़ा मैजिकल बड़ा सन शो है जरूर एक में शामिल रहिए जा।

और अब चला सुनी जा हमने संभावती दुमन जी के गावल गाना। ये गाना हमें से ललिता जी त्रियोले से मंगले हवन अपन बहन सुदेवी ज्ञानी छोटी जी प्रभावती जी खातिर आत्माराम जी खातिर सुखलाल मौसी खातिर और अपन नाती पोतालो खातिर विशेष विधि आयुषी आलिया और आलीना खातिर।

चले दादा दादी के कहानी सुनी जा और ये गाना हमनी गासेन सिंगारों जी की आवाज में सुनी जा। गायत्री जी नोवेल फोन से गाना मंगले हुआ ना मायबू के मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, लोग माउंटेन के भौजी शकुंतला खातिर, नोवेल फॉन्स के संघतिया गीता बाई खातिर और यवन बेटा अजय खातिर मंगले हवन गीता।

अब चल हमने मीठा मीठा बात सुनी जा स्वीटी राम बरन जी के गावल और ई गाना हमने बजवात है जा वेदिका जी के पसीन पर गाँव गुब से अपन भाई मनीष के नाम करत वनी गाना।

और ये इतना याद दिला दे लालजा तो लोग श्वेता बाबूलाल जी के गावाली गाना बलमा हमने बजाओ था लीजा सोनिया और परी खातिर विशान मीनाक्षी और पूनम खातिर अमृता जी के पसंद पर पीतों के अमृता जी के पसंद पर।

मोरी लाली चल लाली सिनेमा देखे संजय हरिचंद जी के गावल गाना है और ये गाना हमने बजावत है जा रोज हिल के साजी जी बगल से हमने के सब श्रोता लोग खाते

सुनीतानंद कुजी के गावल चमेली चमेली चला गाना हमने सुनी जा शोभा सुदेवी जी के पसीन पर वाकवा के सुदेवी जी मंगले हवन अपन दीदी ललिता जी खातिर और तयोल के कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेगा के राम रतन परिवार खातिर तो चला सुनी जाए गाना हमने सुनीतानंद कु के गावल

चमेली चमेली गाना था सुनला चला अभी को थमी लापे हो उसके अमिता जी खातिर लापे हो उसके अमिता जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकर खातिर एगो गाना बजवाओ इला जाओ उनकर पूरा परिवार के फरमाइश पर फूलो विनय करिश्मा मंगले हवनी गाना और गीता गजाधर जी की आवाज में बधाई जन सुनत हवा ई बधाई फूलो विनय करिश्मा देवत हवन अमिता जी के जन्मदिन बहुत बहुत अभिनंदन हो तोहरा अमिता जी।

और अब तो चला हमने जन्मदिन के बधाई देवब जा सैनिश लक्ष्मण के। सैनिश लक्ष्मण जी के जन्मदिन रहल गल सामदी के 5 सितंबर के। और उनकर जन्मदिन के शुभकामना देवत हवन उनकर पापा अमर, मामा शालिनी, उनकर दादी प्रेमिला, नाना सुरेन गणपत, नानी सरोज, फूफू मामाश, फूफा सूरज, भाई सुदीप, मौसी नंदिता, मामू मामी, चाचा चाची जो इंग्लैंड में रहेलन, लक्ष्मण परिवार, रामस्वरूप परिवार और गणपत परिवार। जन्मदिन अभिनंदन सैनिश लक्ष्मण।

जली गांव की बात कर ली जा, अब जली देश की बात करी जा। त्रिलोक गंगा जी गए हवन मोरिस देश निराला बा, और मोरिस देश के ई गाना हमनी से मंगले हवन निर्भय जी नोवेल फ्रांस से ई गाना मंगले हवन, और ये सब दोस्त लोग के नाम करत हवन। उनका दोस्त हवन नीरज और वैभव।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में अभी कुछ जन गाना सुनब जा हमनी बाप दादा के बोली भोजपुरी भाषा विनोद शिवदास जी के गावल सुना थे जा। और ये गाना हमनी रेखा जी खातिर बजावत है जा। रेखा जी रहे लन्ना कौ दिमास पावे। और ये गाना मंगले हवन अपन दुगो संगतिया खातिर, चेतना और वसुधा खातिर। और ये गाना हमने बजवाएला जा गायत्री जी खातिर, नोवेल फॉन्स के उनकर बेटा अजय खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: चले मरमिट में गरम पानी चढ़ा के देखी जा का पकावब जा। और ये गाना है संते महादेव जी गैले हवन, चले देखी जा। ये जो मरमिट में गरम पानी चढ़ल बा संतोष महादेव जी कौन सी धागत हवन, चले सुनी जा। ये गाना हमने महेंद्र जी के पसंद पर पाल मान से महेंद्र जी गाना मंगले हवन।

तो बस गर्म पानी के संगे संगे हमनी आगे बढ़ी जाओ रिप सुनी जा ज्वाला बिजाधन जी के गावाले को गाना। ज्वाला बिजाधन जी के गावल गाना के संगे संगे हमने के कार्यक्रम समाप्त हो जाए भोजपुरी तड़का में। तोहर साथ मिलल एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम तोहलोग के पसंद के गाना से सजा ली जा, उम्मीद करते हैं जाके हम के सब श्रोता लोग पसंद कर ले जा। आवतरा फिर मिलब जा, अभी तक तोहलोग के बोलब शुभ रात्रि। और हमर बाद कार्यक्रम भोजपुरी कार्यक्रम के बाद सुनहरे पल कार्यक्रम सुनब जा, पुराना गीत के कार्यक्रम गिनीशा प्रस्तुत करी अंत। आवतरा फिर मिलब जा, शुभ रात्रि, नमस्ते। सुनी जा हमने ई गाना ज्वाला बिजाधन जी के गावल। नमस्ते, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: भूले बिसरे गीत में फिर से हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। तो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी म्यूजिक लवर्स का इस खूबसूरत से शो में जो पुराने गानों के शौकीन हैं। तो चलिए जी, आराम से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि फिलहाल के लिए हम आपको लेके जाएंगे बैक टू मेमोरीज़।

अरे बोल मेरे गुड्डे, ख्याल तेरा क्या है, तू भी कुछ कह दे, सवाल तेरा क्या है।

किसी ने सच्ची ही कहा है, गाना खत्म हो जाते हैं लेकिन उनकी यादें कभी खत्म नहीं होती। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस कराएंगे पुराने बॉलीवुड के खूबसूरत गीत।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वो कैसेट का जमाना, रेडियो के सामने बैठकर फेवरेट गाने का इंतजार, और जब वो गाना बजता था तो वॉल्यूम फुल ऑन हम कर देते थे। अगर आपको भी वो दिन याद आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आप एंजॉय करते रहना ये खूबसूरत गानों का सिलसिला जो हम लेकर आए हैं। गुस्ताखी माफ आपकी यादों को चीरने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे खूबसूरत नगमे जब आप सुनते हैं ना, तो होंठों पर मुस्कुराहट हम लेकर ही आ जाते हैं।

गाने दिल के किसी कोने में परमानेंटली सेव हो जाता है ना दोस्तों। सालों बाद भी सुनो तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। आज ऐसे ही एवरग्रीन मेलोडीज के साथ चलिए लौट कर चले जाते हैं अपने गोल्डन डेज में। सुनहरे पल, एक ऐसा शो जहाँ पे हम आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, उनका ख्याल जरूर रखते हैं और आपकी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर लेते हैं। तो चलिए जी, गिनीशा की तरफ से ये अगला खूबसूरत सा नगमा आपके नाम।

प्यार हो, जुदाई हो, दोस्ती हो या जिंदगी की कोई खूबसूरत शाम, पुराने बॉलीवुड गाने ने हर इमोशन को आवाज दी है। आप मानोगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बॉलीवुड ने हर एक लाइफ के सिचुएशन के ऊपर गाना जरूर बनाया है। आज उन्हीं इमोशंस को फिर से जीते हैं सुनहरे पल में। और आपकी कहानी क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ कि घर पे बैठे बैठे अगर कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हो, ये अगला नगमा किसी ना किसी की याद आपको जरूर दिलाएगी।

सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। इतने खूबसूरत पुराने गाने हम चलाते हैं आप लोगों के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत ही दिल से एंजॉय किया, मुस्कुराए, आंखों में नमी भी लेकर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुड बाय। जाने का वक्त हो गया है दोस्त और वापस आने का हम वादा करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर और हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखना।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: पलकों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

भाई सपना इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब?

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो